0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

दंपतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, हम भगवान सदाशिव की उपासना कर रहे हैं, सभी मंदिरों में निरंतर और भगवान शिव की पूजा हो रही है। भगवान शिव तो और महाकाल के भी काल हैं, उनके विषय में कहा कि

0: रेखा महिवलयुतम व्यक्तलिंगम कपालम। ऐसे भगवान शिव जो प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति देव के भी प्रबल संसार भय से मुक्त होने के लिए जिन्हें और निरंतर नमस्कार करते रहते हैं, जो सावधान चित्त वाले ध्यान परायण महात्माओं के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक विराजमान होते हैं, और चंद्रमा की कला, सर्पों के कंगन तथा व्यक्त और चिन्ह वाले कपाल को धारण करते हैं, संपूर्ण लोकों के आदि देव उन भगवान महाकाल की जय हो, जय हो। बालार्कायुत तेजसः धृतजटा जूटेन्दुखण्डो ज्वलम् नागेन्द्रः कृतभूषणम् जपवटीम् शूलम् कपालम् करैः खड्गांगम ददतम त्रिनेत्र विलसत पंचाननम सुंदरम व्याघ्रान्यक्तवरे प्रधान बलज निलयम श्री नीलकंठम भजे। भगवान श्री नीलकंठ 10,000 बाल सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्रमा और मस्तक पर सांपों का मुकुट धारण किए हुए हैं। चारों हाथों में जपमाला, शूल और खड्वांग मुद्रा है। तीन नेत्र हैं, पांच मुख हैं, अति सुंदर विग्रह है और बागंभर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजमान हैं, कमल पर विराजमान हैं। भगवान श्री नीलकंठ देवता की जय हो। हम निरंतर नीलकंठ भगवान का और ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव हम सबका कल्याण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। करेहूं सो जतन विवेक विचारी, परंतु सती ने परीक्षा लेने के लिए श्री सीता जी का ही वेश धारण किया, जिसमें शिव जी ने अपनी स्वाभिमानी और माता की दृढ़ निष्ठा पर रखी थी। अतः सीय बेहूं सती जो कहीं ते ही अपराध संकर परने ही, क्योंकि उनकी यह निश्चित भावना थी कि जो अब करहूं सती सन प्रीति मिटे ही भगति पृथु होई अनीति। बल्कि शिवजी सती को सदा के लिए त्याग देने का चिंतन कर रहे थे, इससे उनके हृदय में अत्यंत संताप हो उठा। परम पुनीति न जाई तेही किए प्रेम बड़।

0: पाऊं, प्रगट न तहत महूं कुछ हृदय अधिक संता हूं। परंतु भागवत भक्त को भगवान की शरण की प्रतीक सुख दुख की अवस्था में आधार रहती है और उन्हीं योग क्षेमम वाहाभ्यहम रूप विशर्द फलाने वाला प्रभु से प्रदान की हुई बुद्धि के द्वारा सदैव शरणागतों की रक्षा हुआ करती है। क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तमः भी प्रभु की ही प्रतिज्ञा है। अतएव जब भगवान शंकर ने ऐसे समय में प्रतिपतित ली जैसे तब शंकर प्रभु पद फिरहू नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा एहे तन सित ही भेट मोहि नाही। तब भगवान भक्त वत्सल ने उनकी बुद्धि में प्रेरणा की कि सदा के लिए त्याग की जरूरत नहीं है, केवल इस जन्म में सती का त्याग करना ठीक है, जिसमें उन्होंने सती का वेश धारण किया थे। अतः एव ऐसा ही संकल्प भगवान शिव ने किया जिससे दोनों काम हो जाए, न तो सदा के लिए सती का त्याग करना पड़ा और न उसे शरीर से प्रति ही रखी गई। समस्त भक्त जनों को वैष्णव नाम तथा शंभु नाम भक्ति शिरोमणि भगवान शिव के इस रहस्य के यह उपदेश मिलता है कि जब कोई धर्म संकट आ पड़े तो सचैव हृदय से हरि स्मरण करने से ही उनके निर्वाहन की राह निकल आएगी। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर

अनपश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज सैटरडे 15 अगस्त 2026 के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी का स्वागत करते हैं। कल बालकांड दोहा 55, दोहा संख्या 55 की एक चौपाई पर हम लोगों ने विराम लिया था, जहां पर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सब जगह वही श्री रघुनाथ, वही श्री लक्ष्मण और वही सीता जी सती माता ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। अब तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं,

0: तो बैठ गई, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चले जहाँ भगवान शिव थे। गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहे हु सत्य सब बात। शिव जी के पास जब पहुंची तब भगवान शंकर ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस वर्णन में यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोहा 55 के नीचे लिखा गया है, मास परायण दूसरा विश्राम। यह संकेत है कि जो भक्त रामचरितमानस का मास परायण कर रहे हैं आज इनका दूसरा विश्राम यहाँ तक है। चलिए इसी के साथ आज हम इसको विराम देते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम श्रद्धया निसमिद्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धा भगश मूर्धनि वचसा विदयामसि। ओम। आर्य सभा मॉरिशस की ओर से पंडित रामसुंदर शोभन का सादर प्रेम नमस्ते और सुप्रभातम। श्रावण मास के वेद चर्चा विषय में आज मैं श्रद्धा के महत्व पर कुछ विचार करने जा रहा हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 सूक्त के प्रथम मंत्र में श्रद्धा के गुण इस प्रकार गाया गया है। प्रिय श्रोतागण, विश्वास से ही सत्य को, वेद को, ईश्वर को जानना श्रद्धा है। श्रद्धा का होना ही ईश्वर की बनाई चीजों पर विश्वास करना है। भक्त की ईश्वर का विश्वास ही रक्षा करता है। गहरी भक्ति ही मुख्य रूप से विश्वास पर टिकी है। इसको करने वाला अधिकतर उपासना में लग जाता है। श्रद्धा ही भक्ति भावना को जगाती है। जैसे वेद में कही गई श्रद्धा को माननी है, तैतरीय उपनिषद भी श्रद्धा को अधिक मान्यता देती है। श्रद्धा के द्वारा ही भक्त अपने अंदर भक्ति की अग्नि को जगाता है। श्रद्धा ही से भक्त ईश्वर पर पूर्ण रूप से अपने आप को छोड़ देता है, अर्थात सब प्रकार के सुख, कर्म, मान, धन, समझदारी और त्याग के मिलने पर भी श्रद्धा ही सबसे पहले है। श्रद्धा जानने का विषय है। तपस्वी अपनी वाणी में कहता है, श्रद्धा का धारण करने से अच्छा है, ऋग्वेद का वचन है,

वान यजमान प्राणायाम द्वारा श्रद्धा को अपनाता है और सभी भक्तगण अपने मन में उत्पन्न होने वाले इच्छा भाव को प्रेम और श्रद्धा से पान करते हैं। विश्वास करने वाला विशेष सुख पाता है। कश्यप पश्यको भवति यत् सर्वं पश्यतीति। तैतरी आरण्य के ऋषि कहते हैं, जब भक्त श्रद्धा सत्य नियम त्याग और भक्ति का पालन करता है तब उसे परम शांति मिलती है। उसका मन बलवान हो जाता है, वह सच्चा भक्त कहलाता है। जब भक्त अपनी भक्ति में लीन हो जाता है तब परमात्मा उसके माता पिता और गुरु बनकर उस पर कोई आँच आने नहीं देता है। श्रद्धा इते मघवन पारिये देवी देवी वाजी वाजी शाशती। सत्य को धारण करने से मन की ज्योति बढ़ती है। सामवेद के ऋषि का वचन है कि ज्ञान की ज्योति ही साधक को बलवान बनाता है, क्योंकि परमात्मा ही सबसे अधिक बलवान है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मोगोल का सादर सप्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम अन्ति संतम न चाहत्यन्ति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अथर्ववेद मंडल 10 सूक्त 8 मंत्र 32। अर्थात ईश्वर मनुष्य से इस प्रकार संबद्ध है कि वह मनुष्य से अलग नहीं हो सकता। मनुष्य के साथ परमात्मा का बंधन अटूट।

झूठ है। समीप्य के कारण वह मनुष्य को दृश्यमान नहीं हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच अटूट समीपता है, अतः मनुष्य को भान रहना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। उसको परमात्मा का संरक्षण सदैव और सर्वत्र प्राप्त है। संकट के समय मनुष्य को सर्वशक्तिमान

अंगिरा नामक चार ऋषियों को सिंधु नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। पवित्र वेदों के रूप में ईश्वरीय दिव्य काव्य मनुष्य जाति की मौलिक अनंत और अमर धरोहर है। सत्य और असत्य का परीक्षण करने के लिए वेद ही एकमात्र विश्वसनीय प्राधिकरण और अचूक कसौटी है। ईश्वर संपूर्ण विश्व का शरण स्थान है। वह सभी मनुष्यों पशु पक्षियों का आश्रय है। ईश्वर संपूर्ण संसार का घोंसला समान शरण स्थान है। समस्त विश्व प्रलय के समय उसी में सूक्ष्म रूप में विलीन हो जाता है। पुनः सृजन के समय संपूर्ण विश्व विभिन्न स्थूल रूप में उसी ईश्वर से उद्भूत होता है और सभी प्राणियों के हृदयों में विद्यमान रहता है। उसकी उपस्थिति का वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने इंद्रिय सुख को त्याग दिया है। केवल मेधावी विद्वान ही उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि वेद आगामी कई शताब्दियों तक विद्वत जनों को आकर्षित करते रहेंगे तथा हम सर्वदा स्वीकार करते हैं कि मानव मात्र के ग्रंथालय में इसका स्थान सर्वाधिक पुरातन है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम अद्भ्यः संवृतः पृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे।
2: हे मनुष्यो, जो ईश्वर संपूर्ण संसार का निर्माण करता है, वही उपादान कारण व सूक्ष्म तत्वों से इस दृश्यमान कार्य जगत को बनाता है, वही इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों और पदार्थों के सुंदर रूपों का निर्माण करता है। उस परमेश्वर के गुण कर्म और ज्ञान को समझना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही मानव का परम धर्म है। ऐसा करने से मनुष्य का जीवन धन्य बनता है। श्रेष्ठ कर्तव्यों को पूरा करने से ही मानव के जीवन में देवत्व का आगमन होता है।

जो लोग परमेश्वर को छोड़कर सत्व रज तमो गुणमयी मूल प्रकृति या जड़ वस्तुओं की उपासना करते हैं वे घोर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो लोग कार्य रूप संसार के भोग में ही रमे रहते हैं वे मानो उससे भी घोर अज्ञान के अंधकार को प्राप्त होते हैं। जो लोग उस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए इस अनित्य नाशवान स्थूल एवं सूक्ष्म संसार को ही अपना इष्ट मान बैठते हैं या केवल भौतिक सुखों एवं भौतिक सिद्धियों में रमे रहते हैं वे और भी घने अंधकार एवं क्लेशों में डूब जाते हैं। अतः मनुष्यों को केवल परमात्मा की ही शरण लेनी चाहिए।

परमात्मा सूर्य आदि लोकों में व्याप्त है, वही हर जीव के भीतर भी विद्यमान है। आकाश की भांति ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण है। ईश्वर से भिन्न या बड़ा कोई दूसरा नहीं है, वह सर्वोपरि और सबसे महान है। भगवान का निज नाम ओम है, जो प्राणों से भी प्यारा है। जो मनुष्य प्रेम और सत्य मार्ग से ईश्वर की शरण लेता है, परमात्मा उसके अज्ञान दूर कर देते हैं। वे हमारी आत्मा को प्रकाशित करके, दुखों से हमें मुक्त करके परम सुख व मोक्ष प्रदान करते हैं।

0: बजे है। समाचार आपसे अभी नमस्कार
1: अनिल मनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ईंधन के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64.25 रुपए से बढ़कर 70.65 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी कि इसमें 6.40 रुपए की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71.25 रुपए प्रति लीटर पर ही बरकरार है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये फैसला कल रात शुक्रवार 14 अगस्त हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। मुख्य रूप से ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। इसी कड़ी में पेट्रोलियम पैदावारों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। कल दोपहर को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इलाके के एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी किया। अपने भाषण में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ संघर्ष में सरकार की कटिबद्धता दोहराई। असम्पशन ऑफ द वर्जिन मेरी ईसाइयों विशेषकर कैथोलिक समुदाय का एक पवित्र और प्रमुख त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। आज 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और उत्साह के साथ मना रहा है। ये एक ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है। और विदेशी स्तर पर पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री ऊर्जा गलियों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जलमार्ग पर संकट और गहरा गया है।

0: और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है, जबकि पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, जबकि दिन के दौरान पूर्वीय ढलानों, उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटो पर थोड़े से बादल घिराएंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार। तापमान, सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:31 पर, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:57 पर।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

खुशबू गुलाब है पसीना रसूल का, आप सबको मुबारक हो महीना रसूल का। मौज़ सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का महीना माहे रबीउल अव्वल आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात सवाल खैर RM3 के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान, नातो सलाम। ताक़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,

विश्राम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे, और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी। ये आमाल की बर्बादी और इस्लाह हाल इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने झूठी बात की पैरवी की, और जो ईमान लाए वो अपने परवरदिगार की तरफ से दीन हक के पीछे चले। इसी तरह अल्लाह लोगों से उनके हालात बयान फरमाता है।

बस जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ तो उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको तो जो जिंदा पकड़े जाएं उनको मजबूती से कैद कर लो। फिर उसके बाद या तो एहसान रख कर छोड़ देना चाहिए या कुछ माल लेकर, यहाँ तक कि फरीक मुकाबिल लड़ाई के हथियार रख दे। ये हुक्म याद रखो, और अगर अल्लाह चाहता तो और तरह से इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन उसने चाहा कि तुम में से एक को दूसरे के साथ टकरा कर आजमाए, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनके आमाल को वो हरगिज जाया नहीं करेगा, बल्कि उनको सीधे रास्ते पर चलाएगा और उनकी हालत दुरुस्त कर देगा, और उनको बहिश्त में जिससे उनको पहले से वाकिफ कर दिया है दाखिल करेगा।

अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा, और जो काफिर हैं उनके लिए हलाकत है और अल्लाह उनके आमाल को बर्बाद कर देगा। ये इसलिए कि अल्लाह ने जो चीज नाजिल फरमाई उन्होंने उसको नापसंद किया, तो अल्लाह ने उनके आमाल अकारत कर दिए।

क्या इन्होंने मुल्क में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी और उसी तरह का अजाब इन काफिरों को भी होगा। ये इसलिए कि जो मोमिन हैं उनका अल्लाह कारसाज है और काफिरों का कोई कारसाज नहीं।

जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे उनको अल्लाह बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल फरमाएगा, और जो काफिर हैं वो फायदे उठाते हैं और इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोजख है।

और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्ती से जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया जोर और कुव्वत में कहीं बढ़कर थी, हमने उनको बर्बाद कर दिया और उनका कोई मददगार न हुआ। भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पर चल रहा हो, वो उनकी तरह हो सकता है जिनके आमाले बद उन्हें अच्छे करके दिखाए जाएं और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें।

वो जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा किया जाता है, उसकी सिफत यह है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बू नहीं करेगा, और दूध की नहरें हैं जिसका मजा नहीं बदलेगा, और शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत है, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं, और वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं, और उनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये परहेजगार उनकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे और जिनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा।

और इनमें बाज ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाए रहते हैं, यहाँ तक कि सब कुछ सुनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से निकलकर चले जाते हैं तो जिन लोगों को इल्मे दीन दिया गया है उनसे कहते हैं कि भला इन्होंने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है और ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल रहे हैं।

बस जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने कसूर की मुआफी मांगो और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और अल्लाह तुम लोगों के चलने फिरने और तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ है।

और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती, लेकिन जब कोई वाज़े अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो, सो उनके लिए खराबी है। खूब काम तो फरमाबरदारी और पसंदीदा बात कहना है, फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता।

0: أسرارهم
1: भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े। जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए, शैतान ने ये काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया। ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं, ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे, और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है।

तो उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे। ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे, तो उसने भी इनके आमाल को बर्बाद कर दिया।

क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा, और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते और तुम उन्हें उनके अंदाज़े गुफ्तगू ही से पहचान लोगे, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से वाकिफ है, और हम तुम लोगों को

मोमिनों, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फरमा बरदारी करो और अपने आमाल को जाया न करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो हरगिज तुम्हारे आमाल को कम और जाया नहीं करेगा।

0: تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم.
1: देखो तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुख़ल करने लगते हैं और जो बुख़ल करता है अपने आप से बुख़ल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज. और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा.
2: सदकल्लाहुल अज़ीम. ऐ पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा. आमीन. फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन की इब्तिदा किसी अच्छे काम से की और अपने दिन को अच्छे काम ही पर ख़त्म किया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने फरिश्तों से फरमाएगा, इन दोनों के दरमियान जो गुनाह सगीरा हैं उन्हें मत लिखो. क्या लिखूँ हम अल्लाह की लफ्ज़ों में, जो ना मांगूँ तो अता करता है, मांग लूँ तो बेहिसाब देता है.

शऊर लाया किताब लाया वो हश्र तक का निसाब लाया दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया वो इल्म की और अमल की हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी वो हर ज़माने का राहबर है मेरा पैगंबर अजीम तर है। मौज़ सामईन माहे रबीउल अव्वल के हवाले से अब आप

हाफिज़ इब्ने हजर ने इस हदीस की शरह में पहले तो उसको एक बेजोड़ और बेरब्त समझा, लेकिन इसके बाद लिखा कि बाज़ लोगों के नज़दीक इससे वो बाल मुराद हैं जो कंघी करने में आपके सरे मुबारक से झड़ जाते। फिर हज़रत अनस से एक और रिवायत नकल की कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिना में अपने बाल मुबारक मुंडवाए तो हज़रत अबू तलहा ने आप के बाल ले लिए और उनको हज़रत अनस की वालदा के हवाले किया, जिनको उन्होंने अपने खुशबू में शामिल कर लिया। इससे ये नतीजा निकलता है कि जिस खुशबू में ये बाल मुबारक शामिल थे उसी में वो पसीने मुबारक को भी शामिल कर लेती थी। ये रिवायत सही बुखारी किताब उलस्तीज़ान में है, बाब मंजारा कौमन फ़काल इंदहुम, इस बाब में। इसी तरह मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल में है कि ग़ज़वा खैबर में आपने एक सहाबिया को ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से एक हार पहनाया। वो उस हार की इस कदर करती थी कि उम्र भर उन्होंने कभी अपने गले से उसे जुदा न किया। जब इंतकाल करने लगी तो उनकी वसीयत थी कि इस हार को जो अल्लाह के हबीब ने उन्हें पहनाया है वो भी इनके साथ दफन कर दिया जाए। इसी तरह नुज़हतुल अबरार तज़किरा सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु में है कि आपके पास अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज एक तहबंद मुबारक और एक चादर मुबारक और चंद मुबारक बाल थे। आपने वफात के वक्त वसीयत की कि ये कपड़े कफन में लगाए जाएं और ताजदार कायनात के बाल मुबारक उनके मुंह में और नाक में रख दिए जाएं। इसी तरह जिन कपड़ों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी उनको महफूज रखा। चुनाचे एक दिन इन्होंने एक सहाबी को एक यमनी तहबंद और एक कंबल दिखाकर कहा कि खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं कपड़ों में विसाल फरमा गए। ये सुनन अबी दाऊद किताबुल लिबास बाब फी लुब्स सूफ व शअर में है। एक सहाबी ने आपको सिया रेशम का एक अमामा दिया, एक सहाबी को आपने सिया रेशम का एक अमामा दिया, उन्होंने उसको महफूज रखा।

0: और उस पर वो फख्र करते थे। चुनाचे एक बार बुखारा में खच्चर पर सवार होकर निकले तो लोगों को अमामा दिखाकर कहा कि ये अमामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया है। इसी तरह आपके चंद बाल मुबारक हज़रत उम्मे सलमा ने बतौर यादगार महफूज रखे थे। जब कोई शख्स बीमार होता तो बर्तन में पानी भरकर बेच देता और वो इसमें बालों को धोकर वापस कर देती, जिसको वो शिफा हासिल करने के लिए पी जाता या इससे गुसल कर लेता। अलगरज ताजदार कायनात के विसाल के बाद भी सहाबे किराम ने और सहाबियात ने आप के तबर्रुकात को, यादगार को महफूज रखा और आपके विसाल के बाद भी वो उससे बरकत हासिल करते और उनसे इन्हें फैज़ हासिल होता। अल्लाह पाक आप की यादगारों का सदका पूरी उम्मा को अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे जुम्मा मस्जिद पोर्ट लुइस के खतीब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। माह रबीउल अव्वल इस्लामी तारीख में नहायत बाबरकत और मोहब्बत भरा महीना समझा जाता है। इस महीने का जिक्र आते ही दिलों में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ताज़ा हो जाती है।

बता रही है, फिजा की खुशबू बता रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आ रही है। जी हाँ मौजूद सामईन, माह रबीउल अव्वल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का महीना, रबीउल अव्वल की सबसे नुमाया नस्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम रहमत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं कि ज़रा सी तकलीफ़ पर कर्राह उठते हैं। तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता, हमें जहन्नुम की आग से पनाह दे और हमें मुआफ़ फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से एक बार फिर माह नूर, माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, इस संसार में आए हैं तो सबसे मिलकर ही जीवन का निर्वाह किया जा सकता है, क्योंकि अकेले जीना दुष्कर प्रतीत होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य सब प्राणियों में परमात्मा के स्वरूप को देखता है, वह ईश्वर का सच्चा भक्त है।

श्रोताओं, यदि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। सांसारिक सुखों को भोगते हुए उन गुणों को भी अपनाना चाहिए जिनसे जीवन सार्थक होवे।

साधारण सी बात है, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके रोने की आवाज सुनकर सब खुशी मनाते हैं। भक्त कबीर ने कितने गहराई से सोचा होगा इस बात को, जो इतना बड़ा संदेश मानव जाति को दे दिया।

को एक चादर के समान समझते हुए भक्त कबीर ने लिखा है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये शरीर रूपी चादर किस प्रकार बनी, कैसे इस चादर का निर्माण हुआ,

जब मोरी चादर बन घर आई रंगरेज को दीनी। रंगरेज कौन? गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है और ऐसे समय पर एक चेतावनी, एक शिक्षा

यदि हम धर्म का निरादर करेंगे तो धर्म ही हमें नष्ट कर देता है। इसलिए सदा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारी रक्षा हो। धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु सदा धर्म का पालन करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जहाँ धर्म का अधर्म द्वारा लोप किया जाता है तथा अधर्म से जहाँ धर्म का हनन किया जाता है और सच को झूठ से छुपाया जाता है या फिर झूठ द्वारा सत्य का हनन किया जाता है, वहाँ ईश्वर कभी नहीं आते।

श्रोताओं, यह सर्वविदित है। ईश्वर तभी हमारा साथ देते हैं जब हम सच्चाई के पथ पर आरूढ़ होते हैं। जीवन में नित्य सच की जड़ को सींचना है। सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। सच बोलना ही धर्म है। सच के साथ साथ हम मन में दया की वृद्धि करें और दयावान बनें। दयालु मनुष्य में क्षमा की शक्ति होती है।

और क्षमा करने से धर्म भी स्थिर रहता है तथा क्षमा करने वाला भी धर्म में स्थिर रहता है। ईश्वर इन्हीं गुणों से तो प्रसन्न होते हैं।

श्रोताओं, सुख चाहने वालों को कभी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए तथा कभी अप्रिय वाणी नहीं बोलनी चाहिए। ईश्वर का भक्त स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में क्रोधित नहीं होता, ना ही दूसरों को क्रोध दिलाता।

श्रोताओ, ईश्वर में आस्था रखने वाला भली भांति इस बात से अवगत है कि शरीर अनित्य है, नष्ट होने वाला है, धन दौलत या ऐश्वर्य सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए अच्छे विचारों को अपनाते हुए धर्म का संग्रह करना चाहिए।

श्रोताओं, मनुष्य का परम कर्तव्य है कि जब तक देह स्वस्थ है तब तक सत्कर्मों द्वारा अपनी आत्मा का हित करना चाहिए, क्योंकि यदि संपूर्ण आयु ही व्यर्थ में बीत जाए तो इससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.

一路风景，一路歌声。毛里求斯广播电台听众朋友，上午好，欢迎收听音乐风景线。下面我们将为您送上。

口孤单的寄守。浓浓情意化作甜蜜告白，请听你是我的城堡。

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। ईंधन के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल की कीमत 64 रुपए या 25 सेंट से बढ़कर 70 रुपए या 65 सेंट प्रति लीटर हो गई है, यानी कि इसमें 6 रुपए 40 सेंट की वृद्धि हुई है। वही डीजल की कीमत 71 रुपए 25 सेंट प्रति लीटर पर ही बरकरार है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये फैसला कल रात शुक्रवार 14 अगस्त हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। मुख्य रूप से ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। इसी कड़ी में पेट्रोलियम पैदावारों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। इस फैसले को कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। ये समझौता मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच सहयोग के तहत किया जा रहा है। कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि 30 जुलाई 2026 को कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की सीमाओं पर बने आयोग ने रोड्रिग्स टापू के इलाके में विस्तृत कॉन्टिनेंटल शेल्फ

0: के संबंध में मॉरिशस गणराज्य द्वारा 6 मई 2009 को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि प्रधानमंत्री रविवार 16 अगस्त 2026 को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे। वे वहां सैडेक के 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी और अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मातामेला सिरिल रामाफोसा करेंगे। आज 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ बलिदान को नमन करने का दिन है, जिनकी बदौलत आज भारतीय जन आजाद हवा में सांस ले रही है। आज भारत वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में खड़ा है। अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर डिजिटल तकनीक और आर्थिक विकास तक भारत ने दुनिया भर में अपनी अमित छाप छोड़ी है। इसी गौरवशाली यात्रा के बीच भारत और मॉरिशस के रिश्ते बेहद खास और आत्मीय हैं। साझा इतिहास, सांस्कृतिक विरासतों और अटूट कूटनीतिक संबंधों में बंधे ये दोनों देश सच्चे मित्र हैं। आज लहराता तिरंगा न केवल भारत की प्रगति का प्रतीक है, अपितु हिंद महासागर के पार बसे भारत और मॉरिशस की इस अटूट दोस्ती और नए भारत के उज्जवल भविष्य का उत्सव भी है। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिकी सेना ने टेक्सास में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 2 दिन बाद अपने सभी अपाचे हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अभियानों को अस्थायी रूप से स्टैंड डाउन की घोषणा की है। इस हादसे में उड़ान पर सवार दोनों सैनिकों की जान चली गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। लियोशे रिश्ते में 89 साल की 89 years old की श्रीमती देवती रघुनत पैदाइश नाम समूह और जिन्हें सब लोग किसुन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर लियोशे रिश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। कोरियोलिस रोड 16 मील फॉरेस्ट साइड में, कोरियोलिस रोड 16 मील फॉरेस्ट साइड में 58 साल की 58 years old की श्री धनेश्वर सिंह बालक जिन्हें सब लोग कमलेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर कोरियोलिस रोड 16 मील फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 16 मील सेमिट्री रोड कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। मोसलमो ब्लूप्रिंट हाईलैंड्स में 44 साल के 44 years old के श्री मेगावेन मुरुगिया जिन्हें सब लोग मायन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं के घर मोसलमो ब्लूप्रिंट हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: टाइम चेक, दिन के 12:06 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अनीता का हेलो, नमस्कार और आदाब स्वीकार कीजिए। आशा है कि आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त हैं जी। और स्वस्थ तो होना ही चाहिए, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में मूड्स ऑटोमेटिकली अच्छे ही हो जाते हैं।

0: वेल दोस्तों अभी आप जो हैं रेडियो मनोरंजन से जुड़े हुए हैं जहां सुहाना सफर कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और साथ दे रही है आप ही की सखी अनीता। दोस्तों आज है 15 अगस्त 2026 और अनेक खास बात सेलिब्रेशंस हैं। आज जो है भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो आइए उन वीरों की वीरता को सलाम करते हुए तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक राष्ट्रीय धुन हम आपको सुनाते हैं।
1: तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से।
2: गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी ये दिल चीर के देखो, मेरे मुल्क, मेरे देश का नक्शा अब भी छपा मिलेगा इस पर।

जी दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और जिस भांति यह ध्वज हवा में इधर उधर दौल रहा था, मानो भारत पुनः अपना सम्मान पाकर सिर ऊंचा करके खुशी से झूम रहा था। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही रोमांटिक गीत आ रहा है और यहाँ पर एल्बम है नीले नीले अंबर पर

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, इस गीत को सुनकर तू इस तरह अजीब सी अनुभूति होती है। अनेक यादें जो है इस गाने से जुड़ी हुई है। और एक लाइन है, तेरी जमाल से रोशन है कायनात मेरी। इस लाइन में रफ़ी साहब ने जो हरकत ली है सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुंह से वाह खुद ब खुद निकल पड़ता है। और दोस्तों, मैं फिर से कह देती हूँ कि आज जो है बहुत ही खास दिन है और हम मना रहे हैं जो है भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साथ ही साथ जो है आज है कई लोग जो है असम्पशन ऑफ मेरी भी मना रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे सुनने में आया कि आज जो है हरियाली तीज भी है और इस दिन को जो है माँ पार्वती और शिव बाबा को समर्पित है, उनकी पूजा पाठ की जाती है। और कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से विशेषकर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति प्यार समृद्धि ये सब आती है। और इस दिन की विशेषता यह है कि इस दिन को हरी चीज़ें अर्थात हरे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये भी है। और यहाँ पर लेस्पेरांस ट्रेबुशे से मोहन, क्षमा कीजिए, मनोज सोहन जी साथ दे रहे हैं। और आपकी मांग है, आप फिल्म कति पतंग का गाना सुनना चाह रहे हैं और यही गाना आ जाएगा खासकर आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, साथ ही साथ पूरे सोहन परिवार के नाम, गया सिंह आश्रम में जितने बुजुर्ग हैं उनके नाम और जितने भी बीमार लोग हमें सुन रहे हैं उनके नाम यहाँ प्यारा सा गाना।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, 12:30 भी हो चुके हैं और यहाँ पर शीला जी बन में ऐसे साथ दे रही हैं और आपका फ़ोन आया। हमें खुशी हुई कि आपसे बातें हुई और आप कहती है कि आप का जो भांजा है कि यान की सुंदयाल, उनका जन्मदिन था और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं मामा पापा नाना नानी सभी की सुंदयाल परिवार की ओर से एवं मकुंद मकुना परिवार की ओर से। तो ढेर सारा प्यार आपके नाम और फिल्म प्यार के दो पल का गाना आपके नाम। हैप्पी बर्थडे टू यू कियान।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, फिकॉन फ्लैक्स से अनीता जी साथ है दे रही हैं और आप कहती है कि आज आप बहुत खुश है और खुश होने का भी मौका है, अवसर है, दस्तूर है, सेलिब्रेशन है। वेल, आज आपका जन्मदिन है एंड पूरी टीम की ओर से आपको कहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और आप इसलिए बहुत खुश हैं क्योंकि आपका जन्मदिन श्रावण मास में पड़ा है और आपको भगवान शिव और पार्वती जी स्वयं जो हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। और आपके जन्मदिन के अवसर पर यही कहेंगे कि जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जहां हम की हवा छू के भी ना गुजरे, भगवान वो जिंदगी दे आपको, जन्मदिन की बधाई हो आपको। और ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं पति राज, बेटी अंकुश, अंतिश, बहु अशीमा, मनीषा, पोती हिमेशा, अध्या पोते लड्डू गोपाल के द्वारा आपको ढेर

सारी शुभकामनाएं दी जा रही है। सो एंजॉय योर डे। और चूंकि श्रावण मास में पड़ा आपका जन्मदिन, तो यहाँ शिव का गाना आपके नाम।

जो है जता खोल दी है और बहुत सारी बारिश हो रही है रिवर जोरोपा में, तो आशा करते हैं कि यू ही बारिश जो है हो पूरे देश में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बारिश नहीं हो रही है और काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो जब भी आप प्रार्थना करें तो भी ये भी सोचें, भगवान से मांगे कि थोड़ी सी बारिश हो, क्योंकि कुछ दिनों से जो है बारिश नहीं हुई है और हमारे जो जलाशय है सूख रहे हैं। और श्यामा जी गांव गोप से साथ दे रही हैं और आपकी मांग है फिल्म सिकंदर आजम। आप कहती है कि उन महान वीरों एवं आत्माओं को श्रद्धांजलि तथा शत शत नमन, जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया, अपना कर्तव्य निभाया। और यही गाना जाएगा आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता है, नेफ्यूज केशव युधीश, साथ ही साथ आपकी सहेलियां हैं विश्वानी दुखी हैं, विना कामफल हैं, नंदिनी ओकलू हैं, और जितने भी लोगों को यह गाना पसंद है उनके नाम यह गाना जाता है।

जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है प्रकाशवती जी की ओर से। आप बेल्जियम से साथ दे रही हैं। आप कहती हैं, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू, एंड होप यू आर डूइंग गुड। और आपको हमारा सिलेक्शन अच्छा लग रहा है, थैंक यू इसके लिए जी। आप सभी के लिए जो है विशेज भेज रही है, हैप्पी मेरी जो है असम्पशन के लिए, थैंक यू इसके लिए भी। और आपकी मांग है, आपकी मांग है फिल्म अखियों के घरों को से, ओके, तो यहाँ गाना आपके नाम हम बेशक चला देंगे। और आप कहती है कि वहाँ पर बेल्जियम में जो है मौसम बहुत गर्मी हो रही है, तो यही है दोस्तों जलवायु परिवर्तन के परिणाम, क्लाइमेट चेंज के परिणाम। तो यही आशा करते हैं कि वहाँ पर भी जो है कुछ बारिश हो, कुछ ठंडक आप लोगों को मिले। और चलिए, जिन लोगों को यहाँ दोहावली पसंद है, ऑफकोर्स हेमलता जी की आवाज़ और जसपाल सिंह जी की आवाज़ों में, तो चलिए यह गाना आप सबके नाम

0: जी दोस्तों, गायत्री जी पृथ्वी एजे से साथ दे रही हैं और आप जो हैं एक देशभक्ति गीत सुनना चाह रही है
1: हर बला,
0: और यही गाना जाएगा सभी भारत वासियों के नाम, साथ ही साथ जो भारत लोग मॉरिशस में रह रहे हैं उनके नाम यहाँ गाना जा रहे हैं। और आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप दे रही हैं और यही गाना जाएगा प्रथानुसार आपकी भाभी मीरा के नाम, उनकी बेटियां हैं गिरीशा मेधा, कटरबोन की बहन अमृता, उनकी बेटियाँ नेहा शीति दिव्या, बेटे सुधीर कमलेश बहू और अब बहू सुधा है।

दोस्तों, कहा गया है कि पुराने होने पर लोग भगवान की मूर्ति तक बदल देते हैं, पर हम तो सिर्फ इंसान हैं। यहाँ लोग ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते रखते हैं और वक्त बदलते ही अपने भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी के बदल जाने पर दुखी मत हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ एक वक्त तक साथ रहने के लिए आते हैं, हमेशा के लिए नहीं। कभी कभी उनका जाना ही हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाती है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जी श्रोताओं, कुछ देर में आप संक्षिप्त समाचार सुन पाएंगे और हमारी मुलाकात 1 बजे के बाद फिर से होगी। और आपसे गुजारिश है कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 5250-6200 पर, इस पर केवल मैसेज भेजें, ना कि फ़ोन करिए। ये छोटी सी गुजारिश है। तो थोड़ी देर में समाचार।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि गत 30 जुलाई को कॉन्टिनेंटल शेल्फ सीमा आयोग ने साल 2009 में मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रोड्रिक्स इलाके में लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैले विस्तारित कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मॉरिशस के अधिकार को मान्यता दी गई है। 200 समुद्री मील से परे विस्तार के लिए किए गए इस आवेदन की कई वर्षों तक तकनीकी समीक्षा की गई थी। मॉरिशस के एक प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी 2026 में इस फाइनल के अंतिम विवरण प्रस्तुत किए थे। ये निर्णय समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान, महासागरीय शासन, समुद्री क्षेत्र नियोजन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत दोहन के नए अवसर खोलता है। जादू टोने से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 मिलियन रुपए जब्त किए गए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से इस राशि को जब्त करने का आदेश मिल गया है। यह रकम सीते गारिबू वाले दे प्रत में एक कार के भीतर छिपाकर रखी गई थी। ये मामला जहीरा बीबी इसप आदिया और मोहम्मद नजीब खान अकोहिया से जुड़ा है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने साल 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप स्वीकार कर लिया था। चूंकि दोनों आरोपी कोर्ट में इस 10 लाख यानी कि 1 मिलियन की वैध कमाई का

0: कोई सबूत नहीं दे सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पूरी रकम को जब्त करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। इस शनिवार को ईसाई समुदाय के लोग असम्पशन ऑफ द वर्जिन मेरी यानी कि माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्यौहार मना रही हैं। ये मॉरिशस के धार्मिक कैलेंडर का एक प्रमुख त्यौहार है और इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार माता मरियम ने अपने सांसारिक जीवन को पूरा करने के बाद शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग की महिमा को प्राप्त किया। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि फ्रांस की शीर्ष अदालत ने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस कानून को नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कानून के प्रमुख समर्थक थे। उधर इंडोनेशिया के तट के पास शनिवार तड़के 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इस भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताते हुए चेतावनी जारी कर दी गई और कई झटके भी महसूस किए गए। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। विदेशी लेन फ्लोरियाल में 89 साल के 89 years old के श्री ईश्वर दत्त बीदेसी जिन्हें सब लोग मान के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती राधा बीदेसी के घर बीदेसी लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड बोइमेया में जो ताबाजी मेजामी के पास है, 58 years old की श्रीमती मीराबाई वेंकटासामी पैदाइशी नाम किसना और जिन्हें सब लोग बाबू के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे उन्हीं के घर रॉयल रोड बुनमेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंडेमास का किश्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. सुहाना सफर।
4: जी दोस्तों, 1:05 हुए हैं और आप रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर कार्यक्रम सुन रहे हैं। अनीता के साथ है, वार्म वेलकम अगेन। दोस्तों देखते ही देखते घंटा समाप्त हो गया और यहाँ पर काफी मैसेजेस है, हम पढ़ेंगे कुछ ही देर में। और शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो ज़रूर रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स भी करना चाहिए क्योंकि सोमवार से जो है स्कूल जो है पुनः जो है शुरू हो जाएगा। तो माँ बाप के लिए साइकोलॉजिकली जो है उन्हें तैयार हो जाना चाहिए कि सुबह जो है जल्दी उठना है, टिफ़िन तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है। तो साइकोलॉजिकली जो है आप भी थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर दीजिए, इसलिए वीकेंड में रिलैक्स कीजिए ताकि सोमवार जो है आप फिट हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल्याणी जी ट्रियोले से साथ दे रही है और आपकी मांग है फिल्म फरार का गाना, बहुत ही प्यारा गाना है और यही गाना जो आएगा आपकी चार बेटियों के नाम श्वेता हर्षिना श्रेष्ठा नितिशा पति विगैन है और आपका छोटा नातिन है, पूरा दो आऊ परिवार है। साथ ही साथ यह गाना जाएगा शतुड बेनागैस की ज्योति के नाम, साथ ही साथ अश्नीय रेखा सुरेखा और पूरे माधव परिवार।

0: ना सफर, सुहा ना
1: सफर। जी दोस्तों, मैं प्यासा तुम सावन, श्रावण का महीना चल रहा है और कई लोगों ने कहा है कि उनके यहाँ बारिश हो रही है, तो जहाँ तहाँ बारिश हो रही है वहाँ संभल कर जाइएगा। अगर आप रास्ते पर है तो ऑफकोर्स टेक योर प्रिकॉशंस। और रिश्मा फ्लाक से देवयानी जी साथ दे रही हैं आप पुरानी फिल्म हमराज का गाना सुनना चाह रही है, और यह गाना विशेष कर जाएगा सभी देवधारी परिवार के नाम और पूरे छेड़ी परिवार के नाम।

और यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है माधुरी जी की ओर से. आप कहती है, हेलो लवली लेडी. हेलो जी, होप यू आर डूइंग वेल. यस, आई एम डूइंग वेल एंड होप यू टू. और आप सुनना चाह रही है फिल्म सौदागर का गाना, और साथ ही साथ संगीता जी साथ दे रही हैं. पता नहीं कहाँ से लेकिन आपने मैसेज भेजा कि आप साथ दे रही है, एंजॉयिंग आवर शो, सो थैंक यू इसके लिए. तो चलिए, जितने लोगों को यहाँ प्यारा सा गाना पसंद है, तेरा मेरा साथ रहे, आपके नाम यह गाना.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, मोदालबे से अनीता जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आपकी भतीजी दीपशिका ईटू कल उसकी जो है सिविल शादी हुई विवेक कोकिल के साथ, और आपकी दुआ है, पूरे परिवार की दुआ है कि यह जोड़ी सलामत रहे। पूरे ईटू परिवार, गोगा परिवार, सिबोचन परिवार, कोकिल परिवार, सभी जो है उन दोनों को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। और उनके नाम आप एक गीत मांग रही हैं, फिल्म है बॉक्स हरिहरन जी और कविता कृष्णमूर्ति और बाकी लोगों की आवाज़ों में यह गाना जो है हम पेश करने वाले हैं। तो चलिए, मुबारक आप दोनों को।

जी दोस्तों, रिवर झुरंपो से माला जी साथ दे रही है और हमेशा की तरह वह साथ देती रहती है। और आप कहती है कि बरसात हो रही है और आप फिल्म नागिन का गाना सुनना चाहती है और यही गाना जाएगा सत्यम, किरण, कबीर, शकीविन, कनील, कनीश, शिव और आपके नाम।

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता।
3: जी दोस्तों, पिछले वर्ष से अनीता जी साथ दे रही हैं और आप भी कहती है कि आपके यहाँ बहुत बारिश हो रही है। आपकी फरमाइश है फिल्म पूरब और पश्चिम का गाना, और यही गाना जाएगा आपकी तीन बेटियों के नाम, शीतल, काजल, दीक्षा, पति बलदेव है, पूरे जरी परिवार पिछले वर्ष से।

जी दोस्तों, पॉइंट डेलास्को से सीता जी ने हमें फ़ोन किया और आप कहती है कि आपका भतीजा रवीन जीवन का जन्मदिन है आज, और सभी परिवार की ओर से, सभी जीवन परिवार की ओर से रवीन जीवन को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ, सुखी, खुशी रहे और खुश रहे। और जिन लोगों को आज, जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनके नाम भी यह गाना जाएगा। तो सीता जी, आपके नाम, आपके द्वारा आपके भतीजे के नाम यह प्यारा सा गाना।

जी दोस्तों, हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन हु आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे। जी दोस्तों, जूली का यहाँ प्यारा गाना जाएगा ऑफ कोर्स अनु के नाम, प्यारी अनु के नाम। और यहाँ गाना किसने मांगा है? बिल्कुल हरीश जी बोबासन से उन्होंने अपनी अनु के नाम यहाँ प्यारा

0: दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।
1: जी दोस्तों, हमें आपसे प्यार है क्योंकि आप हमेशा साथ देते रहते हैं और राधा जी मुंशीदा से साथ दे रही हैं। और आप कहती है कि सावन का महीना चल रहा है और सभी जितने लोग इस सावन के महीने का लुत्फ़ उठा रहे हैं उनके लिए अगला गाना जाएगा, फिल्म पुरानी फिल्म बादल है, और हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए भी आपने यह गाना मांगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं लता जी और कोरस की आवाज़ों में।

जी दोस्तों, यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है लेकिन उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा कि किसने भेजा, लेकिन आपकी फरमाइश है फिल्म जैसे को तैसा का गाना, और यह गाना जाएगा दाहन के लिए श्वेता, रवीश, प्रिशा, लुवेशा और पूरे अपाडू परिवार खुशनुआ के रहने वाले। और इसी गाने में हम रवि जी का नाम जोड़ेंगे जो वाकवा से साथ दे रहे हैं, सुदेवी जी मौका से साथ दे रही है, और मैं जानती हूँ हमेशा आप अपने पति के लिए गाना मांगती हैं, तो यह गाना आपके पति के नाम जाएगा। और साथ ही साथ वकवा से सुबोध जी साथ दे रहे हैं, तो अगला गाना आपके लिए और आपकी स्वर्गीय पत्नी माला के नाम। पोलांजे से छोटी है साथ दे रही है, तो अगला गाना आपके नाम। साथ ही साथ नवीन जी मोताय ब्लॉन्च से हमेशा साथ देते रहते हैं, आपको लाइन नहीं मिली आज, तो अगला गाना आपके नाम। और पंपलेमूस से सचिन जी साथ देते हैं, तो उनके नाम भी यह गाना जाएगा। और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए जिनका गाना नहीं बज रहा है, तो उन सब के नाम यह गाना जाएगा। और यहाँ पर निर्मला जी है फ्लैक से, और एक और व्यक्ति है शनाया जो है नाना जी के लिए गाना मांग रही है, तो अगला गाना आप लोगों के नाम, आप वाकवा से हैं। और ठीक 2 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, और उसके बाद इतिहास के झड़ों के कार्यक्रम होगा अलका जी से। तो हमारा समय यही तक था, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आपने साथ दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई मुलाकात के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ। अभी के लिए अनिता को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, टेक केयर।

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस समारोह में प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भारत और मॉरिशस के बीच के विशेष संबंधों का प्रतीक रहा। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त ने विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की हालिया यात्राओं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम की भारत यात्राओं का उल्लेख किया, जो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई थी। भारतीय अधिकारियों की मदद से मॉरिशस नौकाओं की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए एक रडार प्रणाली स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ और अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है। सरकार एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल का अधिग्रहण भी करेगी। ये घोषणाएं कल शाम बीच तुम्बो में की गई, जहां प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अन्य विकास कार्यों के साथ साथ एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कर रहे थे। फोर्ट अल्बर्ट बीच तुम्बो में फुटबॉल और बीच सॉकर जैसे खेलों के लिए एक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। इसका आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और राजनीतिक जगत की कई जानी मानी हस्तियों, जिनमें निर्वाचन क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं, द्वारा किया गया। वहां मौजूद लोगों ने इस विकास कार्य की सराहना की और ये फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद खुशी की बात है। और विदेश में इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है। बचाव और राहत अभियान शुरू होने के साथ ही आधिकारिक मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आपदा में कई लोग अलग अलग रूपों से घायल हुए हैं। भूकंप और उसके बाद आए दर्जनों झटकों के कारण इस क्षेत्र में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। बिदेसी लेन फ्लोरियाल में 89 साल के 89 years old के श्री ईश्वर दत्त बिदेसी, जो मान नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती राधा बिदेसी के घर बिदेसी लेन फ्लोरियाल से उठाकर आलिब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 3 PM। रारोद बनमेयर में 58 साल की 58 years old की श्रीमती मीराबाई वेंकटासामी, पैदाइशी नाम किसना और जो बाबू नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर रारोदबुन में से उठाकर मिजिन कॉन्मास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: इतिहास के झरोखों से
3: नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। सुबह से बहुत से लोग IGC आई गए थे, भारतीय स्वतंत्रता दिवस, लहराता तिरंगा और सुंदर कार्यक्रम को सभी लोगों ने सराहा और जब सुना और उसे महसूस किया तो सचमुच हर एक के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं RM3 पर रेडियो मनोरंजन और फ़ोन कॉल्स रहेंगे 4028070 पर। श्रोताओं, आप सभी को पता है भारत का 79 या 80th 80वें वर्ष में हमने आज़ादी के प्रवेश कर लिया है और 89 वर्ष पूरे हो चुके हैं। श्रोताओं, किसी देश की आज़ादी इतनी सस्ती इतनी आसान नहीं होती है और भारत को तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले 700 साल मुगलों के साथ और फिर उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों के अधीन, 900 साल की आज़ादी ने इस संस्कृति को तहस नहस करने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिटा पाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सब की संस्कृति वैदिक परंपराओं से जुड़ी हुई है और वैदिक ग्रंथ जितने भी हमारे हैं वे सभी श्रुति परंपरा से आगे बढ़ते रहे। चंगेज़ खान ने लाइब्रेरी जला दी तक्षशिला की। कहते हैं कि 6 महीने तक किताबें जलती रहीं, वहाँ पर इतना ज्ञान का संग्रह था और कितने ही आचार्यों को उसने मार डाला। लेकिन श्रोताओं, वह जो श्रुति परंपरा से गुरु शिष्य में आगे ज्ञान की परंपरा भारत में सदियों से रही, उसने हमारे सभी ग्रंथों को, हमारी विद्या को बचा कर रखा। कुछ चीज़ें नष्ट हुई भी होंगी लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अब जब उनका पुनरुत्थान किया जा रहा है तो आज भारत पूरे विश्व में चमकता हुआ दिख रहा है। देखिए ना, योग जैसी बात, आयुर्वेद जैसी चीज़ें, वैदिक शिक्षाएं, हमारे धर्म ग्रंथ, पौराणिक आर्य ग्रंथ, ये सारे जिनकी अब खोज, अब तो प्रिंट भी इनके निकल आए हैं, अनुवाद भी होने लग गए हैं, उसके ऊपर शोध कार्य भी हो रहे हैं। तो अब वो जो कहते हैं ना, किसी की हस्ती नहीं है कि वो मिटा सके इस भारत की संस्कृति को, उसके सचमुच प्रमाण अब हमें मिलते हैं। श्रोताओं, आप सभी ने सुना होगा, जब भी आप भारत का कोई रेडियो स्टेशन या कोई प्रोग्राम जैसे ही खोल रहे हैं, आपको वंदे मातरम शब्द सुनाई दे रहा है। वैसे तो वंदे मातरम कोई भी देश बोल सकता है, मैं अपनी माँ की वंदना करता हूँ। और हम सबकी माँ क्या है? सबसे पहले, ठीक है, जिसने हमें जन्म दिया, लेकिन जो हमें जन्म भी देती है उसको भी भोजन, उसको भी जिंदा धरती माँ ही रखती है। यदि किसी माँ को पूरा पोषण ना मिले, खाना ठीक से ना मिले, तो कहाँ बच्चे स्वस्थ होते हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों की ऐसी दर्दनाक स्थितियों से हम परिचित हैं। तो इसलिए वंदे मातरम, हम अपनी माँ से भी पहले मातृभूमि की वंदना करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की नदियाँ, उसकी हवाएँ, उसकी वनस्पतियाँ, उसकी मिट्टी, ये हमें जीवन देती हैं। हमें इन्हें हमारे पूरे परिवार को, पूरे चराचर प्राणियों को, पालतू पशुओं को, जंगलों को, यह मातृभूमि ही तो सहेजती है। यदि यह सब कुछ शुद्ध स्वस्थ ना हो तो हम कितने स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए श्रोताओं, यह जो वंदे मातरम शब्द है ना, यह केवल वंदे मातरम कह देने एक मात्र का शब्द नहीं है। इस शब्द ने भारतीयों को अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार किया था। वंदे मातरम कहते ही पूरे के पूरे जुलूस में, हुजूम में मानो प्राण आ जाते थे और कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम शब्द कहते हुए फांसी के तख्ते को चूम लिया और हर बेत पर मुख से वंदे मातरम ही निकाला। तो आप सोचिए, शब्द के अंदर कितना बड़ा जादू था। तो श्रोताओं, आपको लगता होगा कि ये ऐतिहासिक शब्द आखिर आया कहाँ से, क्योंकि वैसे तो आप इस्तेमाल करें वंदे मातरम का मतलब

0: मैं अपनी माँ की वंदना करता हूँ। अब माँ जन्मदात्री, माँ धरती माँ, माँ मेरे देश की माँ, भारत माता जैसे, या मेरे देश की मिट्टी। तो श्रोताओ, इसके अर्थ बहुत विकसित हो गए बाद में और इसका विस्तार भी हुआ, लेकिन इसके पीछे का एक इतिहास भी है। इतिहास के झरोखों में जब थोड़ा सा मैंने झांकने की कोशिश की तो श्रोताओ आनंद आ गया। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने उस आनंद को आपके साथ थोड़ा सा मैं बांटूं। तो आज हम इस वंदे मातरम की ही चर्चा करेंगे। वास्तव में इस गीत के रचयिता का नाम यदि आपको ध्यान आ जाए तो फोन करके बताइए। तब तक इस गीत को हम सुनते हैं।
1: इतिहास के झरोखों से

सचमुच श्रोताओं, ऐसा देश है मेरा जिसकी संस्कृति पर मैं कहीं पर भी रहूं नाज कर सकती हूं। और हमारे साथ श्रोता जुड़ने लगे हैं, तो हम सुनते हैं अपने श्रोता को, देखते हैं वे हमारे साथ जुड़कर क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते जी, कैसी हैं? स्वास्थ्य कैसा है थोड़ा? चलिए, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें। जी कहिए बहन जी। थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा आपको, काफ़ी नज़दीक पहुंच गई हैं आप, लेकिन मंजिल तक अभी नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा और दिमाग पर जोर डालिए। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का मैं बताना चाहूँगी, जनगण मन उनका लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और सोचिए तो शायद आपको ध्यान आ जाए। तब तक हम एक और श्रोता को ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो गर्व है वो संस्कृति, हम कहीं भी रहें। बिल्कुल बहन जी, बिना संस्कृति के पहचान के क्या जीवन रह जाएगा। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, कोई बात, कोई बात नहीं बहन जी, आपने भाग लिया, यही बहुत है हमारे लिए, आप सुनते रहिएगा, बहुत धन्यवाद। तो चलिए श्रोताओं, एक श्रोता ने कोशिश तो की, अब देखते हैं दूसरे श्रोता हमें क्या कहना चाहते हैं। उनकी शायद लाइन कटी है, तब तक हम आपसे बात करते हैं। यह जो वंदे मातरम एक तरह से राष्ट्रीय गीत की तरह से उसने इज्जत पाई, वास्तव में इसके रचयिता का नाम था, मैं पुस्तक का नाम बताती हूँ, अभी भी आप रचयिता ढूंढ सकते हैं। ये गाना सीधा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नहीं लिखा गया था, वास्तव में ये गीत पहले एक उपन्यास में लिखा गया था, वहाँ इसका प्रयोग किया गया था।

0: और बाद में यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का मानो एक मोटो या मुख्य गीत बन गया। तो श्रोताओं, मैंने लेखक का नाम अभी बताया नहीं है, अभी तो केवल मैंने पुस्तक का नाम बताया है और वह पुस्तक थी आनंद मठ। आनंद मठ में इस गीत को लेकर जितने भी उसके लोग थे, ये उनका एक कोड वर्ड था एक तरह से। वे लोग आपस में जब बात करते थे तो वे इस कोड वर्ड के मुताबिक बात किया करते थे। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं, देखते हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, शायद
1: हेलो,
0: हाँ जी हेलो, कहिए।
1: हाँ हेलो, जय हिंद बहन जी।
0: जय हिंद, आपको भी आज तो जय हिंद बोलना ही पड़ेगा।
1: जय हिंद
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो मैं आप सभी देशवासियों को, खास तौर पर मॉरिशस में बसने वाले जितने भी हमारे भारत से आए हुए भाई बहन हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
0: बिल्कुल,
1: सीना चौड़ा करके बोलती हूँ, वंदे मातरम।
0: क्या बात है, आज हम उसी गीत की चर्चा कर रहे हैं, वंदे मातरम, जो अब खुलकर भारत में गाया जाएगा। जी,
1: तो मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगी।
0: जरूर, उसके मैंने रचनाकार का नाम पूछा। जी,
1: मेरे ख्याल से वो है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आशा जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनकी पुस्तक का नाम है आनंद मठ, और ये गीत लिखा गया था, या पुस्तक जब निकली थी 1882 में, आप सोचिए 1882 में ये गीत पहले पुस्तक में लिख लिया गया था। ये तो बाद में ये गीत स्वतंत्रता संग्राम का मानो मोटो गीत हो गया था। बहुत सुंदर, आपके लिए तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगी कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। चलिए आगे जोड़िए आशा जी।
1: हाँ जी, तो वैसे बहन जी, आज तो जैसे कि बहुत गर्व की बात है, अगर आप ऐसे हम सोचेंगे तो स्वतंत्रता, जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हम रोज ही आजादी के श्वास ले रहे हैं।
0: हाँ बहन जी, आजादी ना हो तो पहचान ही नहीं है, तब तो आप गुलाम है।
1: खास तौर पर जब यह 15 अगस्त या मॉरिशस में 12 मार्च आता है,
0: दिल को छूते हैं ये दिन।
1: 15 अगस्त आता है तो तिरंगा और चौरंगा को देखकर
0: मन खुश हो जाता है,
1: मन प्रसन्न हो जाता है, और दिल ये सोचता है कि हाँ, उन यादों को ताजा कर देता है कि कैसे हमारे सेनानियों ने, अपने वीरों ने, अपने त्याग करके, बलिदान
0: करके
1: आजादी, इस स्वतंत्रता को हासिल किया है। बस अपना कर्तव्य ये बनता है कि इस चमन को, इस गुलिस्तान को हम
0: पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से अपनी सेवाएं दे जाएं, हम
1: सेवाएं देते रहें। हाँ। और हमारा देश तरक्की उन्नति के राह पर चलते रहे।
0: हाँ।
1: जहाँ पर प्रेम सुख शांति की गंगा बहे,
0: ताकि
1: जो हमारे पूर्वज, हमारे वीरों ने इसके लिए त्याग किया है, उनके प्रति ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।
0: सचमुच, और सच्ची बात है, वह संस्कृति उन लोगों ने जो हमको दी है यहाँ पर धरोहर के रूप में, उसको जिंदा रखना अब हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बिना संस्कृति के पहचान के आपकी दुनिया में क्या पहचान है?
1: बिल्कुल,
0: क्या आपकी आस्था है, क्या आपके विश्वास हैं, क्या आपकी कल्चर है? ये जिंदा रहेगी तो हमारी अपनी पहचान बनी रहेगी।
1: और भारत की पुण्य भूमि से संस्कृति हाँ। सरोवर निकली है, जहाँ से हमारी सभ्यता की पहचान हुई,
0: तो इसीलिए मॉरिशस लघु भारत कहलाता है ना,
1: जहाँ हमें सबसे प्यारी भाषा हिंदी भाषा
0: जी
1: जननी है, जहाँ से हिंदी भाषा निकली है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम गर्व से हिंदी भाषा में कविताएं, गीत, रचना, कहानी, उपन्यास लिखते हैं, ये सब तो भारत धन है।
0: जी जी, धन है, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आशा जी सही उत्तर तक पहुंच गई। तो आनंद मठ जो 1882 में लिखा गया था, और ये एक बड़ा ही वैचारिक उपन्यास है, आप इसको तिलिस्मी या जादू की दरी या अलादीन का चिराग, उस तरह का ये उपन्यास नहीं था। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बंगाली में थे, ये उपन्यास पहले बांग्ला में लिखा गया था, बाद में इसका हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। ये

0: जो उपन्यास है इसमें इतने गहरे विचार है श्रोताओं, मेरा तो आपसे निवेदन है कि अगर आप इतिहास के झरोखे से प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं तो कुछ पन्नों को पलटिए, देखिएगा उस 1882 और 1900 के बीच भारत में क्या चल रहा था, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेज़ों के अत्याचारों ने भारत में क्या हालत कर रखी थी, क्योंकि कई राज्यों में अकाल पड़ चुका था, सूखा पड़ गया था, आप सोचिए लोगों के कंकाल रास्तों में पड़े मिल रहे थे। ऐसे में ऐसा उपन्यास जब सामने आया और इसका कथानक बंकिम चंद्र ने 1770 में देश में जो भीषण बंगाल में बहुत भारी एक अकाल पड़ा था और उस समय जितने वहाँ के सन्यासी लोग थे ना, उन्होंने मिलकर जनता की सेवा की थी और यही सन्यासी एक कोड वर्ड में बात किया करते थे और गांव-गांव जाके जहाँ पे लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, पशु करा रहे हैं, मनुष्य कंकाल रूप हो रहे हैं, उन सब की सेवा का भार अपने ऊपर लिया था। तो ये जब सन्यासी इकट्ठे हुए तो इस उपन्यास में जो सन्यासी विद्रोह हुआ और भारत में ही हुआ था, सन्यासियों ने एक विद्रोह किया था, तो उसी की छाया, उसी की हिस्ट्री के वो जो पन्ने थे इतिहास के, कुछ उन्हीं घटनाओं को लेकर लेखक ने आनंद मठ लिखा था। आप सभी जानते हैं 1885 में ये उपन्यास 1882 में छपा और घटनाएं 1770 की हैं और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ गई थी और इस कृति में यह जो वंदे मातरम गीत था उस समय भारत ने इसको अपनाया और कहा गया कि यह हमारा आह्वान गीत होगा, यह हमारा महान राष्ट्रीय गान होगा। तो बंकिम चंद्र के लिए इन गीत को जब हम पढ़ते हैं तो क्लियर है कि माँ ही सब कुछ है, सब देवों में श्रेष्ठ, अपनी जमीन अपनी मिट्टी मातृदेवो भव है, अर्थात वंदे मातरम, मैं अपनी माँ अपनी जमीन अपनी मिट्टी की वंदना करता हूँ और इसके बाद दुनिया के दूसरे संबंध हैं, सबसे ऊपर देश है, क्योंकि श्रोताओं यदि देश नहीं हो आप गुलाम हो गए तो कौन से धर्म को आप बचा सकेंगे, कौन से घर को आप बचा सकेंगे, कौन सी बहु बेटियों को धन को जमीन को नहीं बचा सकते। तो आज़ादी और आज़ादी के लिए अपने देश की वंदना, तो सबसे बड़ा धर्म देश वंदना, देश की रक्षा है।
1: इतिहास के झरोखों से

0: श्रोताओं, देश का ये रंगीनपन बिना आज़ादी के कहाँ आता है। गुलाम देश में तो व्यक्ति खून की होली से खेलता है। यह जो रंगीलापन है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि जब देश को आज़ादी मिलती है तो लुटेरे बहुत कुछ लूट चुके होते हैं, और उस समय देश के लिए नवीन सपने लेकर प्रजा खड़ी होती है, मेहनत करती है, वह चाहे मॉरिशस हो चाहे भारत हो। लेकिन श्रोताओं, इतिहास के पन्नों में जब हम लौटते हैं तो हम देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भीतर कहीं देश प्रेम की लहरें हिलोरें ले रही थी, अन्यथा आनंद मठ जैसा उपन्यास और वंदे मातरम जैसा ऐतिहासिक गीत नहीं बन सकता था। आनंद मठ जहाँ एक और वैचारिक उपन्यास है, वहीं पर राजनीति के खेल भी उसमें हैं। इसीलिए इस उपन्यास में जो समय की जनता के दुख थे उसको वाणी मिली, और आनंद मठ अनेक देशभक्तों के लिए मार्गदर्शक बन गया। अंग्रेज़ों को, वे लोग चाहते थे कि चाहे हिंसा का ही मार्ग अपनाएं, इनको यहाँ से भगाना ही चाहिए, जिसके उदाहरण भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये जवान पीढ़ी के बच्चे, इनका खून उबलता था, उनको लगता था कि भी हमारा देश है और हम पर ही अत्याचार, हमें ही लूटा जा रहा है। और गांधी जी की चिंता थी कि अंग्रेज़ों के पास साधन ज़्यादा हैं, यदि हम साधन से साधन टकराएंगे तो हम लंबा नहीं लड़ पाएंगे, हमें इनसे लड़ने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। खैर दोस्तों, रास्ते अपने अपने होते हैं, घर का बड़ा व्यक्ति कुछ और विचार देता है, यानी यंगस्टर्स, वे मुकाबला करना चाहते हैं, वे मारकाट भी करना चाहते हैं, तो ये पीढ़ियों का अंतर भी होता है और व्यक्तित्वों के विचारों की भी बात होती है। पर दोनों का उद्देश्य यही था कि हमें अपने देश के लिए आज़ादी चाहिए। इसीलिए लोकमान्य तिलक ने भी कह दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो श्रोताओं, ये सभी जो युवा पीढ़ी थी, जो भारत की क्रीम, मैं कह सकती हूँ इंटेलिजेंट लोग थे, ये सभी चाहते थे कि चाहे कैसे भी हो, और वे कहते थे कि कौन रोक सकता है युवा शक्ति की बढ़ती हुई लहर को। और इस तरह का एक गीत आनंद मठ में भी है, जो एक सन्यासी गाता है और गा गा कर युवक युवतियों को अपने ग्रुप में और उनको जगाता है। असल में आनंद मठ, ऐसे तो वे कुछ लिखते, बंकिम चंद्र तो सब कुछ जब्त हो जाता, जैसे प्रेमचंद का सोजे वतन, पूरी प्रतियों को जब्त कर दिया गया, सील कर दिया गया। आज़ादी के बाद अब पुस्तक के रूप में, कहानी में सोजे वतन हमको मिलती है। ऐसे ही आनंद मठ भी उपन्यास और सन्यासी विद्रोह के रूप में बंकिम चंद्र ने उस कहानी को पिरोया, और महान गीत उन्होंने जो ये धरती माता का लिखा, इसका अर्थ यदि आप जानेंगे श्रोताओं, इसमें यही है कि यह वह धरती है जो हरी भरी है, जो फूलों से लदी हुई है, जो फलों से लदी हुई है, जिस धरती माता को नदियाँ सींचती हैं। शस्य श्यामला मतलब हरी भरी है, वही मेरी माँ है, उसकी मैं वंदना करता हूँ। और 27 साल की उम्र में ही हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक और उपन्यास भी लिख दिया था, दुर्गेश नंदिनी। लेकिन आनंद मठ की कुछ पंक्तियाँ आपको छू जाती हैं, वह मैं आपको सुनाऊंगी इस गीत के बाद।
1: इतिहास के झरोखों से

0: दूसरे की।
1: सचमुच प्यार तो हम करते हैं लेकिन कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, पर देश के नाम पर जब देश पर संकट आता है या समस्या तो सब एक हो जाते हैं। यही बहुत बड़ी विशेषता है वंदे मातरम की कि जो अपनी माँ की वंदना करता है वह देश के हित का कभी किसी से सौदा नहीं कर सकता। आनंद मठ में आप जब बातचीत सुनेंगे वो सन्यासियों की, तो उसी से ही पता चलता है कि कैसे बंकिम चंद्र देश को उन सन्यासी विद्रोह के कथानक के माध्यम से जगा रहे थे। सहसा इस रात के समय की भयानक निस्तब्धता को भेद कर ध्वनि आई, मेरा मनोरथ क्या सिद्ध न होगा। इस प्रकार तीन बार वह निस्तब्ध अंधकार आलोड़ित हुआ। तुम्हारा क्या प्रण है? मेरा प्रण ही जीवन सर्वस्व है। जीवन तो तुच्छ है, सब इसका त्याग कर सकते हैं और एक दिन सबको मरना है, तुम क्या विशेष करोगे? तब और क्या है और क्या होना चाहिए? उत्तर मिला, देश भक्ति चाहिए। तो श्रोताओं, इसमें कल्याणी, महेंद्र सिंह, उनकी कन्या जीवानंद, भवानंद, ये उसमें सन्यासी रूपी पात्र उन्होंने खड़े किए हैं। और बंकिम चंद्र ने इतिहास के उस पन्नों को ज़रूर पढ़ा होगा जो 1173 में बंगाल में, अभी उस समय अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हुआ था बंगाल, और बंगाल के जो दीवान थे वे लोग थे सिर्फ केवल खजाने से टैक्स के रूप में रुपया वसूलते थे। उस समय लगान की वसूली का भार अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिया था और कुल संपत्ति की रक्षा का भार पापिष्ट नराधम विश्वासघातक मनुष्य कुल कलंक मीर जाफर पर था। तो आप देखिए कितने शब्दों का, विशेषणों का, मतलब कुविशेषण मैं कहूँगी, उनका प्रयोग बंकिम चंद्र करते हैं, क्योंकि इस मीर जाफर के कारण ही वह पूरा का पूरा बंगाल कष्ट में था। इसीलिए वह कहते हैं पापिष्ट नराधम विश्वासघातक मनुष्य कुल कलंक मीर जाफर। मीर जाफर अफीम पीता था और सोता था, बंगाली रोते थे और पूरा कंगाल हुए जाते थे क्योंकि अंग्रेज़ आराम से खजाने से रुपया निकाल रहे थे और मीर जाफर को और अधिक अफीम पीते रहो और पड़े रहो कोने में। तो श्रोताओं, इस तरह की घटनाओं का, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनकी चर्चा आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने की है। और महेंद्रनाथ जब साथ नहीं देता भवानंद का तो कहता है उसे, क्योंकि महेंद्र एक बड़ा जमींदार था, हाथों में हथियार रहते हुए भी तुम युद्ध से विरत रहे? जमींदारों के लड़के घी दूध का श्राद्ध करना तो जानते हैं लेकिन काम के समय बंदर बन जाते हैं। मतलब जहाँ दिखावा करना है धर्म का खूब पैसा खर्च करते हैं, पर जहाँ किसी की सेवा का वक्त आता है तो बंदर बन जाते हैं। तो भवानंद जो एक सन्यासी विद्रोह का मेंबर है वो व्यंग्य करता है और आगे वह कहता है हम लोग दूसरी किसी माँ को नहीं मानते, केवल वंदे मातरम को मानते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है, वही हमारी माता जन्मभूमि, वही हमारी जननी है। हमारे ना कोई माँ है, ना पिता है, ना भाई है, कुछ नहीं है। सुनो, स्त्री भी नहीं है, घर भी नहीं है, मकान भी नहीं। हमारी अगर कोई है तो वही सुजला सुफला मलयज समीरण वाली शीतल हवा देने वाली शस्य श्यामला मातृभूमि वंदे मातरम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो

0: सन्यासी विद्रोह जो सचमुच में हुआ था उनके कुछ पात्रों को खड़ा करके और वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र ने कर डाली।
1: इतिहास के झरोखों से

0: फिदा।
1: श्रोताओं, जैसे एक पिता अपनी संपत्ति, अपना घर कितनी मेहनत से खड़ा करता है, बनाता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, ठीक उसी तरह से जातियां भी इतिहास में कितना निर्माण करती हैं, देश के लिए मरती हैं, मिटती हैं, किस लिए? अगली पीढ़ी के लिए। इन सब स्वतंत्रता सेनानियों को तो पता ही था, उनको जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, गोली लग सकती है, लेकिन उनके आगे आने वाले बच्चे, वे स्वतंत्रता की हवा में सांस ले सके, समाज में, विश्व में उनको एक पहचान मिल सके। देखिए ना, अभी कोई खिलाड़ी यदि जीत कर आता है तो लोग क्या कहते हैं, मॉरिशस का है, भारत का है। तो वो जो स्वतंत्र देश की एक पहचान, उसका जो लेबल आपको मिलता है, जो एक आज़ादी की सांस मिलती कि हाँ, मैं इस धरती पर ऐसे किसी देश का गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, हमारा अपना अस्तित्व है, अपनी पहचान है, उसी की कीमत अदा ये देश प्रेमी करते हैं। तो श्रोताओं, आनंद मठ जब छपा उस समय देश की स्थिति तो बहुत ही भयानक थी, और 1857 का गदर भी हो चुका था। धीरे धीरे जो स्थानीय लोग थे, जैसे मॉरिशस में भी, चाहते थे कि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बन गई थी, और सभी सोचते थे कि यह जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये हमारी मांगों को आगे तक ले जा सकेगी और भारत के भविष्य का निर्माण ये कर सकेगी। लेकिन शुरू में हम सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ा ही शांत भाव से कार्य कर रही थी। जैसे उसमें मीटिंग्स लगती थी, लोग विचार रखते थे, तब वो इंग्लैंड जाते थे, जैसे एक कॉफ़ी की टेबल पर डिस्कशन होता है। लेकिन जिस समय लोकमान्य तिलक घुसे, इस तभी से ही गर्म दल और नरम दल बन गया। तो गर्म दल कहता था कि नहीं, देश की आज़ादी छीनने से मिलेगी, और नरम दल कहता था कि तरीके से लेंगे, हमारा ही ये देश है। लेकिन आनंद मठ में तो विद्रोह की बात है, वह तो स्वाधीनता की बात करता है, इसीलिए उसके सन्यासी यही कहते हैं, मेरा ना घर है, ना बार है, ना स्त्री है, ना पति, कुछ नहीं, मेरे लिए केवल मेरी माँ है। और इधर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जनगण मन 1905 में लिखा था, लेकिन 1886 के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। आप सोचिए, 1886 में जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें वंदे मातरम जब गाया गया, बस उसके बाद तो सोचिए, वंदे मातरम ने पलट कर कभी देखा ही नहीं। और अगले सालों में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, एक बार फिर बंगाल के ऊपर समझो कितना ही संकट आ गया था, एक और गरीबी, लगान, कर, इस सब के कारण, और उसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया लोगों ने। अब ये एक तरह के बहिष्कार का आंदोलन था, अब जब जुलूस निकलते, लोग उसमें इकट्ठे होते, तो वंदे मातरम के नारे लगाए जाते, और ये वंदे मातरम शब्द था, ये तो जादू का काम करने लगा। मतलब कितने ही लोग वंदे मातरम कह के गोली खा के खुश थे, जेल जाते जाते लाठियां खा रहे हैं और मुख से वंदे मातरम निकल रहा था, किसी को बेत पड़ रहे हैं तो वंदे मातरम मुँह से निकल रहा था। श्री अरविंद जो स्वयं एक कवि थे, वे भी वंदे मातरम नामक उन्होंने दैनिक पत्र निकाल डाला, और 1907 में उन्होंने लिखा, एक राष्ट्र या मानवता को एक महान तथा प्राणदायक संदेश देना।

0: था, ईश्वर ने उस मुख का चुनाव कर लिया जिससे संदेश के ये शब्द आकार लेंगे। एक महती दृष्टि का प्रकट करना था और इसके लिए वह शक्तिशाली पहल उसके चक्षु खोलेगा, अर्थात इस गीत के नाम से कितनी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। तो श्रोताओं, ये जो महान गीत धीरे धीरे और महान बनता गया और एक बलशाली राष्ट्र की मानो एक पहचान बना कि जागो, अपनी माँ की वंदना करो। और सचमुच ताज्जुब की बात ये थी कि शासक वर्ग जब ये वंदे मातरम सुनता था तो थोड़े से घबरा से वो लोग जाते थे। उनको लगता था कि जहाँ पर ये नारा इस्तेमाल होगा, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वंदे मातरम रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके आनंद मठ पर बैन लगाया जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन 1905 में एक विचित्र घटना घटी। उन दिनों विस्फोटक स्थिति बहुत ज़्यादा थी। वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले थे और वो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, और उस कांग्रेस जो अधिवेशन हो रहा था उसमें टैगोर की भतीजी जो विख्यात गायिका थी सरला देवी, वो उसमें उपस्थित थी। और उनका विवाह भी एक राम भजदत्त चौधरी से हुआ था जो देशभक्त थे। सरला देवी को जैसे ही लोगों ने देखा, लोगों ने कहा कि वंदे मातरम गाइए, वंदे मातरम गाइए। और श्रोताओं, बस वंदे मातरम की बात जैसे हुई, अब थोड़ा डर लग रहा था कि अगर वंदे मातरम गाया तो अंग्रेज़ तो वैसे ही दुश्मन हुए पड़े हैं और आनंद मठ पर बैन लगाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही सरला देवी ने पंक्ति पहली गाई, श्रोताओं क्या किसी की हिम्मत थी कि कोई उनको रोक पाता। एक भी पुलिस वाला चू नहीं कर पाया और उसने पूरा गीत गाया। और ये गीत तो समझिए बस देश भर में आज़ादी का प्रतीक बन गया था।
1: इतिहास के झरोखों से

श्रोताओं, अपने वतन की कसम, इस मिट्टी का कर्ज सबको अदा करना चाहिए। बस इस गीत के साथ ही आप मुझे अनुमति देंगे नमस्कार और मंगल कामना।

0: to 3 p.m. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना के साथ। आपको नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आज ही रात से पेट्रोल का दाम 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है, यानी 6.40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन डीजल के दाम 71.25 रुपये प्रति लीटर पर पहले जैसा ही रहेगा। ये फैसला कर रात हुई पेट्रोल प्राइसिंग कमेटी पीपीसी की बैठक के बाद लिया गया। पीपीसी ने दुनिया भर में फ्यूल के दामों में हुई बढ़ोतरी के साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को भी ध्यान में रखा है। इसके साथ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पेट्रोल और डीजल की खरीद बिक्री का समझौता करेगी ताकि लंबे समय तक इनकी सप्लाई बनी रहे। इस फैसले को कल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ये समझौता मॉरिशस और भारत की सरकारों के बीच आपसी सहयोग के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल दोपहर बेजुतोंबो में कई जगहों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने बेजुतोंबो में फोर्ट अल्बेया मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया। इस पर 3.5 मिलियन खर्च किए गए हैं और इसका काम मार्च से जून के बीच पूरा हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इलाके के नए पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया। अपने भाषण में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का इरादा फिर से जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार किसी भी तरह की नमी नहीं दिखाएगी। और प्रधानमंत्री वैसे इस रविवार दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वे सोमवार को जोहान्सबर्ग में होने वाले सादेक के 40वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज सुबह फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस समारोह में प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया, जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भारत और मॉरिशस के बीच के विशेष संबंधों का प्रतीक रहा। विदेश में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को खारिज कर लिया है। अदालत ने इस कानून को नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कानून के प्रमुख समर्थक थे। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.

0: रोड बन में अमीर रोड बन में अमीर तबाजी दे जामी के पास तबाजी दे मिजामी के पास 58 साल की 58 years old की श्रीमती मीराबाई वेंकटासामी श्रीमती मीराबाई वेंकटासामी पैदाइश नाम किसना और जो बाबू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर और रोदबन में से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 4 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: आज की चर्चा।
3: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है गोपियो मॉरिशस द्वारा आयोजित जो 16वां कन्वेंशन चलने वाला है इस वर्ष सितंबर महीने के 11 से 13 तारीख को। उस पर और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस संस्था गोपियो मॉरिशस के अध्यक्ष श्री विनय दसोई जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। विनय जी नमस्ते।
4: नमस्कार।
3: आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि गोपियो मॉरिशस जो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन कर रहा है 16वां कन्वेंशन चल रहा है इस वर्ष, तो आप हमें बताइए कि गोपियो का जो उद्देश्य है किस मतलब कितने समय से यह स्थापित है और किस उद्देश्य से यह कार्य करता है।
4: ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, नाम ही से पता चलता है कि एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में जहाँ जहाँ PIO बसे हैं
3: पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन
4: जैसे मॉरिशस में ऐसे कई देश हैं, उन सब को एक मंच पर लाना।
3: जी हाँ।
4: और मंच पर लाकर बातचीत करके कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सके और आगे बढ़ सके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरह से हम अपना योगदान दें ताकि ये दुनिया जो है और अच्छी जगह बने रहने के लिए, सुख शांति से सब लोग रहे, ये गोपियों का उद्देश्य है।
3: जी।
4: और इसकी शुरुआत तो मैं नहीं बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल हुआ है, क्योंकि भारत से बाहर जब गए सब लोग और जहाज़ में साथ में जा रहे थे, कोई यहाँ उतरा कोई वहाँ उतरा,
3: 200 साल
4: हो गए और जहाज़ में दोस्ती हो गई, परिवार जैसा रहने लगे, तो उसके बाद जब बिछड़ रहे होंगे तो सबकी तो यही इच्छा होगी ना, बिछड़ने में हम क्या बोलते हैं, फिर मिलेंगे।
3: ज़रूर।
4: तो ये फिर मिलेंगे का जो सपना है, इतने साल लगा हमें गोपियों के माध्यम से वह मंच फिर से बनाना ताकि हम फिर से मिले, विश्व में जितने लोग हैं फिर से मिले और आपस में भाईचारे को दुनिया में बढ़ाएं।
3: और सबसे सुंदर बात तो ये है कि ये सभी लोग जो बिछड़े, जहाँ से पहली जगह से जहाँ बिछड़े वो भारत माता भारत भूमि थी, और आज 15 अगस्त है, आज भारत की स्वतंत्रता दिवस है और इसी दिन पर आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है इस दिन के साथ हम आज पूरा न्याय कर रहे हैं जहां हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत से निकलकर जो शर्तबन मजदूरी के हैसियत से लोग अलग अलग देशों में गए, मॉरिशस वो पहला देश था जहाँ पर टेस्ट केस किया गया इस सिस्टम का, इस इंडेंचर सिस्टम का, शर्तबंद प्रणाली का, और मॉरिशस से ही ये जो बाकी देशों में गए मॉरिशस से ही गुजर कर गए। जब कहते हैं कि आधे मिलियन लोग मॉरिशस में उतरे थे शर्तबंद मजदूर के हैसियत से, तो वो सभी लोग यहाँ पर बसे नहीं थे, इनमें से बहुत लोग यहाँ पर स्टॉप ओवर की हैसियत से उतरे, फिर यहाँ से वो लोग कैरिबियन में गए, सूरीनाम गए, अलग अलग देशों में गए। और ऐसी एक संस्था है जो आज 16वीं कन्वेंशन की तैयारी कर रही है गोपियो, और 16वीं कन्वेंशन का अर्थ है 15 कन्वेंशंस इस तरह से हो चुके हैं, तो क्या आप इस इन पूरे 15 कन्वेंशंस में उपस्थित रहे हैं?

0: हाँ, 15 कन्वेंशन हुआ है पूरे देश में। सबसे पहले किरण जी, हम गोप्यो मॉरिशस की ओर से भारत को नमन करते हैं।
1: अवश्य।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हमारी बधाई और शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: और हम शुरू से जुड़े हैं इसमें, जब ये गोप्यो मूवमेंट शुरू हुआ।
1: जी हाँ।
0: और मॉरिशस में, विशेषकर मॉरिशस में हमारे स्वर्गीय भाई धनदेव बहादुर के नेतृत्व में ये सब शुरू हुआ था, तो हम साथ में थे। फाउंडर मेंबर हम भी हैं साथ में, लेकिन उनके साथ हम धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया कि अब केवल मॉरिशस नहीं, मॉरिशस के एक जगह से शुरू हुआ था, फिर मॉरिशस में पूरा हुआ, फिर उसके बाद हम
1: अंतर्राष्ट्रीय
0: बियॉन्ड बॉर्डर्स जिसको बोलते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ, सरहद पार,
0: सरहद पार हम वहाँ गए। और आज एक मंथ जो हमारा सपना था बनाना वो है, और बहुत कम से कम अभी फिलहाल जो एक्टिव मेंबर है देश, 25 से 30 देश हमारे साथ है उस प्लेटफॉर्म में, हम काम कर रहे हैं साथ में। और अब तक हमने कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन का मकसद ये था, हर दो साल में एक बार करते हैं, सभी को मिलाना एक जगह पर।
1: मतलब जब आप कह रहे हैं कि हर दो साल में एक कन्वेंशन होता है, तो अगर अभी 16वां कन्वेंशन चल रहा है तो 30 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसके गठन को, और आप 30 साल से इससे जुड़े हुए हैं। और ये कैसा रहा ये सफ़र, 30 साल का ये सफ़र?
0: सफ़र अगर कहें, यात्रा, मान लीजिए वो मैं नहीं करता तो सफ़र मेरा तो चलता, लेकिन उसके साथ जुड़ कर काम करने में
1: जी।
0: वो जो जीने का अंदाज़ हमारा बदला, काम करने का अंदाज़ बदला, लगा कि अरे एक जगह से निकले हैं, अब हमारे लिए पूरी दुनिया हमारा घर हो गया है। तो ये जो जिन्होंने ये सपना दिखाया था या कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम,
1: जी हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ,
0: उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया था। और आज धीरे धीरे हर क्षेत्र में देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम का जो सपना है वो साकार होता दिख रहा
1: जी
0: है।
1: हाँ।
0: केवल देखने का नजरिया बदलना चाहिए
1: जरूर। और हर जैसा कि आपने कहा, हर एक क्षेत्र में, हर एक एंगल से देखेंगे तो यह एक वास्तविकता है। एक तो गोपियो जिस मकसद से काम कर रहा है, सभी डायस्पोरा देश को इकट्ठा करने में, और आपने कहा लगभग 25 देश हैं, 25 देशों का इस संगठन में होना, मतलब कि पूरे विश्व से लोगों का अलग अलग कोने से जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। और फिर आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों तक संपर्क रख सकते हैं। बातचीत जो यहाँ पर घट रही है आपको ही नहीं पता, लेकिन दूसरे देशों को पता चल जाता है। आज ऐसी दुनिया में हम जीते हैं जहाँ पर हमको दूसरे देशों में फ़ोन करके लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप कैसे हैं, क्योंकि अभी कुछ हुआ है और उनको पता भी नहीं। तो ऐसे देश में इस ऐसे उद्देश्य के साथ चलना जहाँ पर इस विश्व को एक बेहतर जगह बना सके, आपसी मेल मिलाप कर सके, जो बिछड़े हुए हैं उनके साथ मिल सके, और हमारा जो इतिहास है जिसको हम शेयर्ड हिस्ट्री कहते हैं, हमारा जो विरासत है जिसको शेयर्ड हेरिटेज हम कहते हैं, उसको एक ही मंच पर लाकर उस पर बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना, और फिर एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के देश की जो प्रथा है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, उसके बारे में जानना, उस पर शोध करना, इससे बड़ी बात आज की दुनिया में क्या हो सकती है। जबकि हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ी से हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ विज्ञान और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, सब कुछ कृत्रिम होता जा रहा है, वहाँ संबंधों का जुड़ना, इतिहास और विरासत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो कॉन्फ्रेंस, जो कन्वेंशन होने वाला है, उस पर हमें थोड़ा जानकारी देते हुए हमें ये बताइए कि इससे पहले जो कन्वेंशन हुए हैं वो कैसे रहे हैं, उनके जो रिजोल्यूशंस रहे हैं वो कैसे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं लगता है कि ये काफ़ी सफल हुआ है।
0: बहुत सफलतापूर्वक जो पिछले कन्वेंशन किए हैं हुआ है, कई कन्वेंशन में निर्णय लिए जाते हैं और सुझाव दिए जाते हैं, निर्णय की जगह सुझाव दिए जाते हैं कि आगे का क्या होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमने अब तक जो किया है, जो सोच कर किया था, कहाँ तक सफल हुए हैं, एक मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन को आधार बनाकर आगे की योजना बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सफल हुआ, क्योंकि धीरे धीरे, शुरू में 25 देश नहीं था, धीरे धीरे

0: जुड़ते गए। अभी जो सबसे नया देश हमारे साथ जुड़ा है, नया गोपियों चैप्टर खुला है, वो म्यांमार देश है।
1: अच्छा।
0: जो कभी सोच नहीं सकते कि म्यांमार में गोपियों का चैप्टर होगा।
1: म्यांमार जो किसी जमाने में बर्मा नाम से जाना जाता था,
0: तो म्यांमार में नया खुला है और बहुत जल्द इसको मैं ही इस पर काम कर रहा हूँ। शिशिर में हमारा नया गोपियों चैप्टर खुलने वाला है। तो इस तरह से देखिए कि पूरी दुनिया में, अफ्रीका हो, एशिया हो, चारों तरफ हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं जहाँ भारतीय मूल के लोग बसे हैं। दो प्रकार के लोग गए थे, एक तो इंडेंचर लेबर के रूप में और कुछ बिजनेस के रूप में वहाँ बसने गए थे, लेकिन सब पीआईओ है। तो वो सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। शुरू में तो हम अगर मोइसेस को ध्यान में रख कर सोचेंगे तो इंडेंचर लेबर के बारे में सोचेंगे।
1: जी हाँ।
0: अब ये हम इंडेंचर लेबर से ऊपर उड़ गए हैं।
1: जी हाँ।
0: जितने लोग भारत के बाहर रह रहे हैं और भारतीय मूल के लोग हैं वो सब जुड़ते जा रहे हैं, और इससे हमें भी, गोपियों इंटरनेशनल को भी और गोपियों को भी, हर देश में वो एक तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है कि आगे और क्या करना है। और इसमें जैसे हम 89 में शुरू हुआ था गोपियों मूवमेंट, पहला कन्वेंशन हुआ था वो उस समय, और अभी के समय में इतने साल बीत गए हैं, तब कोई और था साथ में, हम साथ में थे, कोई और अगुवाई कर रहा था, धीरे धीरे आज मैं हूँ और आगे जो नई पीढ़ी है उनको लाना है, ये हमारा उद्देश्य है। और धीरे धीरे हम इसमें सफल होते जा रहे हैं, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मुझे यूनेस्को का एक लोगो याद आ रहा है, कहते हैं कि अगर आपको जल्दी जाना हो तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर जाना हो तो साथ चलिए। और गोपियों इसी मार्ग पर चल रहा है, लोगों को आत्मसात एकत्र करके एक साथ दूर जा रहा है। काफ़ी लंबा सफ़र इसका रहा है और यह और भी आगे बढ़ रहा है, और देशों को साथ लेकर। इस विषय पर हम चर्चा अभी जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आज का हमारा जो विषय है वह है गोपियों का जो 16वां सम्मेलन चलने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉरिशस में। उस विषय पर हम बात कर रहे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए गोपियों के अध्यक्ष, उसके प्रेसिडेंट खुद श्री विनय दसोई जी आज सुबह सुबह स्टूडियो में उपस्थित हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है विनय दसोई जी। और गोपियों का अर्थ है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और आज भारत की स्वतंत्रता दिवस है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ आज हमने वर्जिन मैरी असम्पशन भी मनावा था जा। और इस दृष्टि से मॉरिशस में एक बहुत सुंदर माहौल आज छैले बा, जहाँ पर मेल मिलाप के दिन है, खुशी मनावे के दिन है। अपन जड़ी तक जो सफ़र हमने के तय होल बा, जड़ी से लेके आज तक, कहे कि भारत के स्वतंत्रता हमने के पूर्वज के मातृभूमि के एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है। और हमने के भी एकर से संबंध है। आज भी हमने जब पढ़ाई करत है जा, जब हिंदी में आप उच्च शिक्षा करत है जा, तो हमने के भारत के जो इतिहास बा पूरा एकर पर जानकारी मिलेगा। साथ में कितने ऐसा हमें मूवी भी देखते हैं जा, हमेशा से मदर इंडिया से लेके अभी तक बहुत ऐसा राष्ट्रीयवादी मूवी चलेगा, ऐतिहासिक मूवी चलेगा। और ये सब मूवी, ये सब फिल्म में हमने के अपन जो जड़ी बा भारत माता के ओकर इतिहास पर जानकारी मिलने आवेला। और आज हमें जो विषय पर बात करते जा गोपियों इंटरनेशनल, थोड़ा एक अपना भोजपुरी पर बोली राजा, कहे कि मॉरिशस में हमने के भारत से जितना कोई मॉरिशस आइलैंड जाता, शुरू से लेके अभी तक हमने के जो चलती फिरती भाषा है वो भोजपुरी ही है। तो ये जो सम्मेलन चलता विनय जी, ये सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक चली,
1: 11 से 13 सितंबर,
0: एक पर हमें थोड़ा जानकारी दा, तैयारी कैसे हुआ था, कैसे चली, कौन कौन विषय रही, कौन कौन मतलब

0: गतिविधि के प्रावधान बा, कौन कौन देश एकर में शामिल हुआ था, थोड़ा हमने के बतावा।
1: 11 से 13 सितंबर के हुआ था और हमने चुन ले है जा हमने के जगह स्थान जहाँ पर हुई वो है ह्यूमन सर्विसेस सांस्कृतिक केंद्र जो कालबास में स्थित बा
0: जी।
1: और ये कन्वेंशन के हमने के विषय दल ले जा इस बार, हर बार एक विषय
0: रहे। हाँ,
1: अभी जैसे बात करते हैं जा कनेक्टेड, पहला हमने के विषय है कनेक्टेड कनेक्टेड बियॉन्ड बॉर्डर्स, सरहद के बाहर कैसे हम मिले
0: संपर्क।
1: दूसरा बा शेयर्ड कॉमन कल्चर जबकि है
0: जी।
1: और अंतिम ओकर में जो विषय रख ले जा कि स्ट्रेंथन ग्लोबल नेटवर्क, यानी सुदृढ़ बनाए के हमने के विश्वव्यापी नेटवर्क चुनबा
0: जी।
1: विश्वव्यापी नेटवर्क के मतलब जितने लोग पीआईओ बाहर से सबके साथ और एगो बहुत अच्छी तरह से संयोजित ढंग से काम करके आगे बढ़े। और ये एकर चार गो भाग में सेशन करत है जा।
0: अच्छा।
1: एगो अकादेमिक, अकादेमिक अभी जैसे तू बात कहता है इतिहास
0: जी,
1: वो पेड़ के जड़ नहीं रही तो वो तो पेड़ ही नहीं रहे।
0: हाँ।
1: थोड़ा सा हल्का सा झोंका है तो गिर जाए,
0: गिर जाए।
1: तो हर आदमी के इतिहास ओकर जड़ है, नींव है। और दूसरा हमने के विषय बा सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल के मतलब वर्तमान में हमने अभी कैसे जी ला जा, कैसे हमने के रीति रिवाज बा ओके कैसे हमने आगे बढ़ाते जाए, नया जेनरेशन के का दुआते जाए है। फिर एगो यूथ कॉन्फ्रेंस बा, नया जेनरेशन खाते यूथ कॉन्फ्रेंस कहते जा, अभी ओकर पर ओकर विषय पर हम बात करब
0: जरूर।
1: और ये सब चीज़ में आगे बढ़े के थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी हमें सुधरे के चाहिए
0: जरूर। और महंगाई के समय बाद टिकट भी बढ़ा था। हाँ, सब कुछ
1: बड़ा अच्छा वो चीज़ सुनाते है कि एगो कलाकार कितनों बड़ा कलाकार रही, जब पेट में भूख के राग दौड़ा था तो वो गाना गा ही नहीं सकी
0: जरूर।
1: तो इस तरह से अगर सुदृढ़ बनना है, बनाना है संस्था को, तो आर्थिक स्थिति भी सुधारनी चाहिए। तो उसमें बिजनेस कॉन्फ्रेंस,
0: अच्छा
1: पहले जो तीन गो कॉन्फ्रेंस हुई सेशन हुई वो ह्यूमन सर्विसेज के सांस्कृतिक केंद्र में हुई, और बिजनेस कॉन्फ्रेंस लेगुले के ओशियन क्रिक होटल में हुई।
0: ओके।
1: और है सब विषयों में कई गो टॉपिक दिले जा हमने के
0: में विस्तार से प्रोग्राम
1: रहे। एक एगो भाग है रिसर्च वर्क जो ओके सामने आए के जो उनके इतिहास बढ़ जाए, इतिहास में भी आज तक कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे अभी अनभिज्ञ जैसे उतना पता नहीं बा, क्योंकि हम साधारण लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
0: जी हाँ।
1: तो क्या होता है कि रिसर्चर जो होते हैं वो लोग पूरा उसी में ध्यान देकर प्रूव के साथ
0: साइंटिफिक बातें हैं वो सामने रखा था,
1: यथार्थ को सामने रखते हैं। तो उस पर अकादमिक पर कई टॉपिक रख ले जा, फिर सोशियो कल्चरल पर जो अभी के हमने के आसपास के वर्तमान की चीज़ें बा ओकर पर बात करके क्या होता स्थानीय जो
0: चीज़ और ओकर कौन स्थान बा,
1: कौन स्थान और आगे कैसे बढ़ी
0: जरूर। समाज और संस्कृति के बिना हमने के जीवन निरस बा।
1: हाँ, तो उन मतलब समाज हमने के समाज के अभी वर्तमान समाज के बारे में बात कर रहे हैं ई ओकर, और हमने के युवा पीढ़ी के आगे कैसे ओकर में जोड़े जाए है नेटवर्क और बिजनेस की बात करिए ई और एक खातिन हमने के कम से कम 20 गो टॉपिक पर बातचीत हुई।
0: ओके।
1: 5 गो सेशन में विभाजित बा।
0: कई बजे से कई बजे ले चली फजीर के
1: अच्छा प्रोग्राम इस तरह से रही, इसका औपचारिक उद्घाटन ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी 11 सितंबर शुक्रवार 11 सितंबर के 3:30 बजे सांस्कृतिक केंद्र ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के कालबास में हुई, जहाँ पूरा ऑफिशियल कर इनोग्रेशन हो। और फिर फॉलोड बाय वो प्रथा है वो गला डिनर सबके साथ।
0: जी हाँ।
1: सब मेहमान के साथ हो रहा। और बाद नेक्स्ट डे 12 को पूरा दिन सेशन चली, जैसे बतेलिए वो ओशियन क्रिक में और बाकी सांस्कृतिक केंद्र ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट कालबास में।
0: जी हाँ।

0: और ओकर में तीन गो भाग भाई वो तो एकेडमिक सोशियो कल्चरल और यूथ कॉन्फ्रेंस पगालिल हुई अलग अलग हुई और ओकर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा शब्द ऐसा विषय दल रहे जा जो आदमी के जानकारी के लिए अच्छा रहे और जानकारी के साथ साथ हमने के प्रेरणा दे आगे बढ़े के और हमने के स्कॉलर लोग आके हमने के हाउ विषय के जरिए हमने के मार्गदर्शन करिए पूरा ओकर में मॉरिशन यहाँ के हमने के स्थानीय रिसर्चर लोग हों जा स्कॉलर हों जा रिसोर्स पर्सन रह जा और हमने के बाहर के गोप्य चैप्टर के भी कई लोग आके अपन अपन पापिया जुनवा प्रस्तुत करिए प्रजाते करिए और विषय कई विषय बा जैसे कि आज के युग में नई टेक्नोलॉजी के युग में हम कल्चर के कहाँ स्थान बा
1: जी
0: और कैसे जो नया चैलेंज आता है आधुनिकीकरण के उसके ओके फास कैसे करो सर
1: जरूर
0: ताकि वो भी रही ये भी रही साथ चली गई तो है कई ऐसे विषय रख ले
1: और ये बहुत एगो दिलचस्प विषय बा कहे कि जब कोविड आ रहा जब सब जो सरहद बंद हो गए जब घर से निकल के मना ही रहा सामाजिक जुटाव नहीं रहा मरनी रही शादी रही पूजा रही परब रही आपके मेल मिलाप की जरूरत नहीं सकबा करे मेल मिलाप सब म्यूजियम सब जो कल्चरल और हेरिटेज साइट बा बंद हो गल बा ऐसन में कितने उपाय ढूंढल गल कहे कि हमने एगो सामाजिक प्राणी है ऐसा नहीं सकबा घर के चार दीवारी में बंद रही बीमार हो जाए बा तो ऐसन में अब ऑनलाइन कैसे सकबा ऑनलाइन विजिटें करे कल्चरल कल्चरल प्लेसेस कल्चरल साइट्स कैसे सकबा संस्कृति और समाज से जुड़े ऑनलाइन ऐसन ऐसन बात के प्रावधान रहल तो हमने एगो ऐसन दुनिया में जियत है जहाँ पर कबो भी ऐसन स्थिति सकी पैदा हो जाए और हमने के चाहिए तैयार रह के तो ऐसन ऐसन विषय लेके जब आई बजा तो यही सब बातचीत ओकर पर चर्चा चली
0: जैसे कोविड में गोप्य मॉरिशस कौन सी कर लीजिए हमने के कोविड
1: कुछ कर ले रहना जा
0: हाँ घर में बैठा रह लीजा
1: जी हाँ
0: लेकिन हम प्रधान होने के नाते सब सदस्य के फोन पर बात कर ली बोली कि एगो चीज देखा जा तो लोग आश्चर्य कर जा कि तोहर आसपास के घर में कोई ऐसन व्यक्ति बा जो कोई वृद्ध महिला या पुरुष अकेले घर में रहला देखो वो के कैसे सकबा ये दे करे क्योंकि ओकर खातिर बाहर निकल के कुछ खाई पिए के सामान जाकर खरीद के आई के बड़ा मुश्किल रहा तो हमने के लोकल हर चीज़ हमने सकब जा करे हालांकि उस समय माला रहल बाहर जाके तो ये जो टेक्नोलॉजी रहल मैसेज व्हाट्सएप है सब बड़ा काम कर ले ये खातिर हम बोले चाहते कि यही हाउ स्थिति में हमने उस समय के एगो रास्ता ढूंढ लीजिए है रास्ता रहा और हाउ से मैसेज गल और कई जगह पर हमके मैसेज दे नहीं ठीक बा ऐजा ऐसे रल है कर लीजा है कर लीजा तो ये टेक्नोलॉजी है इसको कैसे हम पॉजिटिव वे में
1: जरूर
0: एकर
1: इस्तेमाल
0: प्रयोग करब जा तो निसंदेह सबके भला हुई
1: जी हाँ जी और आप बात करत रहा विषय के जो यूथ कॉन्फ्रेंस में चली
0: अच्छा यूथ कॉन्फ्रेंस के बड़ा सोच समझ के विषय दले जा कि पहला तो मतलब ऐसा नहीं हो कि वन वे कॉन्फ्रेंस है एक दिन आए पेपर पढ़ के चल जाए ओकर में ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप डिस्कशन के जो विषय दल रह जाए ताकि अभी के यूथ जो युवा पीढ़ी बा ओके सोचे के मजबूर करे के तो ओकर पहला बा कि नो योर रूट्स पहला अपना जड़ जाना कहाँ
1: है
0: दूसरा बा प्राउड टू बी PIU
1: Proud to be people of Indian origin.
0: Indian origin. Phir ba preservation of our identity. Ek to roots jaan gaila, phir garv ba ki haan, hum PIU hai, hum joan chiz hai, oka pa garv ba. Phir oka baad, oke bachao ap ja kaise, aage badhaap ja kaise. Ar ant mein, determination jo hota hai, humne ke, kuch kare ke. और ओकर जो हमने के रूट से जो हमने के कल्चर जो चीज़ मिलल बा ओके हमने में कौन चीज़ बा जो क्लिक कर रहा था कि आगे बढ़ाई के चाहिए बैठे के नहीं वो दिता है हाँ

0: करे के चाहिए तो है एगो विषय में वो लोग अपन बात करिए बस देखा एगो चीज़ हुआ हमने सोचा यूस बहुत अच्छा जाने ला बहुत थोड़ा कम नहीं जाना लेकिन साथ में जब हो तो सब कोई एक दूसरे जाए ये सुबह के पूरा डिस्कशन हाई पर हुई
1: okay.
0: और दिस एम आफ्टरनून में दलेजा की जरोल ऑफ जरोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूज इन द कंसोलिडेशन ऑफ पीआईओ मूवमेंट अब थोड़ा सा पीआईओ पर चले जाए कि पूरा जो हमने काम कर जाओ कि और कैसे संगे आई के कंसोलिडेट करेंगे यूज के कौन रोल बा कौन इम्पोर्टेंस बा फिर यूज खातिन माई विजन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनाइट पीआईओ फैमिली एंड मूव फॉरवर्ड एट रीजनल नेशनल इंटरनेशनल लेवल तो यूज के उस स्तर खातिन वहाँ के खातिन हमने तैयार करते जाए कि तोहर रोल तोहर विजन ओकर से सुने चाहते जाए
1: और यूथ में
0: हाँ।
1: कौन उम्र के युवा लोग हवन जा
0: अच्छा ये तो बड़ा उम्र देखो हमने 30 से नीचे के यूथ गलत है यूथ में तो बोला जाना ना कि जज्बा बात है वो हमेशा जवान हुआ
1: जरूर
0: उम्र की कोई बात नहीं है कैलकुलेशन अंधित्व नहीं है
1: हाँ, लेकिन चाहे हम के उम्र के ख्याल
0: रखेंगे उम्र के ख्याल बा 30 तक
1: जरूर
0: 30 के नीचे यू सर और हमने 88 नहीं 16 रख दे लीजिए क्योंकि हम चाहते थे जो SC HSC के लड़का
1: वो
0: भी शामिल हो थोड़ा समझन से अभी ऐसे क्या हो और एक में आर एगो चीज जो सबसे रेजोल्यूशन में कौन सी दल ले जा रेजोल्यूशन में दल ले जा कि हम माई फर्स्ट 10 स्टेप जो रेजोल्यूशन से अच्छा लाए और में हमने हमारे पहला 10 गो कदम का हुई जितना चीज अभी डिस्कशन कर लिया जा बोल लिया जा अच्छा लगल बोलेगी ओकर कार्य रूप के हमारे 10 गो पहला 10 गो पहला कदम का हुई वो लोग सजेस्ट करी तो एक में कई गो चीज कई गो चीज सामने आई जो हमनियों के हिसाब से हमने के अंदोर रहल हमने के दिमाग से तो उस सब के हमने प्लानिफिया करके आगे यूज के बढ़ा के हमने के सबसे बड़ा मोटिव है युवा पीढ़ी के आई के क्योंकि आज विनय दसोई बा काल चाहे दूसरा कोई के रहे
1: जरूर और युवा पीढ़ी के कंधा पर ही चाहे जिम्मेदारी छोड़े के कहे कि उलोगी ता भविष्य हवन जा बागडोर उलोगी ले जाइन जा और अभी जे ये सब जन चर्चा बा परिचर्चा बा ये जोन बात बा और फिर जिम्मेदारी बा उ लोग पर नहीं सौंप उ लोग के ट्रेन नहीं करवा प्रशिक्षित नहीं करवा आगे मंच पर नहीं ले जाएबा तो कठिन होई
0: कठिन बहुत कठिन
1: चाहे अब उ लोग के गिलेफ देवे के चाहे उ लोग के हाथ में ये मशाल सौंपे के और ये बहुत सराहनीय कार्य बा कि युवा पीढ़ी पर आप लोग बहुत ध्यान देवा जा हमार देखे में युवा पीढ़ी के साथ साथ आपके ये बात के भी ख्याल रख ले हुई बा कि चाहे एक में छोकरी लोग के औरत लोग के भी बराबर शामिल करेंगे
0: सब बस सब
1: जी हाँ
0: मतलब युवा के मतलब
1: दोनों जना
0: युवा का युवती दोनों
1: जी और ये बड़ी अथवा इंटरनेशनल जब कन्वेंशन चल रहा था तो मॉरिशस में पहला चल रहा था बाकी देश में भी चल रहा और का मॉरिशस में पहला इंटरनेशनल चल रहा था
0: अच्छा मॉरिशस में है चौथा अधिवेशन है इंटरनेशनल मतलब 15 हो गल बा 15 में हमने 3 गो मॉरिशस में कर दिले जाए
1: ओके
0: और मलेशिया के जो गोप्य चैप्टर है वो 3 गो कर लिया बाकी नेपाल सिंगापुर श्रीलंका कई ऐसे देश बा जन 15 गो ले आ ले जाए अब मॉरिशस एक कदम आगे हो गए 4 गो हो गए हमने के चौथा अधिवेशन होता
1: है बहुत बहुत बधाई
0: अरे धन्यवाद क्योंकि हम जिस तरह से मॉरिशस है पीआईओ के दुनिया में मॉरिशस के जो स्थान है वो हमने के मजबूर कहला कदम आगे बढ़ाई
1: जरूर और मतलब कौन कौन देश से है यहाँ पर अभी आवत हवन जा
0: अच्छा
1: इतना देश से आवत हवन जा
0: हमने के सभी देश के अभी तक लगल बा लेकिन अभी थोड़ा सा अभी लगभग 1 महीना बाद
1: हाँ अभी तक समय बा कन्फर्मेशन खातिर
0: जी हाँ लेकिन जितने भी देश है हमने के इंटरनेशनल मीटिंग होला हमेशा ऑनलाइन तो वो मैं हमेशा हमके बोला तरन जा कि विनय जी कब मॉरिशस में करवा जाए हमने मॉरिशस आई चाहते जा मतलब वो इच्छा बा मॉरिशस है हमके बहुत आशा बा कि सब देश से लोग आए
1: जी।
0: और कई गो देश से कन्फर्मेशन हो गए बा।

0: कई देश से ज्यादा लोग भी आ रहा है
1: जी हाँ।
0: लेकिन हम नहीं चाहते से कि हर देश से कोई ना कोई आवे,
1: जरूर आए।
0: और इस बार थोड़ा अफ्रीका में भी ध्यान देते जा, और हमने कहा अधिवेशन के बाद हमने के रेजोल्यूशन में ये रही कि थोड़ा सा अफ्रीका के देश में मूव करके थोड़ा वहाँ बढ़ाइए। तो सिंगापुर, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, साउथ अफ्रीका,
1: तो जब ये सब देश से लोग अयंजा प्रतिनिधि लोग अयंजा तो विषय कौन मतलब कि कौन भाषा में ये कॉन्फ्रेंस रही?
0: अच्छा अंग्रेजी में रही,
1: अंग्रेजी में। कहे कि सब देश से आवत हवन जा, ढेर देश में हिंदी नहीं बोले
0: अयंजा नहीं समझा। जैसे मलेशिया के लोग है वो लोग इंग्लिश और तमिल
1: जी,
0: और कहीं पर दूसर भाषा
1: जी हाँ।
0: तो ताकि सब कोई समझे इंग्लिश में हुई
1: जरूर। तो अभी जैसे सुनत हवा हमने बात कर रहे थे जहाँ गोपियों के जो 16वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लगे होला बा मॉरिशस में आवत 11 से 13 सितंबर तक, और इस विषय पर हमने संगे बात कर रहे हवन गोपियों के प्रेसिडेंट उनकर अध्यक्ष श्री विनय दसोई जी। और अभी ये प्रोग्राम के अंतिम चरण पर पहुँचब जा, लेकिन एकर से आगे ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा में जो विषय पर हमने बात कर रहे थे जा वह गोपियों द्वारा आयोजित जो सम्मेलन चले होला बा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मॉरिशस में और यही लगले देखे थे जा कि गोपियों के कौन उद्देश्य है, कौन दिशा में वो काम करेला, कब से स्थापित बा, कैसे ओकर कार्य चलेला। और हमने संगे हवन गोपियों के प्रधान श्री विनय दसोई जी। विनय दसोई जी, हमने के ई कॉन्फ्रेंस के जो ओकर विषय बा, साथ में एकर संगे कौन गतिविधि चली, और जैसे बोलला कि ई पूरा जन कॉन्फ्रेंस बा ओकर अंतिम दिन के सिवा सब चले होला बा कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में। तो थोड़ा हमने के एकर बारे में और जानकारी दा जेकर से सकब्जा समाप्ति के ओर बढ़े प्रोग्राम के।
1: हमने के कॉन्फ्रेंस के जो टॉपिक बात करब जा ओका में हम तीन चार गो के खाली बोली रहा, 20 गो टॉपिक चुन रहे जा बात करे के, 20 गो स्कॉलर आयु कर पर बात करे। जैसे हमने यूज के बात कर ली जाओ, कल में वो टॉपिक दल ले जा, बड़ा कॉन्फ्रेंस है यू के कॉन्फ्रेंस के अलावा जो हमने के कॉन्फ्रेंस हुई यूज लीडरशिप एंड द फ्यूचर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा विषय बा, एक काफ़ी बात हुई। और दूसर बा डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड कल्चरल ट्रांसमिशन है पर, क्योंकि ये नया चैलेंज जो हमने के सामने आवा था वही है। फिर बा द प्रमोशन ऑफ आवर हेरिटेज थ्रू कल्चरल टूरिज्म है पर थोड़ा नया काम के साथ, विशेषकर गोपियो मॉरिशस और गोपियो इंटरनेशनल इस पर ध्यान देवा थे जब बहुत कल्चरल टूरिज्म पर। फिर बा द रोल ऑफ गोपियो इन द इराडिकेशन ऑफ अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी, ये अभी के जबरदस्त मुद्दा बा। तो हमने चाहते थे कि गोपियों भी इस पर काम करें, इंटरनेशनल गोपियों भी इस पर करें। और हमने के हमेशा धन्यवाद बोले खातिन एगो विषय जो हमके बड़ा प्रिय लगल बा हम रख रहे कर में, वो है कि द ब्लेसिंग एंड गाइडेंस ऑफ भारत फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ पीआईओ डायस्पोरा, एक पर हम चाहते कोई बात करिए प्रति करिए, क्योंकि हमने के रिकॉग्नाइज करे के चाहें जहाँ से जो भी सहयोग मिलेगा, जो भी सपोर्ट मिलेगा, और जाने के चाहिए कौनच कौनच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग लाभ उठाए। और जो हमके को टॉपिक बड़ा अच्छा लगा था, वर्ल्ड फ्यूचर चैलेंजेस एंड द इंडियन डायस्पोरा, ये तो अपने आप में सब कुछ बोल दिया था। ऐसे 20 गो टॉपिक बा जो तो देखे चार गो पाँच गो सेशन में हो, लेकिन ओकर ले सबसे महत्वपूर्ण सेशन जो गोपियों मॉरिशस खातिन है और जो हमके बड़ा प्रिय है वो है कॉन्फ्रेंस हम दीजिए कहते सर गोपियों के फाउंडर लेट श्री धनदेव बहादुर जी के जी। एक तरह से गोपियों मॉरिशस आज रिकॉग्नाइज करा था, माना था कि धनदेव जी के कार्य और धनदेव जी के विजन ओकर देतेमिनाशो और ओकर एक्शन बहुत बड़ा चीज रहल, केवल मॉरिशस खातिर नहीं पूरी दुनिया खातिर। तो वो है सेशन हुआ, स्पेशल सेशन होता उस रविवार को 1 बजे से शुरू हुई, 2 घंटा के वो सेशन रही, ओकर में कई जन आके ओकर पर बतियान जा। और हमने एक में साथ साथ गोपियो मॉरिशस कुछ लोगों को अवार्ड की तरह
0: सम्मानित,
1: हाँ उनके मतलब माने के कि हाँ काम कर ले वजह जो न अभी भी

0: कहाँ पर कोना उना में हो जाए तो उन लोग के सबके तो नहीं सकब मैं इस साल हमने कुछ लोगों के जो अब जा अवार्ड सेरेमनी भी यही करते जाए हई हमने के पूरा गोपियो कॉन्फ्रेंस के बारे में जो मुख्य विषय रही जो होकर पर हम बात कर ली है और बड़ा शिष्य हम सोचत है कि धंधे बहादुर जैसन तबाया सोशल देश धर्म जाति समाज के बारे में सोचल आदमी अभी तक शायद हम नहीं मिलल है जो अभी तक ओकर लिए बड़ा कोई हुई था लेकिन हमर खातिन एगो आदर्श रहन ये खातिन हमने के ये देवो है कि है कॉन्फ्रेंस हुआ दीजिए करके श्री धंधे बहादुर जी के।
1: और जब उनकर आदर्श के बारे में बोला था तो जहाँ पर आप लोग युवा पीढ़ी से जुड़ के ये सम्मेलन चलावत हुआ जा बहुत ज़रूरी बा युवा पीढ़ी लोग के ऐसा ऐसा रोल मॉडल आदर्श उन लोग के सामने रखे के ओकर बारे में बातचीत करे के ताकि उन लोग से क्या जाओ ओकर से प्रेरणा लेके अपन जो डायरेक्शन बा मार्ग निर्देश बा ओके तय करे। कहे कि देखा आज ऐसा दुनिया में जियत है जा जहाँ पर हर एगो बात के आपके पुष्टि चाहिए कुछ हो भी जानकारी चाहिए तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बा जीवित मूर्त इंसान पर जितना बतियाबा तो ओकर से इंस्पिरेशन लेके जिए के चले के जीवन में ये बहुत ज़रूरी बा आज के युवा पीढ़ी लोग के सिखावे के।
0: आज के इस अवसर से हम लाभ उठा के सबसे पहले भारत सरकार के विशेषकर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मॉरिशस के और जितने हमारे यहाँ के फेडरेशन है सामाजिक संस्था है
1: जो सहयोग दे रहे हैं
0: जितने लोग जोड़ रहे हैं आप भी सहयोग दे रहे हैं एमबीसी भी सहयोग दे रहे हैं सभी लोगों को के आगे मैं नतमस्तक होता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। अभी एक महीना और है आप हमारे साथ रहिए आपके साथ रहने से हमें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए और सभी को मैं न्योता देता हूँ कि किसी तरह से हर संस्था पांच पांच लोगों को आज डेलीगेट प्रतिनिधि के रूप में भेजे। केवल ऐसा नहीं कि हम चाहते कि ज़्यादा लोग आए हम चाहते कि ज़्यादा लोग सुने समझे और अपने संस्था में इसको लागू करें तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संस्था के लोग आए तो अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भेजिए यूथ कॉन्फ्रेंस में वहाँ से निकलेंगे तो कुछ
1: रजिस्ट्रेशन फ्री है या इसमें
0: नहीं बच्चों के लिए यूथ के लिए फ्री है
1: जी हाँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन का हमेशा एक फी होता है।
0: रजिस्ट्रेशन एक बड़ा मिनिमम फ्री ले रहे हैं क्योंकि उसमें कई खर्चा है
1: जरूर
0: तो उसके एक बहुत कम फी है उसका लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए फ्री है बिल्कुल सब कुछ फ्री है। तो अब आएंगे हमारे साथ देंगे और इस कन्वेंशन को हम सफल बनाएं क्योंकि ये कन्वेंशन मेरा नहीं है न गोपियों का है ये मॉरिशस का है
1: जनता का
0: जितना
1: है।
0: अच्छा रहे मॉरिशस का नाम आ गया और मॉरिशस से लोग बहुत अपेक्षा करते हैं
1: जरूर
0: कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉरिशस हमारे लिए करे मॉरिशस हमारे के और मॉरिशस सन 2003 में घोषित हुआ है पीआईओ कैपिटल मतलब पूरे पीआईओ का कैपिटल मॉरिशस है। इस बार इस पर भी हम काम करेंगे इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे हमारा एक विषय है जो उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि हमारा गोपियो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में स्थापित हो इस पर इस कॉन्फ्रेंस में भी बात होगी।
1: तो अभी सेक्रेटेरिया कहाँ है
0: ऑफिशियल से अभी सेक्रेटरी जो है वो मलेशिया का है तो वहाँ से वो कर रहा है लेकिन हम जैसे वॉल हिंदी सेक्रेटेरिएट है
1: जरूर
0: इस तरह से एक सेक्रेटेरिएट यहाँ बनाना चाहते हैं
1: क्योंकि हम तो जैसा कि आप कर रहे हैं पीआईओ का कैपिटल घोषित हुए हैं।
0: हाँ हाँ तो इसलिए
1: तो सचिवालय यहीं पर
0: ये सचिवालय यहीं हो और यहाँ से काम हो कल हम रहे ना रहे सचिवालय हो और काम आगे बढ़े। तो इसलिए अभी भी पहले ही मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें बड़ी खुशी होगी आपसे मिलकर हमारे प्रोग्राम मैनों को जैसे मैंने कहा उद्घाटन समारोह शुक्रवार 11 को 3:30 है और क्लोजिंग सेरेमनी 3:00 13 सितंबर को है उससे पहले स्पेशल सेशन है धंधे बहादुर जी पर
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ सब लोग आए मिले अपने लोगों से मिले अपने लोग आएंगे और एमबीसी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया हमें कुछ बताने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय दसोई जी कि आपने अपना समय निकालकर आज इस प्रोग्राम

0: में भाग लिया और हमें ये ज़रूरी जानकारियाँ दी, क्योंकि इस तरह से जब कोई पूरा ऊर्जा, पूरा समय और पूरा जो रिसोर्स है इसको लगाकर एक ऐसा मंच क्रिएट किया जाता है जहाँ पर सभी लोग जुड़ सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने विरासत के बारे में जान सके, तो इससे देश के सभी जनता को लाभ होनी चाहिए, उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि आपका ये जो सम्मेलन है, हमारी ऐसी शुभकामना है कि वो बहुत ही सफल रहे और हमारे सुनने और देखने वालों को इससे दिलचस्पी हुई होगी, उनकी रुचि जागी होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। आपको धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को भी और श्रोताओं को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: आज की चर्चा।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: पीपीसी की बैठक के बाद लिया गया और पीपीसी ने दुनिया भर में फ्यूल के दामों में हुई बढ़ोतरी के साथ प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में दर्ज 3.5 बिलियन रुपए के घाटे को भी ध्यान में रखा है। इसी के साथ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पेट्रोल और डीजल की खरीद बिक्री का समझौता करेगी ताकि लंबे समय तक इनकी सप्लाई बनी रहे। इस फैसले को कल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल दोपहर बेजितोम्बो में कई जगहों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने बेजितोम्बो में फोर्ट अल्बर्ट मिनी सॉकर पिच का उद्घाटन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इलाके के नए पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया। अपने भाषण में डॉ. नवीन राम गुलाम ने नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का इरादा फिर से जाहिर किया। वैसे प्रधानमंत्री इस रविवार दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वे सोमवार को जोहान्सबर्ग में होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज 15 अगस्त को कैथोलिक समुदाय असम्पशन का पर्व मना रहा है। पूरे मॉरिशस में श्रद्धालु अलग अलग गिरजाघरों में एकत्र हुए और जीसस की मां वर्जिन मेरी से प्रार्थना कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्हें एक रक्षक और मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। और काटोबोन स्थित नोत्रडाम ड्यू ओसेर गिरजाघर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। इस दिन मेरी के स्वर्गारोहण की याद में प्रार्थना की गई और उन्हें अपनी आध्यात्मिक मां के रूप में सम्मान दिया गया। विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नौसेना के लिए बड़ा फैसला लिया है। व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने नौसेना को विदेशी शिपयार्ड्स में अपने जहाज बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

शनिवार 15 अगस्त 2026 शाम के 4:10 हुए हैं। रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आप और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। देवी और सजनों आज एक बहुत ही विशेष तिथि है, एक बहुत ही विशेष तारीख है, स्पेशल डेट है, क्योंकि आज भारत की स्वतंत्रता की 79वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में हमने एक विशेष विषय रखा है मॉरिशस के उन साधनों के विषय पर जो भारत के सहयोग से मॉरिशस में बनाए गए हैं। और जो पहला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको देना होगा बाय कॉलिंग ऑन 4200 4200, आप हमें बताएं कि मॉरिशस के किस हॉस्पिटल के सामने भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा है।

मॉरिशस के किस हॉस्पिटल के प्रांगण में भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा है। जाहिर है कि उसी उन्हीं के नाम पर उस हॉस्पिटल का नामकरण किया हुआ होगा। आपका जवाब उनका 2 80

0: ए वतन मेरे वतन सो हमने आपसे सवाल किया कि मॉरीशस के किस हॉस्पिटल के सामने भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पाई जाती है चलिए हम इनसे मिलते हैं हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: नमस्कार जी
0: आपका शुभ नाम
1: हम राजश्री हैं कांफोको से बोल रहे हैं
0: राजश्री जी ये पहली बार के लिए हैं कि आप इस प्रोग्राम में भाग ले रही हैं
1: जी हाँ पहली बार
0: कांफोको में राजश्री जी बताएं राजश्री जी आपके दिमाग में किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं
1: जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो रोजबेल में है
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो रोजबेल में है एकदम सही आपने सही जवाब दिया ये पहला प्रश्न बहुत ही आसान था आप हमें बता सकते हैं कि ये हॉस्पिटल किस साल से कार्यरत है किस साल से फंक्शनल है नहीं
1: नो
0: अ बिट डिफिकल्ट
1: yeah.
0: हाँ आपको बता देते हैं कि इस हॉस्पिटल का आधारशिला श्री ज्ञानी जेल सिंह जो उस समय के भारत के राष्ट्रपति थे उस समय के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इस हॉस्पिटल की आधारशिला द फाउंडेशन रखा था अक्टूबर 1984 में और फिर जब प्रोजेक्ट वो फर्स्ट फेज की समाप्ति हुई तो नवंबर 14 1990 उस तिथि को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा था क्योंकि पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था तो उसी तिथि को उसी तारीख के पर 14 नवंबर 1990 को यानी कि 101वां वर्षगांठ के मौके पर नेहरू जी के 101वां वर्षगांठ के मौके पर नेहरू हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपने हमारे इस प्रोग्राम में भाग लिया ओके नेक्स्ट टाइम अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप अवश्य हॉस्पिटल के सामने जो प्रतिमा है नेहरू जी का जो जो स्टैचू है

0: आप जरूर उस पर थोड़ी सी नजर डालिएगा, ओके?
1: जरूर, जरूर.
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: जय मॉरिशस. तो सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल. नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनका निधन 27 दिसंबर 1964 को. और नेहरू हॉस्पिटल का उद्घाटन 14 नवंबर 1990 को हुआ था. वहां पर काम करने वाले समूह को हम करते हैं सलाम.

एक और बहुत ही आसान प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के किस सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में बापू जी की लाइफ साइज प्रतिमा पाई जाती है?

दूसरा प्रश्न, मॉरिशस के किस सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में बापूजी की लाइफ साइज प्रतिमा खड़ी है और जिस पर हर साल 2 अक्टूबर को फूल चढ़ाए जाते हैं? आपका जवाब ऑन कार्ड संदेह का तो है सुसंजीस।

0: बिल्कुल उसी प्रकार जैसे रोजबेल के पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के सामने नेहरू जी की प्रतिमा पाई जाती है, उसी प्रकार इस सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में भी बापू जी की एक लाइफ साइज प्रतिमा खड़ी है और जिस पर हर साल 2 अक्टूबर को फूल चढ़ाए जाते हैं। हम किस स्कूल की बात करें, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो,
1: जय सियाराम भाई
0: जी। जय सियाराम माला जी।
1: जी हाँ,
0: कैसी है माला जी? बासन रोड का माला जी।
1: जी हाँ,
0: आप तो हर
1: ठीक है भाई जी, आप कैसे हो?
0: प्रभु जी की कृपा है तो सब ठीक चल रहा है। और आप जी? आपके घर पर सब ठीक है?
1: सब ठीक। ओके, सब ठीक भाई जी।
0: अच्छा, सो आप बताएं हम किस सेकेंडरी स्कूल माध्यमिक स्कूल की बात कर रहे हैं?
1: महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट।
0: महात्मा गांधी
1: जो मुकाम में पाए जाते हैं।
0: आप वहाँ पर कब पिछली बार के लिए गई थी?
1: जून महीने में।
0: अच्छा, सो आपको पता है कि किस साल में उसका

0: फाउंडेशन हुआ था
1: जी हाँ,
0: किस साल में?
1: सर जून 1970 में।
0: हाँ, यानी कि आप तैयारी करके आई हैं। गुड
1: जी।
0: तो 3 जून 1970 को फाउंडेशन स्टोन आधारशिला किसने रखा था?
1: श्रीमती इंदिरा गांधी
0: जी ने, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। और स्कूल का उद्घाटन, पाठशाला का उद्घाटन किस साल में?
1: हाँ, 1976।
0: और तारीख?
1: 9 अक्टूबर।
0: वाओ, 9 अक्टूबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी फिर से आई थी मॉरिशस में, और उस समय के प्रधानमंत्री सुशासागर राम गुलाम दोनों मिलकर उस कॉलेज का उद्घाटन किया था। सो आपको बधाई अमारा जी, आप हर एक सवाल का जवाब आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको।
0: नमस्कार। जय सियाराम।
1: जय मॉरिशस। जय हिंद।
0: बहुत अच्छा। जय मॉरिशस। जय हिंद।
1: धन्यवाद भाई जी।

बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। मॉरिशस के किस माध्यमिक स्कूल का नामकरण, मॉरिशस के किस माध्यमिक स्कूल का नामकरण भारत के एक महान लेखक, नाटककार, संगीतकार, कवि, रचनाकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, चित्रकार के नाम पर किया गया है। हमें उस माध्यमिक स्कूल का नाम बताएं। बाय कोडिंग ऑन कैट्स ऑन द कैट्स ऑन

0: गीत गाथा देश की आज के ये प्रोग्राम आज की विशेष तिथि को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये विषय रखा है कि मॉरिशस के किस माध्यमिक स्कूल का नामकरण भारत के एक महान लेखक कवि नाटककार संगीतकार रचनाकार दार्शनिक समाज सुधारक चित्रकार के नाम पर किया गया है। एक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो हम आपको देते हैं, वे भारत के पहले नागरिक बने जिनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका जवाब उन 402 का तो है 70 पर।
1: मेरा रंग दे बसंती चोली।

0: चले हम अपने श्रोता से मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: सूर्यदेव
0: भुजावन जी लालमाची से। बताएं सूर्यदेव जी, आपके हिसाब से हम किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं?
1: श्री रविन्द्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट जो डेपिने में है।
0: इलो डेपिने में। हाँ, ओटीआई। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो एक लेखक, एक नाटककार, संगीतकार, रचनाकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, चित्रकार, और जिन्हें 1914 में पहली बार के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और जो उन्होंने बाद में लौटा भी दिया था। सो सूर्यदेव जी, आपको पता है कि किस साल में इस दिसंबर 2002 में इसका उद्घाटन हुआ था, और इसका फाउंडेशन स्टोन साल 2000 के मई महीने में रखा गया था। सो 2002 से आज तक बहुत से बच्चे वहाँ पर पढ़े हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत से लोग वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सो सूर्यदेव जी,

चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। भारत के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर मॉरिशस में ज्ञान विज्ञान के शोध कार्य के लिए एक सेंटर का निर्माण किया गया है? भारत के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर मॉरिशस में ज्ञान विज्ञान के शोध कार्य के लिए एक सेंटर का निर्माण किया गया है? आपका जवाब उनका सौंपते हुए कहते हैं सुन जी

0: इश्क तो हमें भी है इस सरजमीं से। So, भारत के किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर मिशिस में ज्ञान विज्ञान के शोध कार्य के लिए एक सेंटर का निर्माण किया गया है? चलिए हम इनसे मिलते हैं। हेलो,
1: जय हिंद, जय
0: मॉरिशस। जय हिंद, जय मॉरिशस। आशा जानू जी, कैसी हैं?
1: सबसे पहले मैं जवाब देने से पहले हमारे देश में बसने वाले जितने भी भारतीय भाई बहन हैं और सभी मॉरिशस वासियों को, भारत के देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मंगल कामनाएं।
0: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा जी, आप बोलिए, आपके पास जवाब क्या है?
1: राजीव गांधी साइंस सेंटर,
0: श्री राजीव गांधी।

0: साइंस सेंटर और इनॉग्रेशन कब हुआ था? ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पर तैयारी करनी थी। नवंबर 2004 सो तब से ये सेंटर कार्यरत हैं और वहाँ पर हमारे काफ़ी दोस्त वहाँ पर काम करते हैं जिनको हम सलाम करते हैं, और जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो बहुत बहुत अमेज हो जाते हैं, बहुत ही चकित हो जाते हैं किस तरह के उपकरण वहाँ पर बिठाए गए हैं और किस तरह का ज्ञान उन्हें दिया जाता है। सो आशा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भागने के लिए। फिर से मिलेंगे।
1: जय हिंद, जय मॉरिशस।

बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एबेन में आज एक आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस

0: परसों हमने आपसे सवाल किया कि भारत के एक प्रधान एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पर एबन में आज एक आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस बिल्डिंग खड़ा है। हम किस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, चलिए हम मिलते हैं इनसे। हेलो,
1: नमस्ते भाई। नमस्ते जी।
0: नमस्ते नमस्ते। आपका
1: अटल बिहारी वाजपेयी,
0: श्री अटल बिहारी वाजपेयी टावर एबन में जो पाया जाता है, जहाँ पर 30 से भी अधिक कंपनीज काम करते हैं और जहाँ पर 2500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं रोज। 2500, कैन यू इमेजिन, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टावर में आज मुझे पता नहीं अगर मुशीस में कोई और टावर है जहाँ पर इससे अधिक लोग काम करते होंगे, लेकिन हर रोज 2500 लोग उस टावर में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी टावर जो एबन में पाया जाता है, टावर नंबर 1 में काम करते हैं, और उस टावर को रिकॉग्निशन मिली साल 2005 में। निर्माण 2000 में शुरू हुआ लेकिन 2005 में उस बिल्डिंग को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेलिजेंट बिल्डिंग बाय द इंटेलिजेंट कम्युनिटी फोरम। सूर्यदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भाग लिया और आपके जरिए अन्य लोगों को भी इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर से मिलेंगे, नमस्कार,
1: धन्यवाद। जय हिंद,
0: जय हिंद, जय मुर्शिद, वंदे मातरम।

अब की बार हम एक ऐसे वेन्यू ढूंढ रहे हैं, एक मल्टी फंक्शनल वेन्यू जहां पर मल्टी फंक्शनल इवेंट्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, और जहां पर 2500 से भी अधिक लोग

0: सो अब की बार हम एक वेन्यू ढूंढ रहे हैं जिसके प्लेनरी हॉल में 2500 लोग बैठ सकते हैं, 8000 लोग खड़े होकर इवेंट को असिस्ट कर सकते हैं, एक मल्टीफंक्शनल इवेंट और एग्जीबिशन वेन्यू। एडिशनल इंफॉर्मेशन वो पाई में पाया जाता है और जिसके साथ एक एक बहुत ही विश्वविख्यात स्वामी जी का नाम जुड़ा हुआ है। चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: आपका नाम?
1: मैं बाकवा सुमति बोल रही हूँ।
0: श्रीमती जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। श्रीमती जी बताएं आप, हम किस वेन्यू की बात करें?
1: स्वामी विवेकानंद,
0: स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, SVICC। आपने सही फरमाया, आप वहाँ पर गई हुई हैं?
1: जी हाँ, दो बार गए थे जब मैं काम करती थी वहाँ, फिर फैदानी करते थे वहाँ।
0: ओके,
1: वहाँ गए थे।
0: अभी हाल में हम गए थे जब अभिजीत जी का कॉन्सर्ट वहाँ पर हुआ था,
1: वो आए थे मॉरिशस।
0: हाँ, तब भी हम गए थे, अनेक बार हम गए हैं और वहाँ पर जाना बहुत ही इंस्पायरिंग होता है हमेशा की तरह। सुश्रीमती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भाग लिया।
1: आपको भी धन्यवाद
0: और ऐसे ही भाग लेते रहें। जय मॉरिशस, जय हिंद,
1: हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो भारत मॉरिशस में रहते हैं।
0: अवश्य अवश्य, जय मॉरिशस, जय हिंद
1: आपको भी।

जोनस और कुछ मिनटों में शाम के पहुंच जाएंगे, पहुंच बज जाएंगे और समय समाप्त हो जाएगा गीत का था देश की इस प्रोग्राम का। हमारे बाद पूनम जी आ रही हैं आपका साथ निभाने पुराने नगमों के साथ, जबकि हम आपसे मुखातिब होंगे रेडियो मोशस की लहरों पर। प्रोग्राम होगा खेल खिलाड़ी। अगले गुरुवार तक हमें आज्ञा दीजिए, फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय मोरिशस, जय हिंद, जय सियाराम।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल ये पत्तियों की है सरसराहट

इस बात पे हैरान होती, उस बात पे कितनी हंसती।

सुनने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिन में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:08 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही फेवरेट प्रोग्राम से के साथ, यानी कि पुराने नगमों के साथ। और आज बात उस एक्ट्रेस की जिनकी खूबसूरती, आंखों का अंदाज, एक्टिंग और स्टाइल हर दौर में अपनी अलग पहचान रखती हुई। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भानु रेखा गणेशन की, यानी कि रेखा जी की। तो जो आज उनके सदाबहार गानों के साथ जानेंगे उनकी जिंदगी और उनका फिल्मी सफ़र, कुछ दिलचस्प बातें। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हूँ आपके साथ पूनम।
2: RM3 Radio.

0: 5:15 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ, यानी कि पुराने नगमों के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में, यानी कि 10th अक्टूबर 1954 को साउथ इंडिया, इंडिया के पास जो है आज उनका, वहाँ पे चेन्नई में उनका बर्थ हुआ। उनके पिता जिमिनी गणेशन साउथ सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर थे, और माँ थी पुष्पावल्ली, भी एक्ट्रेस थी। यानी कि सिनेमा उनके परिवार में पहले से था, लेकिन रेखा जी ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। रेखा जी को एहसास तो नहीं था बहुत सालों तक कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी या वो एक्ट्रेस प्रोफेशन को ही चुनेंगी, ना ही उनके परिवार को एहसास था। बट धीरे धीरे वो कहते हैं ना, कला सामने आती है, और जब कला उनके सामने आई परिवार की, तो उन्होंने किया कहाँ का रुख, यस एक्टिंग का रुख, एक्ट्रेस बनने का रुख। और एक वो एक्ट्रेस, वो अदाकारा जिसने सबका दिल जीत लिया, बॉलीवुड हो गया उनके हाथ में।
1: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: दोस्तों 5:22 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ और इस समय हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। रेखा जी ने छोटी सी उम्र में कैमरा फेस करना सीख लिया था। 1966 की तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआती पहचान जो हुई वो 1970 की जो मूवी आई थी सावन भादो से बनी और फिर जो सफ़र शुरू हुआ वो जाके 180 से भी ज़्यादा फिल्मों तक पहुँचा।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:28 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ और मैं हूं आपके साथ पूरम RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। रेखा जी की शुरुआत तो आसान नहीं थी क्योंकि बॉलीवुड में हिंदी चाहिए होती है परफेक्ट और उनकी एक्टिंग भी इतनी खास नहीं थी शुरुआती दिनों में। उनकी हिंदी बोलने का अंदाज भी थोड़ा सही नहीं था, उनका रूप भी इतना सुंदर नहीं था, बट उनके फीचर्स बहुत शार्प थे। जब बात करें तो फिटनेस में भी उन्होंने अपने ऊपर काम किया और धीरे धीरे खुद को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। घर घर मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत उमराव जान, सिलसिला उत्सव और खून भरी मांग जैसी कई ऐसी मूवीज़ जो कि नॉर्मली हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, जो बहुत ही मुश्किल से बॉलीवुड बनाता है, ऐसी मूवी जिसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब उन्होंने खून भरी मांग मूवी बनाई तो कहते हैं कि उन्होंने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, कहते हैं कि रेखा को देख के सबका जो दिल था मुंह को आ गया और सबने कहा ऐसी ब्यूटी हमने कभी नहीं देखी। और उसके बाद रेखा को एक के बाद एक अनेक मूवीज मिली और आज तक वो इंडस्ट्री में राज करती हैं।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:35 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं रेखा जी की, यानी कि बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसके बारे में तो हर कोई जानता है कि शी इज़ द फैबुलस फंटास्टिक लेडी। जो एक्ट्रेस में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले लिया जाता है रेखा जी का। उन्होंने सभी बड़े दौर के सितारों के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, जितेंद्र, राजेश खन्ना, शशि कपूर, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन जैसे ये नाम इस सफ़र में शामिल हैं। और एक्ट्रेस में अगर बात करें तो जया बच्चन, राखी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े नामों के साथ भी उन्होंने स्क्रीन शेयर की है। इतने अलग अलग जनरेशन के साथ काम करना अपने आप में कमाल की जर्नी है। और उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में हुई बात, कहते हैं कि एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिनका नाम था विनोद मेहरा। उन्होंने सबसे पहले शादी की विनोद मेहरा से, थोड़े टाइम तक ही वो चल पाई और उसके बाद वो कहीं जाके बुझ गई वो दिया। और उसके बाद रेखा जी ने शादी की दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन 1990 में मुकेश अग्रवाल जी से, लेकिन वह वैवाहिक रूप से बहुत कम ही सम चला। उसी साल मुकेश अग्रवाल जी की डेथ हो गई और रेखा उसके बाद उस दोबारा उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करनी पर दोबारा से एंट्री लेनी है मुझे बॉलीवुड में, क्योंकि एक टाइम पर आके उन्होंने बॉलीवुड को बिल्कुल छोड़ दिया था अपने सिर्फ परिवार और अपने हस्बैंड के लिए। तो इंजॉय कीजिए उनके गाने। आज बात सिर्फ चल रही है रेखा की।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। रेखा जी ने अपने लंबे करियर में ना जाने कितनी 100 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई और उन्होंने फैमिली, रोमांस, कॉमेडी से लेकर इमोशनल हर तरह के एक किरदार निभाए। रेखा जी हमेशा कहती हैं कि मैंने कम से कम 100 मूवीज़ बना चुकी थी, पर फिर भी मैंने अपने आप को स्क्रीन पर कभी अपनी खुद की मूवीज़ नहीं देखी थी, क्योंकि मुझे अपनी मूवीज़ देखनी अच्छी ही नहीं लगती थी। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड दीवाना हो रखा था बॉलीवुड में कि ये कौन सी ऐसी एक्ट्रेस आ गई जिसने सबको हिला के रख दिया। कम उम्र में वो बहुत स्क्रीन पर बहुत मैच्योर रोल्स को बहुत खूबसूरती से निभा लेती थी, और कमाल देखी कि आज भी उनका स्टाइल, फिटनेस और चार्म ऐसा है कि बस उम्र तो उनके लिए सिर्फ नंबर जैसी लगती है। शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन या नई जनरेशन का कोई भी स्टार, हर कोई उनके साथ स्टेज पर हंसी मजाक मस्ती वाला अंदाज दिखाता है। और साथ में रेखा जी को कहते हैं कि वो एवरग्रीन क्लासिक वुमेन हो गई, क्योंकि सब जने चाहते हैं कि उनके साथ, उनके रहते रहते उनके साथ एक मूवी तो ज़रूर बनाए। पर रेखा जी सबसे ज़्यादा आई तो किसके साथ? उस इंसान के साथ जिनसे उन्होंने, कहते हैं ना, बस दिल से प्यार कर लिया और उन्हीं की होके रह गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। उनका भी एक, उनके साथ एक प्यारा सा गाना चला ही देते हैं। इंजॉय कीजिए उनके गाने।
2: RM3 Radio.

5:50 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ और मैं हूँ इस समय आपके साथ पूनम। रेखा जी को तो इतने अवार्ड्स मिले हैं, कहते हैं उनका पूरा जो घर है वो अवार्ड से भरा हुआ है, पर कुछ अवार्ड्स जो उनके बहुत दिल के करीब हैं जो कि होने ही चाहिए एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए, उनको मिला उमराव जान में। रेखा जी की अदाकारी ऐसी रही कि उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस मिला। खून भरी मांग ने फिर दिखाया कि उन्होंने ऐसा दम दिखाया कि उन्होंने पूरी फिल्म अपने कांधों पर संभाल रखी थी, इससे भी उनको अवार्ड मिला। और 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। कहते हैं ब्यूटी, ग्रेस और पावरफुल एक्टिंग रेखा जी ने साबित किया कि एक कलाकार खुद को बार बार नया रूप दे सकता है। जितनी बार रेखा जी स्क्रीन पर आती हैं अलग अंदाज अलग स्टाइल लेकर आती हैं, और कहते हैं उनको कॉपी करना आज की डेट में किसी के सामने नहीं हो सकता, किसी के पास वो ताकत नहीं है कि कोई रेखा जी को कॉपी कर सके।

बदले फिल्में बदली लेकिन रेखा जी का जादू आज भी बरकरार है। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे पुराने नगमों में एक खूबसूरत नाम के साथ। नमस्ते आदाब, इसके बाद आप जुड़ेंगे विस्तार से समाचारों के साथ और उसके बाद नई सोच के साथ।

बज चुके हैं। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज 15 अगस्त को ईसाई समुदाय द्वारा असम्पशन का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं ने मदर मेरी को श्रद्धांजलि दी। पोर्टवी के बिशप मोंसिनियर मिकाएल जोहन ने बिजिटोम्बो में प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की, जहां प्रवचन का मुख्य विषय एक माँ और माता पिता का संघर्ष रहा। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में एक नए प्रार्थना स्थल का उद्घाटन किया गया। आज फिनिक्स स्थित IGCIC में भारत की 80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया, जिसमें प्रवासी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त ने दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की हालिया यात्राओं और ऐतिहासिक समझौतों का विशेष उल्लेख किया। मॉरिशस सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारतीय सहयोग से एक नया रेडर सिस्टम और ऑफशोर पेट्रोल वेसल हासिल करने की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बिजिटोम्बो में एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। विदेश में भारत की स्वतंत्रता की 80 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक गायन के साथ शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया।

0: अब समाचार विस्तार से। आज 15 अगस्त के दिन ईसाई धर्म के लोग असम्प्शन का पर्व मना रहे हैं। देश भर में श्रद्धालु प्रार्थना करने और एक संरक्षक के रूप में मानी जाने वाली ईसा मसीह की माता मदर मेरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विभिन्न गिरजाघरों में एकत्र हुए। पोटरी के बिशप के प्रवचन का मुख्य विषय एक माँ के रूप में वर्जिन मेरी का संघर्ष और दैनिक जीवन में हर माता पिता का संघर्ष था। मोंसेन्योर मिकाएल जोहन ने कल असम्प्शन के अवसर पर बीजित भूमि एक प्रार्थना सभा की अध्यक्षता की। उस सिलसिले में एक नए प्रार्थना स्थल का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम सहित कई प्रमुख हस्तियों ने इस समारोह में भाग लिया।
1: मदर मेरी के स्वर्गारोहण पर्व से ठीक एक दिन पहले विजिटोम्बो के डॉकर्स विलेज में इस ग्रोटो में पहली बार मास का आयोजन किया गया। इस खास अवसर के जरिए इलाके के लोगों ने अपने तरीके से वर्जिन मेरी के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था प्रकट की।
2: Seigneur, nous te confions les habitants de Docker's Village, nos familles, nos jeunes et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette grotte dédiée à la Vierge Marie. Que ce lieu devienne un espace de prière, de paix, de rencontre et d'espérance, où chacun puisse se tourner vers Marie et se rapprocher de ton Fils Jésus. Seigneur, écoute notre prière.
1: इस धार्मिक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रही। इनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल थी। अपने संदेश में पोर्टल्यू के बिशप मोंसेयर जॉन माइकल जोन ने एक मां के रूप में वर्जिन मेरी के संघर्ष, साहस और समर्पण का उल्लेख किया।
3: Peut-être pour ma maman, ma papa qui est ici, quand nous mettons devant la Vierge Marie, nous peut dire qu'il nous peut lutter des fois pour nos enfants, nous lutter pour ma famille, pour ma mari lui-même. C'est pas une madame qui gagne tout leur facilité, pas parce qu'il est bon Dieu ne choisit lui, mais c'est une madame qui nous connaît, qui était douleur aussi à une maman, pour donner la vie à nos enfants, mais pour porter aussi la souffrance de ma dîmoun. Mais Marie représente l'Église qui morce avec ma dîmoun, et donne l'espérance dans toute la vie. À cause ça même, quand nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, nous rappelle qui grâce, qui Jésus nous donne nous,

0: कॉलिन डोनू एंड मामा कैपेल मारी।
1: श्रद्धा और प्रार्थना के माहौल में डॉकर्स विलेज और आसपास के इलाकों से आए लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इस खास अवसर पर निभाई गई मॉरिशस की संस्कृति में गहराई से जुड़ी एक खूबसूरत परंपरा गातो माही बांटने की।
2: राज सुबह फिनिक्स स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस समारोह में प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया, जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भारत और मॉरिशस के बीच के विशेष संबंधों का प्रतीक रहा। मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त ने विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की हालिया यात्राओं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम की भारत यात्राओं का उल्लेख किया, जो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई थी। आशा गोविंद डामन।
1: भारत की आजादी, देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण का स्वर वंदे मातरम आज सुबह फिनिक्स के इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में गूंज उठा। देशभक्ति से सराबोर इस माहौल में नेशनल कोस्ट गार्ड और हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन के सैन्य कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और मॉरिशस में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सुबह 9 बजे गर्व और सम्मान के साथ भारतीय तिरंगा फहराया गया। मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर श्री अनुराग श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराया। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अवसर उस ऐतिहासिक आजादी को याद करने का है, जिसने देश को बरतानी शासन से मुक्ति दिलाई और उन स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन करने का भी, जिन्होंने आजाद भारत का सपना साकार किया। समारोह के आधिकारिक हिस्से में भारतीय उच्चायुक्त ने भारत और मॉरिशस के गहरे और पुराने संबंधों को रेखांकित किया। इतिहास और संस्कृति से जुड़े ये संबंध आज आर्थिक सहयोग और आपसी साझेदारी के साथ और मजबूत हुए हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच विशेष संबंधों का भी उल्लेख किया। इस संदर्भ में मार्च 2025 में प्रधानमंत्री श्री मोदी की मॉरिशस यात्रा, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की वाराणसी यात्रा और फरवरी 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के लिए उनकी भारत यात्रा को याद किया गया।
3: This is not only a celebration of our Independence Day, it is a celebration also of our special friendship with Mauritius, a friendship which has grown stronger, a friendship which is very robust, it is time tested, and a friendship where we are committed to take to even greater heights in the times to come.
1: श्री अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशिक्षण, व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा समेत कई सेक्टरों में भारत और मॉरिशस मिलकर आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद बारी थी भारत की समृद्ध संस्कृति के रंगों की। भारतीय और मॉरिशन कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह को एक अलग ही रंग दिया। संगीत और नृत्य के जरिए भारत की विविध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत झलक देखने को मिली।
2: राज भारत के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुरखों की जमीन से जुड़ी भारतीय पीढ़ियों की बात करती है। मॉरिशस की अधिकतर आबादी के लोग भारतीय वंशज हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत बाहें खोलकर इन्हें भारतीय जैसा दर्जा दे रहा है। OCI कार्ड के माध्यम से एक तरह से भारतीय नागरिक कहलाया जा सकता है। ये बात उल्लेखनीय है कि अब तक करीब 20,000 मॉरिशस वासी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन गए हैं।
4: Ça, comment dire, un rêve ou non,

0: शिवालिंगम अरासन के पूर्वज दक्षिण भारत से आए थे, इसलिए हमेशा से भारत से उनका गहरा लगाव रहा है। तकरीबन 12 दफा वो भारत जा चुके हैं। सन 2016 से उन्हें अपना OCI कार्ड मिला और तब से उन्हें अलग सुविधाएं मिल रही हैं।
1: मुझे गेंच प्रॉब्लम मोलिजे सान एस्पेरिम et puis moi je suis très loin et mon ami Madurai।
0: एक बार मैं मदुरई में था और अचानक आंखों में कुछ समस्या पैदा हो गई। मुझे चेन्नई जाना पड़ा जहां डॉक्टर ने मुआयना किया। डॉक्टर ने मुझसे आधार कार्ड यानी भारतीय ID कार्ड मांगा। तब मैंने अपना OCI कार्ड दिखाया। फौरन मेरा इलाज शुरू हुआ और सर्जरी की गई। अगर मेरे पास ये OCI कार्ड नहीं होता तो मैं शायद अपनी आँखें गंवा चुका होता, क्योंकि मुझे मुर्शद से मेडिकल वीजा और दूसरी दस्तावेजें मंगवानी पड़ती।
1: मेडिकल वीजा
0: हर महीना OCI कार्ड की प्राप्ति के लिए भारतीय उच्चायोग को करीब 300 अर्जियां मिलती हैं। ज्योति एक भारतीय नारी हैं और उनके पास भारत का आधार कार्ड नहीं है। आज उन्हें अपना OCI कार्ड मिलकर बड़ी खुशी मिल रही है।
2: मेरा पासपोर्ट तो मॉरिशन है। जिस घड़ी मैं मॉरिशस आई थी उस घड़ी आधार कार्ड नहीं था, तो मैं सिर्फ पासपोर्ट और अपना जो बाकी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आई थी।
3: कितने सालों से?
2: 28 ईयर्स हो गया मुझे यहाँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं भारत जा कर के अभी और भी समय बिता सकती हूँ वहाँ। पहले तो था रूल्स के हिसाब से कि वीज़ा है 2 या 3 महीने का, पर अब मैं ज़्यादा समय बिता सकती हूँ अपनी फैमिली के साथ।
0: किसी न किसी कारण से इस कार्ड के अनेक फायदे जानकर मुर्शनों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है।
4: मेरा सपना है एक दिन मैं वहाँ जाके 2-3 साल रहूँ, मनाली शिमला घूमूँ। कहीं जाएंगे घूमने के लिए प्राइस, टिकट प्राइस जो है वो कम होता है लोकल इनहैबिटेंट्स के जैसा।
0: हमारे पूर्वज भारत से आए थे, इसलिए मैं ये कार्ड प्राप्त करना चाहती थी। मेरे सास ससुर बूढ़े हैं तो मैं उन्हें किसी भी वक्त इलाज के लिए भारत ले जा सकती हूँ। वीजा की कोई जरूरत नहीं होगी। गए सालों के मुकाबले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड्स की मांगे बढ़ गई हैं। अब तक 18,000 से ज्यादा मुर्शन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं।
5: यूजुअली OCI कार्ड का हम लोग रिजेक्ट नहीं करते। कोई भी इंडियन ओरिजिन के हैं अगर उनके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हम लोग एक भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करते हैं। OCI का कोई कोटा नहीं है, OCI अनलिमिटेड है। जब तक जितने भी यहाँ पे मॉरिशस में जितने भी लोग हैं, जितने भी सब अप्लाई करेंगे सबको देंगे। एंड फ्यूचर जनरेशन भी, उनके बाद भी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी या छोटे बच्चे हैं सबके लिए OCI कार्ड है। OCI कार्ड का कोई लिमिट नहीं है। हम लोग प्रीवियस ईयर से डाटा कंपेयर करें तो लास्ट ईयर में हमने 3,000 OCI इशू किया, इस साल हम लोग 4,000 करीब इशू करेंगे।
0: OCI कार्ड पाने की प्रक्रिया सिविल स्टेटस दफ्तर से की जानी चाहिए और इसका मुख्य मापदंड ये है कि आप साबित करें कि आपके पूर्वज भारत से आए थे।
6: पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से पेट्रोल का दाम 64.25 रुपये से बढ़कर 70.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है, यानी 6.40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन डीजल का दाम 71.25 रुपये प्रति लीटर पर पहले जैसा ही रहेगा। ये फैसला कल रात हुई पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। भारतीय अधिकारियों की मदद से मॉरिशस नौकाओं की सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए एक रेडर प्रणाली स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ और अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है। सरकार एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल का अधिग्रहण भी करेगी। ये घोषणाएं कल शाम बिजटोंबो में की गई, जहां प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम अन्य विकास कार्यों के साथ साथ एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कर रहे थे।
7: 40,000 आबादी वाला तटीय गांव बेजिटोंबो नए ढांचे से लैस हैं। पुराने पुलिस स्टेशन की जगह पर एक नया कार्यस्थल जहां कोई 40 पुलिसकर्मी कार्यरत होंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक समुद्री रडर प्रणाली की स्थापना की भी घोषणा की।
8: Qui nous connaît chaque bateau qui était. Puis commence les procédures pour installer ici. Et nous vous servons un drone. Et là, nous avons une fake commande, un nouveau, appelle ça OPV, Offshore Patrol Vessel. Dernier OPV. Moi que tu veux mettre canon l'eau là, et puis drailler. Bien mettez. Nous bien sévère et nous bien prendre action qui bien prend. Parce qu'il a lit contre une mort sans la drogue. Les besoins sans pitié. Ils ont besoin aussi d'équipement. Ils ont besoin de formation. Ils ont besoin d'un career path. Vous n'êtes pas capable d'être policier, d'être constable. Et vous êtes constable jusqu'à 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez pas gagner une promotion. Et besoin aussi gagner une promotion. Parce que moi, tout le temps, je dis ça comme cette police. Promotion, besoin au mérite. Promotion automatique, vous n'êtes pas encore là-dedans du tout.
9: Project.
7: कुछ मीटर की दूरी में फोर्ट अल्बर्ट में एक बीच सक का भी उद्घाटन किया गया। पोपलुम जिला परिषद के अध्यक्ष वेदानंद टोटू ने प्रधानमंत्री से इलाके में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने की मांग की।
10: Monsieur le Premier ministre, je vous invite pour faire bonne inauguration là, parce qu'il nous vient vers une élection en décembre. Avant ça, nous l'avons fini. Ouvert tout ça, ban bâtiment qui le 1046 nous fait, ban sport complexe qui nous fait.
11: Le chairperson du district Pamplemousse, camarade, de toutes les affaires bien pourtant. Fait ban inauguration là vite. Il y a la raison, parce qu'il est une victime de ça. Plusieurs fois, il nous fait poser, ben là, qui ne s'aime pas bien sans le gouvernement comme, tous les cinq ans. Maintenant, il nous fait là. Il nous fait faire continental surf pour Audrey. 2009, ça. Alors, MSM Bénéco Petit qui n'est pas pour lui. Ouais, c'est faux là-dedans. Un cliché MSM, ça oui.
7: Sarkari Neta ne Dockers Village qui Prathamik School ka bhi daura kiya, jiska navinikaran hua hai aur jo bachchon ka swagat karne ke liye taiyar hain. प्रधानमंत्री ने वहां के निवासियों से भी भेंट करते हुए उनके साथ बातचीत की।
6: प्रधानमंत्री ने साथ ही मध्यपूर्व में जारी तनाव और उसके देश पर पड़ने वाले प्रभावों पर टिप्पणी की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस वासियों से एकजुटता और सहयोग बनाए रखने की अपील की। उनको सुनते हैं।
12: Vous connaissez, nous faisons face à beaucoup de défis là, beaucoup de défis. Vous trouvez ça la guerre au Moyen-Orient là, qui peut faire. Oui, l'essence peut continuer à monter. De l'or, tout cela perd, tout cela pas, pas en bas de nous contrôle ça. Mais seulement nous faire face à un défi ensemble, dans l'unité. Bon, oui, c'est là sa réputation là. Beaucoup de défis de nous faire face.
6: वैसे प्रधानमंत्री इस रविवार को दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। वे सोमवार को जोहान्सबर्ग में होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में खासतौर पर इलाके के देशों के बीच मिलजुल कर काम करने, बुनियादी सुविधाओं के विकास, खेती में बदलाव और जरूरी खनिजों का बेहतर इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर बात होगी। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
7: सोमवार सुबह होने वाले आधिकारिक उद्घाटन से पहले 16 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी करने वाले स्थल पर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण तथा विकास को और भी मजबूत करना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम रविवार को डर्बन पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर उन्हें अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जहां साझा हितों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार भी शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य देश से जुड़े मुद्दों से आगे बढ़कर इस शिखर सम्मेलन को क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में साझा चुनौतियों और क्षेत्र की

0: प्रगति को तेज करने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
1: विदेश में भारत अपनी स्वतंत्रता के 80 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न मना रहा है। 1947 में मिली आज़ादी के बाद से हर साल देश का मुख्य समारोह लाल किले पर होता है। आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली। श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक गायन के साथ शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। और इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। बचाव और राहत अभियान शुरू होने के साथ ही आधिकारिक मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आपदा में कई लोग अलग अलग रूपों से घायल हुए हैं। देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा हुई खासकर ऊंचे इलाकों पर। और कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंटर बादल पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह के बड़ी समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दो समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सूर्योदय 6:31 पर होगा।

तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए से आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। रायरोड विच मिलिट्री ओलेमी रायरोड विच मिलिट्री ओलेमी 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री शांति देव रामेसर, श्री शांति देव रामेसर जो जय सिंह नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर रायरोड विच मिलिट्री ओली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस्ट्री ओली की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। भुजावन रोड अपर डागोसिया में, बासठ साल की 62 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उमा किस्तू पैदाश नाम निर्मल और जो उमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर भुजावन रोड अपदागोजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाक मुस्तान साहब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। क्लावेट रोड सेबास्तोपोल में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रज्जो बंधु पैदाश नाम हरी और जो रज्जो नाम से सटा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री राजीव बंधु के घर क्लावेट रोड सेबास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताल ब्लॉन्च की श्मशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30। न्यू रोड होशनुआ में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री मथुरा प्रसाद गुदौ जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी सोमवार 17 अगस्त को दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनकी पत्नी श्रीमती वेदवंती गुदौ के घर न्यू रोड होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचे की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे 17 अगस्त एट 11:30 AM। मैडम लुलू रोज़बेल में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री मुनय ईयापा जो सीमाद्री नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके बेटे श्री रवि ईयापा के घर मैडम लुलू रोज़बेल से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11:30 AM। डिस्पेंसरी रोड विच मिलिट्री ओली में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री रविंद्रनाथ जोयमंगल जो अखिलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके घर डिस्पेंसरी रोड विच

0: मिलिट्री ओली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एसएसएस लेन ट्री ओले कृष्णशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM एवेन्यू इकबाल वाले पीटो में, एवेन्यू इकबाल वाले पीटो में 79 साल की मिसिस हाफिज़ बीबी महादू, मिसिस हाफिज़ बीबी महादू पैदाइशी नाम नियामत खान, पैदाइशी नाम नियामत खान और जो दादी हाफिज़ नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात साढ़े आठ बजे उनके बेटे जनाब हैदर अली महादू के मकान एवेन्यू इकबाल वाली पीटो से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्ते के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। क्लेमेंट रोड सेबास्टोपोल में, क्लेमेंट रोड सेबास्टोपोल में 92 साल की 92 years old की श्रीमती रज्जो बंधु, वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ ली है। रॉय रोड कथकुकुमी 73 साल के 73 years old के श्री सत्यदेव मीटू, श्री सत्यदेव मीटू जो चंद्रदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो एक टैक्सी ड्राइवर थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिमा मीटू के घर वायर रोड कथकुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमरो 8:00 PM। एमिलियन स्ट्रीट पुथोदो विलाज में 74 साल के 74 years old के श्री रामचंद्र बुलाकी, श्री रामचंद्र बुलाकी जो मिलात नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती सालदा बुलाकी के घर एमिलियन स्ट्रीट पुथोदो विलाज से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमरो एट 10:30 AM। मोसलमान ब्लू प्रिंट हाईलैंड्स में 44 साल के 44 years old के श्री मेगावेन मोहोगिया जो मायन नाम से सारा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे उनके घर मोसलमान ब्लू प्रिंट हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट नून। कोरियोलिस रोड 16 मील फॉरेस्ट साइड में 58 साल के 58 years old के श्री धनेश्वर सिंह बालक जो कमलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर कोरियोलिस रोड 16 मील फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 16 मील सिमिट्री रोड की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10 AM। पैराडाइज लेन रोशनवा में 59 साल के 59 years old के श्री चितानंद सांतक जो फिया बुशो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनके अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर पैराडाइज लेन रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनवा की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 12:30 PM। नंबर 72 एवेन्यू सोदना कथ्रोबोन में 51 साल की 51 years old की श्रीमती कविता रामचंद पैदाइश नाम राजवानी और जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके घर नंबर 72 एवेन्यू सोदना कथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुर्फिया गिनों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टुमरो एट 1:30 PM। कश्मीर रोड रिस्पिरेंस रेबुशे में 49 साल के 49 years old के श्री ऋषि देव बोयरोप जो ऋषि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती रूपा बोयरोप के घर कश्मीर रोड रिस्पिरेंस रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबिन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Neiso.

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हैं आपके ही शो के साथ, यानी कि नई सोच के साथ, यानी मैं इस समय आपके साथ हूँ आर एम थ्री पर, और आर एम थ्री हमेशा आपके साथ रहता है 24 आवर्स, कुछ ना कुछ नया लेकर आता है जिससे आपका दिल खुश हो जाए। तो आज आपसे एक सवाल छोटा सा मैं पूछूंगी। घर में जब छोटी सी बहस होती है तो हम क्या चाहते हैं, सामने वाला माने कि हाँ तुम सही थे, या लेकिन अगर उस बहस को जीतते जीतते कहीं हम अपने ही इंसान से दूर तो नहीं हो रहे। आज बात इसी पर करेंगे। इस बार सही साबित होना ज़रूरी है, या घर में प्यार और खुशी बनाए रखना ज़रूरी है।
1: RM3 Radio.

0: छह बजकर 46 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ और मैं हूँ इस समय आपके साथ पूनम। देखिए दोस्तों, पति पत्नी हो, भाई बहन हो या पेरेंट्स और बच्चे, जहाँ प्यार है वहाँ छोटी मोटी बहस तो होती है। कहते हैं पुराने ज़माने में हर कोई कहा करता था हमारे बड़े बुजुर्ग कि एक घर है तो उसमें बर्तन तो खटकते हैं, लेकिन हर बात को पकड़ के बैठ जाना, मैंने कहा था ना मैं ही सही था, इससे मिलता है क्या? नहीं, इससे कुछ नहीं मिलता, इससे बस सिर्फ लड़ाई झगड़ा और बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी कभी बात ख़त्म करने के लिए आपको साथ में बैठ के चाय पीनी है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, कांधे पे जैसे हाथ रख के चलते थे वैसे चलना है। कभी कभी किसी छोटे को बड़े से सॉरी बोल देना भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी बड़ा अगर छोटे को समझ ले, चाहे वो बहन हो तो माँ बन जाए, अगर बड़ा भाई है तो बाप बन जाए, और अगर कोई छोटा है तो बस इतना कहे कि हाँ सब घरों कहीं ना कहीं कुछ है। कोई भी घर, कोई भी किसी भी घर को ले लीजिए, कहीं पे भी हर चीज़ हर सुख नहीं मिलता। तो अगर आपके भी कहीं घर में कहीं कुछ छोटी मोटी बात हुई हो तो उसको खत्म कीजिए।
1: RM3 Radio.

6:53 हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा, पर हम इतना जानते हैं कि कई लोगों के दिल के अंदर ये बातें रह जाती हैं और कभी अपना कोई बताता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये कोई मुझे क्यों गाइड कर रहा है, मुझे सब पता है। बट कई बार ऐसा होता है कि छोटा छोटा सा गुस्सा बड़े बड़े रूप ले लेता है और वही सबसे खतरनाक होता है। तो अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड कीजिए, थोड़ा सा प्यार अपने में डालिए, थोड़े से दिल को हल्का रखिए। और यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे ऊपर कोई ना कोई है। और जब कोई है तो फिर हमें क्यों किसी के सामने ऐसे सोचना कि हाँ भाई सिर्फ हम ही सही हैं। तो ये दोस्तों जो मुश्किल समय जब आता है किसी की ज़िंदगी में भी, तो वही परिवार आपके साथ खड़ा होता है, वही बचपन के दोस्त आपके साथ होते हैं, वही आपके परिवार के सदस्य होते हैं जो आपके साथ हर दुख में आपके साथ खड़े होते हैं। तो जब आपकी ज़िंदगी में सुख आए तो उन जो आपका दुख में साथ दे रहे हैं उनको अपने साथ लेके चले। एंजॉय कीजिए इन गानों को। RM3 Radio.

तो दोस्तों अगली बार घर में छोटी सी बहस हो तो ये बस सोचिएगा कि जीतेगा कौन, एक बार ये सोचिएगा इस बात के बाद हमारा रिश्ता कैसा रहेगा। हर बात जीतना ज़रूरी नहीं, कभी कभी अपने लोगों के साथ बात छोड़ देना भी खूबसूरत, छोड़ देना बात को वो भी बहुत खूबसूरत होता है। और इसी के साथ नई सोच से मैं लेती हूँ इजाज़त, पर मैं आपके साथ रहूँगी दिलों की आवाज़ दूसरे अगले दो घंटे, और तो मेरे साथ ही रहेगा। इंजॉय कीजिए इस खाने को।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 7:09 हो चुके हैं और ये शाम थोड़ी खास होती जा रही है क्योंकि आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। भारत में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जुड़े सभी भारतीय दोस्तों का हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप जहाँ भी हैं, थोड़ा सा आप अपनी भाग दौड़ को थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा पीछे छोड़िए और अगले 2 घंटे मेरे साथ अपने पसंद के गीतों के साथ मजा लीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। जो है इसमें हम वो गाने चलाते हैं जो आपके दिलों के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो तारों को जोड़ते हैं और साथ में एहसास करते हैं एक साथ मिलके कि ये गाने क्या कहना चाहते हैं। चलिए, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 5250620 पर, और अगर आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028070 पर 10 मिनट के बाद हम लाइंस खोलेंगे। तब तक इंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:22 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ गए हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और हम मैं हूँ यहाँ पर पूनम और आप सब बहुत ही पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। पर क्या करें, जो कहते हैं ना, जब एक ऐसा टाइम आता है जब थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है तो दिलों की आवाज़ जो कार्यक्रम है बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी पसंद और हमारी दोनों की पसंद जुड़ी होती है और जो आप कहते हैं हम वो भी चलाते हैं और अपनी पसंद के कुछ ऐसे गाने भी चलाते हैं, ऐसे नगमे भी चलाते हैं। कहते हैं ना, जो आकाश में जो तारे हैं, सितारे हैं, वैसे हमारे पास भी चुन चुन के गाने होते हैं। तो इंजॉय कीजिएगा अपने गानों को, पर साथ में आपके 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय सुरेश शर्मा साजा जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच सर। रिहाना जी जुड़े हुए हैं साथ और कह रही हैं गाने की फरमाइश तो मैं शायद हो सकता है करूँ ना करूँ, गानों के ऊपर करता है कि अगर आप इतने अच्छे चलाएंगे तो मैं क्या बोलूँ, पर फिर भी मैं इतना कहती हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। थैंक यू रिहाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप मैसेज करते हैं, मुझे खुशी मिलती है। प्रकाशवंती जी बेल्जियम से साथ दे रही हैं और कह रही हैं कि आपने जो रेखा का शो किया मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं तो आपको कहूँगी कि हमारे जो भी कोई भी आरजेएस शो करते हैं सब आपको खुश करने के लिए करते हैं और सभी का मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर आपको रेखा जी का अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। उसके साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जी यूएसए से साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे से एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, हम बिल्कुल चलाएंगे। तो एक एक करके आपके गाने भी लेंगे, कॉल्स भी लेंगे, मैसेजेस भी लेंगे, बट आपको इतना ही कहेंगे जो भी आप इस समय कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं या ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी सफर पर निकले हुए हैं, तो बस गानों को एंजॉय कीजिए, मूड बनाएं और ये गाने आप सबके लिए।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: 7:34 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं और अपने दिल की बात कह रहे हैं, पर एक मैसेज बहुत पसंद आया मुझे। कह रहे हैं कि मुझे चाय पीने का इतना शौक है कि मैं क्या कहूं, मैं तो बस 10-10 बार पूरे दिन में चाय पी जाती हूं। अरे ये आपका हाल नहीं है, ये मेरा भी हाल है। हम लोगों को चाय बहुत पसंद आती है, सुबह उठते हुए चाय, फिर लंच में भी चाय, डिनर के पास भी चाय हो जाती है, शाम को भी चाय हो जाती है, उसके बाद रात को उठ के भी चाय हो जाती है। कई लोग हैं तो इस समय हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हुई है और वो कह रही हैं कि मैं फिर से चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है प्रोग्राम सुनते हुए। अरे बस ऐसे ही बनाते रहें, कप कप सिप सिप पीते रहें और इंजॉय कीजिए अपने गानों को। इस समय बाबू अनंतवा जी साथ जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और अपने पूरे फैमिली के लिए, और कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, अगर उनको भी मुझसे इतना प्यार है ना तो कभी कभी मेरे लिए भी तो एक गाना भेजें, क्योंकि मुझे पुराने गाने पसंद हैं, तो प्लीज़ मेरे लिए एक पुराना गाना ज़रूर चलाइएगा। तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं सर, आप इंजॉय कीजिएगा, रात का टाइम है और हम आपको यही कहेंगे अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भी चाय बना लीजिए हमारा और मेरे लिए भी बनाइएगा, मैं भी आती हूँ, मेरे नाम से ही सिप सिप करके पीजिएगा नहीं तो। चलिए साथ में धानी जी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं, उन्होंने अभी फ़ोन किया और बता रहे हैं कि मैं एक बहुत ही प्यारी सी करी बना रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है गाने सुनने पर और मुझे मेरे दो नाती हैं उनके लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहता हूँ। यश और रमेश दोनों बॉय शेरी से हैं और वो गाना

0: सुनना चाहते हैं बिल्कुल हम चलाएंगे। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है फूलवंती जी और अपने पति और अपने दो बच्चों के लिए गाना सुनाना चाहते हैं। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:52 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। दिल की आवाज़ बस इतनी सी है कि यहाँ पर चार लोग आपके घर में बैठे होंगे और कोई कोई अलग अलग बातें कर रहा होगा, कोई बच्चों की बातें किलकारी सुन रहा होगा या बच्चों को बोल रहा होगा चुप हो जाओ, अरे मेरा गाने की बात है या मेरा मैसेज पढ़ा जा रहा है, और कोई कह रहा होगा अरे आज मैंने ये किया वो किया, जो भी किया होगा थोड़ा सा आराम, थोड़े से दिन को तो आपने पूरी मस्ती की होगी, काम किए होंगे, बहुत प्रेशर लिया होगा, पर ये टाइम सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए छोड़ दीजिए या कह सकते हैं मेरे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चला रही हूँ आपकी पसंद के गाने। अगर आपके मम्मी पापा की कोई पसंद का गाना है और वो चल रहा है तो इन्जॉय कीजिए, उनको हाथ में पकड़िए और थोड़ा सा झुला दीजिए, उनको बोलिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, क्यों ना हो भाई, माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे जब उनको साथ देते हैं इस टाइम पे ऐसे वक्त में आके ऑफिस से आके, या कहते हैं ना कि पूरे दिन थकान के बाद, तो मम्मी पापा का जो चेहरा होता है ना वो अलग सा ही ग्लो करता है। अरे वो उनको और चाहिए क्या होता है, बस आप सबकी मुस्कान, आपका सबका सक्सेस और प्यार, बस यही चलते चलते हैं। दो तीन प्यारे से मैसेजेस के साथ में शीला जी साथ जुड़ी हुई है और अपनी बेटी लूसी के लिए एक गाना चलाना चाहती हैं। वो बिटिया रानी अभी 8 ईयर्स की हैं बट बहुत ही समझदार और प्यारी हैं, उसका एक फेवरेट सॉन्ग है, हम वही वाला गाना चलाएंगे इस समय पूरे मखाना फैमिली के लिए। और एक और हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं मालिनी जी, और जब भी उनका फ़ोन आता है मेरा दिल खुश हो जाता है। डैरन, श्वेता, प्रिशा, श्वेता साथ ही सब साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बीना जी का तबून से, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। और अपनी एक स्पेशल खास दोस्त हैं उनकी, जिनका नाम उन्होंने नहीं बताया और बस इतना कहा खास है, इसलिए खास के लिए स्पेशल गाना। इन्जॉय कीजिए अपने गाने सब आप सब के लिए।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:07 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ, जहाँ पे बातें चल रही हैं दिल की और प्यार मोहब्बत की। कहते हैं ना कि अगर प्यार किसी अपनी फैमिली में किसी ऐसे इंसान से हो जाए, जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बट उसके लिए थोड़ी सी दिल में रिस्पेक्ट होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनका चेहरा देखते ही बिना वजह ही हमारे चेहरे पर खुद मुस्कुराहट आ जाती है। और कभी कभी होता है कि अरे इसको क्यों देख लिया। नहीं, मैं तो यही सोचती हूँ कि सबका यहाँ पर जो भी हमारे ज़िंदगी में कोई आता है या कोई मिलते हैं हम लोग किसी से, या हमारी ज़िंदगी में हमारे कोई रिश्तेदार बनते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, चाहे हम खुद कोई बनाएंगे अभी आगे चल के, तो उनके लिए उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो उसी मकसद के साथ साथ चलते रहिए, इंजॉय कीजिए उनकी ज़िंदगी में, थोड़े से फूल बनाएँ, फूल लेकर जाएँ, फूलों की तरह अपने आपकी ज़िंदगी हो, हम तो यही चाहते हैं। चलिए जी, बहुत बातों के साथ साथ बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस भी आए हैं तो हम चाहते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इस समय सुदेवी जी वाकपा से साथ दे रही हैं और ललिता कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, देविना मलिंगा के केशनी, कृषे प्रनीता एंड राम रतन फैमिली साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। स्विनिल गंगा तलाव की तरफ जा रही हैं और तुगलक फैमिली के जो लड़के हैं वो पैदल कल से चल रहे थे और बस पहुंचने वाले हैं, और शिव जी के भगत जितने हैं उनके लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और साथ में ही कह रही हैं कि हमने देखा 3 कांवड़ों को और बहुत ही सुंदर लग रहा था और दिल कर रहा था यहीं पर रह जाएँ और फिर वापस ना आए। ऐसे ही होता है जब भक्ति में इंसान जुड़ जाता है, तो भक्ति परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद कहता है अलग रंग लेकर आती है। तो अगर आप भी उस फीलिंग को फील कर रहे हैं तो इंजॉय कीजिए इन गानों के साथ। आप सभी के गाने हम यहाँ से चला रहे हैं, बट आपको बस ये कह रहे हैं कि सबके गानों को इंजॉय कीजिए।
0: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर 25 मिनट हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं यानी कि RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ, और मैं इस समय आपके साथ हूँ पूनम। ये वीकेंड की शाम है तो कुछ दोस्त अभी बाहर निकलने की तैयारी में होंगे, कहीं पार्टी कोई प्लान की होगी, किसी दोस्त ने कहा होगा चलो थोड़ा सा ऐसे राउंड मार के आते हैं, तो बस हम यही कहेंगे इन्जॉय कीजिए अपनी जो भी कंपनी है, जिनके साथ भी जा रहे हैं इन्जॉय कीजिए, पर बाहर ठंड है थोड़ा सा तो अपने आप को कवर करिए, अगर शूज़ पहन सकते हैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेके ज़रूर जाना चाहिए, ये नहीं मतलब कि मूड आया और चल दिए। पर कई बार हमारे जो जवान दोस्त होते हैं ना, उनको लगता है अरे नहीं ये तो अच्छी है ब्रीज है, पर ब्रीज सुबह सुबह ले लीजिएगा और अभी कुछ कवर करके जाइएगा, इन्जॉय कीजिए गानों को, और साथ में जो ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ आराम से ड्राइव कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे हमें लगता है कि हम अच्छे से चला रहे हैं पर दूसरा नहीं चला पा रहा होता, तो जो भी ड्राइव कर रहे हैं प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करें, आगे पीछे देखते रहें, दोस्तों को देखिए, अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिल के जा रहे हैं तो एक दूसरे को कॉल करते रहें, कॉन्टैक्ट करते रहें, जहाँ पर भी जो भी जा रहा है पहुँच रहा है बस अपना ख्याल रखिए, इंजॉय कीजिए गानों को। और साथ में आपको बोलेंगे जो नेक्स्ट गाना है ना, एक बहुत ही प्यारी सी हमारी दोस्त हैं उनके लिए है, तो कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में यस बॉस से लिया हुआ ये गाना।
0: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:36 हो चुके हैं दोस्तों, और इस समय कई बार होता है ना कि गाने तो बहुत चल रहे अच्छे होते हैं, पर हमारा मूड कहीं और होता है। कई लोगों की कल छुट्टी होगी तो उनको तो कोई अलार्म की टेंशन नहीं, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं, पर जिनको काम पे जाना है उनको तो बस टेंशन होगी, अरे क्या करें भाई कल काम है। पर कोई बात नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए जाइए, क्योंकि काम तो काम है। हम आ जाते हैं आपके मूड को चेंज करने, तो आपको क्या टेंशन है, आप भी जाइए आराम से इंजॉय कीजिए गानों के साथ में, अपने काम को भी काम है तो सब कुछ है ना। चलिए जी, बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस आए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इब्राहिम जी साथ दे रहे हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, अगला गाना आप ही के लिए होगा। माधुरी जी एंड परी जी साथ दे रही हैं, पहले तो मुझे लगा कि मेरी परी आरजे का मैसेज

जाया, फिर मुझे लगा नहीं किसी और का आया है। तो माधुरी जी थैंक यू सो मच आपके जुड़ने का, साथ में गुलशन जी साथ दे रहे हैं अपनी मम्मी प्रभा दीक्षिता एंड स्पेशली अपनी प्यारी सी जान के लिए यानी आयशा के लिए एंड भोला फैमिली के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और आरजे हंसनी के लिए भी। तो क्या बात है, हमारे सारे आरजेज आपके साथ साथ होते हैं पर आप हमें याद कराते रहते हैं। अभी मैं उनसे मिली थी थोड़ी देर पहले, आज दोपहर से लेके हम साथ ही हैं बट फिर भी आपने याद किया तो मैं भी बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप हमारे सभी आरजेज को इतना प्यार और विश्वास देते हैं और इंजॉय कीजिए। चांदनी पुरुषोत्तम जी साथ दे रही हैं ब्रिटानिया से और एक गाने की फरमाइश की है, बिल्कुल चलाएंगे। ज्योति जी साथ दे रही हैं और उनके हस्बैंड हैं एक टैक्सी ड्राइवर जिनका नाम है तनवीर गिरधारी और बहुत ही प्यार से चलाते हैं ड्राइव। उन्होंने उनकी वाइफ ने बताया कि जब वो ड्राइव करते हैं तो गाने सुनते रहते हैं पर इतना अच्छे से ड्राइव करते हैं कि मुझे बहुत कम्फर्ट महसूस होता है। मैं तो सभी जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं उन सबको यही कहूँगी कि आप सब भी ऐसे ही चलाते रहे और इंजॉय कीजिए गानों को। साथ में अनीता जी कैपिप से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सभी का जो भी हमारे साथ जुड़े, इंजॉय कीजिए अपने गाने। RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: तो दोस्तों आज की शाम यहीं तक जाने से पहले ये आखिरी गाना मैंने चुना है आप सबके लिए, खास आपकी पसंद के लिए। इसे आराम से सुनेगा, एंजॉय कीजिएगा, यूं ही अपना साथ बनाए रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिएगा।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का रात के 9:03 हो गल बा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के दिल से स्वागत करत है। जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हवा आशा है ये रखब जा कि आप सब कोई मजे में हवन और आज के कार्यक्रम के संगे बहुत प्यार से साथ देवे खातिर बिल्कुल तैयार हो गल हवा। अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सब कोई के साथ देवे खातिर चलाल हाँ रत्ना के सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर ले जा। अभी से लेके बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत चली रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जा जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हुआ प्यार से साथ दे रही जा। और ये तोरा मन बा कोनो गीत सुने के जो गीत तोहर मन में बजाता मन करता तोरा कोनो ऐसन बढ़िया गीत सुने खातिर तो जरूर बेझिझक हमनी के तू टेलीफोने करे सकब 4028085 पर। जी हाँ 4028085 पर। और मैं सास विदा करे खोजत हवा तो 5251705 पर। तो चला ऐसा ठंडा के बढ़िया बढ़िया मौसम में बढ़िया गर्मा गर्म गुजरात भोजपुरी गीत कहाँ गुजराती बोला था भोजपुरी गीत सुनाओ अब जा सब कोई के रात के 9 बजे से लेके रात के 11 बजे ले चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। तो चला आप सब कोई के बहुत प्यार से आज के कार्यक्रम में हमनी के शुरुआत करब जा एगो ऐसन गीत संगे और है जोन गीत है संभावती जी गैले हवन संभावती दुमन के आवाज़ में है गीत के साथ करब जा एगो बढ़िया शुरुआत दादा के शोभेला है बहुत मज़ेदार गीत है। तो चला एगो बढ़िया शुरुआत मांग के सिंदूरवा चलाल चला कोई बात नहीं थोड़ा घड़ी में दादा के सोभेला हाई गीत भी तोरा सुनाओ।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर अमरोज हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अमरोज हमनी के बोले कौन कू ले ले हवा इतना प्यार से तू बतिया ल कहाँ कू लेवे जाब हो हम तो ऐसने बस तोहर संगे प्यार से साथ देवे खातिन हमेशा साथ रहिला और आज के मजेदार कार्यक्रम संगे जाने ल मोरिस में रहब कि कहूँ बाहर चल जाइब देश में विदेश में कहूँ भी रहब www.mbcradio.tv के माध्यम से तू हमनी के संगे जुड़ल रह सकब और आज के कार्यक्रम में चला आज के जन पहला गीत है अमरोज खातिन चलाओ अब जा अमरोज लौटन हमनी के साथ देवत हवन नोएल दिक्कुवेत से और बहुत ही खुशी हवन भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने खातिर त चला आज के कार्यक्रम के हई पहला गीत लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल हई गीत है तोहर खातिन चलाओ अब जा अब वैसे हम बताए के भुला गईली हई जन पहला गीत बजल उ भावती दुमन के आवाज में नहीं रहल बिजमावती संपत के आवाज में रहल और जैसे हम तोरा तोरा बोलनी कि अभी थोड़ा घड़ी में संभावती दुमन के आवाज में भी रखल है गीत जे तोरा तनी समय मिली तो जरूर चलावब जा और अमरोज हमनी के बोले ईशानों से उनकर जो संगतिया हवन खास संगतिया सुमहरा खातिन चला देवे के है गीत आग लगल मड़ैया में जितना ठंडा करता सचे के आग धरे के और बैठे के ऐसन बुझाता कहूँ कहूँ तो सच्चे के ढेर ठंडा करता और क्वैत तरह बैठ के गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय पीते पीते भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने के एगो दूसर मजा रहेला और ही चला चुटकुला कहाँ जाए चुटकुला भी सुनावब जा तोरा और ही हमर चचा चाची के किस्सा त जितना फेमस हो गल बाकी का बोलब हम त जाने ल चचा हमनी के कहाँ कहाँ से बात सोच सोच के आने लन सा हमनी के बोले जाने ल है जन प्यार है ये बहुत बहुत बहुत खराब बीमारी है अब बोले काहे चचा काहे ऐसन बोला था प्यार त जाने ल दुनिया में प्यार नहीं त कुछो नहीं बोले हाँ जानी ला पर शादी शुदा आदमी जब अपन पड़ोसन के प्यार में पड़ जाए तो जाने ला कौन ची होला हम बोले नहीं चाचा हम कैसे जानब बोले जाने हम तो बोला तो हर से अनुभव से बोला था है जोन पप्पू है रोज ओकरा हम वही करी ला जाने ला पड़ोसन के संगे प्यार चक्कर मोहब्बत चलता ओकर छह बजे में हाउ कामियो सालते पासे होला ता उता साढ़े पसाढ़े पांच बजा में खड़ा रहे लंस गेट पर जेकर से वो पड़ोसन के एदे करियन हम बोली चचा तू कैसे जाने ला बोले कहे कि हम भी पांच बजे में उठ के हौजा खड़ा हो जाइला हवे से अरे वाह चचा तू तो पप्पू भैया से भी दू कदम आगे हवा हो

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन सुनीता जी गाँव गोब बगल से, चार गो बहिन हवन विमला जी कोंगोमा से, अमृता जी गाँव गोब से और वीना जी गुडलैंड बगल से हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन और साथ देते देते हैजा पर स्विट्जरलैंड से चला हवन रंभा जी अपन परिवार संगे हमनी के बोले तनी पीती पीती छोकरी चला द सुदेश बोईजू के आवाज में काहे नहीं हो इतना प्यार से तू गीतवा के मांग कर ले हुआ तो जरूर चलाओ अब जा और हंसते मुस्कुराते सब साथ देते रहिए जा और जाने ला हमर चचा चाची से बोले आज तो जाने ला दिमास है ना तो बढ़िया सा तनी पका के हमनी के खियावा तनी कुछो चटाकेदार मजेदार स्वादिष्ट भोजन हमनी के बनावा बना के खियाइय तो चाची

हाली से बोल देला काहे हो सब कोई नौकरी पे जाला तो दिमाग के छुट्टी मनावेला तो आज भी हमर भी ऑफ बा आज हम भी छुट्टी ले ले हैं जाके देखल लाकू जिन में कौन सी पड़ल बा वही खा लिया। अरे वाह चाची का तगड़ा जवाब दे दे दिलक।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम जारी बा और 9:28 हो गए। देख ला बढ़िया बढ़िया गीत सुन के समय कितना हाली से बीतेला और मजेदार गीत के जन सिलेक्शन कर ले हवन भाई। बढ़िया बढ़िया गीत हमनी के श्रोता लोगन हमनी के विदा करत हवन अपन रिक्वेस्ट। चला अगला जन रिक्वेस्ट आल हवन चाची ललिता कुशल की ओर से जे हमनी के साथ देवत हवन त्रियोले बगल से। और है जन गीत अगला गीत है लागी नहीं छूटे राम के लाले लाल होठवा। है गीत के वो मांग कर ले हवन और है गीत चलाओ अब जा सुदेवी खातिन सुदेवी जी उनकर बहिन संगे हवन देवीना ज्ञानी और छोटी पोलौजे से दादी प्रभावती नुएलफांस से और हरीश भैया बुबासे बगल से बेलिया बगल से हवन आत्माराम भैया साथ देवत हवन माला राम जवन और सुखलाल मौसी खतीन। और जाने ला अभी श्रावण के मास चलता था हमनी के जोन प्यारी चाची है ना हमर चाची चमेली वो चचा से बोले हाँ तनी हाँ पूजा के सामानवा ला दिया हमर खातिन। बोले काहे मतलब अभी श्रावण मास चलाता ना तो पूजा करब श्रावण के सोमवार के पूजा करब बहुत प्यार से भगवान शिव जी के याद करब। बोले काहे हम तो मिल गल हैं। बोले हाँ मिल तो गल हवा तो अब सातों जन्म में तू रहब हमर जीवन में हये खातिर पूजा करे के चाही ला ना। बोले धत पहला हमनी से तो पूछ लेते ना हाँ ये जन्म हमने के इतना भारी लगा था अभी सात जन्म कैसे झेलब तोरा।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखा था 9:36 हो गल बा और कहूं कहूं तो बहुत ही ठंडा करा था तो चला अपन सेहत के पूरा पूरा ख्याल रखे जा और एकर संगे संगे चला है जा पर शो भाजी हमने के कथ बोन से साथ देवत हवन और आज शादी के सालगिरह मनयन मनैया प्रदीप जी और उमा जी के शादी के सालगिरह रहल और उनकर दूगो बेटी नेहा और वर्षा की तरफ से और सब परिवार देने से बहुत बहुत तोहरा जन्मदिन और जन्मदिन तो नहीं पर शादी के जन है सालगिरह तो मनयन मनैले हो आज के दिन ओकरा बहुत बहुत जन्मदिन काहे बोलत हैं शादी के सालगिरह के बहुत बहुत बधाई देवत हैं और एकर संगे एगो बढ़िया गीत संभावती दू मन के आवाज में रखल हई गीत करब जा तोहर खातिर

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:42 होगल बाद 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और रही जा पर हमनी के मानती जी बहुत ही प्यार से साथ है देवता नोएल फोंस बगल से और उनकर बहिन लोग अनंती और आर

ती और सात हवन उनकर घर के सब नाती पोता भव्य पुष्कल हितांशु गिरिशा मितिशा तो चला बहुत ही प्यार से सब कोई के स्वागत करत है। और अगला गीत जो है विनोद सिंह के आवाज में रखल है गीत के तू मांग करत हवा और खास कर तू सब भारतवासी के आज के बहुत बहुत अभिनंदन देवत हवन काहे के आज भारत के 80 वर्ष हो गल बा स्वतंत्रता दिवस के। तो चला मानती जी दिल से तोरा बहुत बहुत धन्यवाद और है बढ़िया संगीत विनोद सिंह के आवाज में रखल भोजपुरी भाषा और भोजपुरी भाषा जाने ला ना सब कोई कितना खुशी रहेला सुने के। तो एकर पर जाने ला हमर चाची कौन दिन बोले जाने ला है जोन कहावत है कि सब मर्द एक जैसन रहेलन जाने ला है कहावत के लिखले बा। हम बोली नहीं चाची हम कैसे जानब सब बड़ा आदमी ऐसा ना तो बोलत रहलन कि सब मर्द लोग सब आदमी लोग ऐसे एक नियर पारे ही रहेलन दुनिया में कहूँ भी चल जाइए। बोले है जोन कहावत है एगो चिन्हवा एगो चिन्हवाइन लिखले होवन। हम बोले वो कैसे जाने ला चाची। बोले जाने वो ओकर बूढ़ा संगे एगो बाजार में गल रहल घूमे एगो चीनी औरत एगो चीनी महिला और जब वो गल बाजार में तब बाजार में ओकर बूढ़ा खो गल। तो बोले अच्छा फिर। बोले जैसे वो खोजे के शुरू करलन अपन बूढ़ा के तो सब तो पारे ही रहल हवे से है कहावत पड़ गल कि सब आदमी पारे रहेलन। का हो चाची कहाँ के बात कहाँ ढुकावत हुआ।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जे सबसे फेवरेट कार्यक्रम है सब कोई के रात के 9 बजे से 11 बजे ले चलेला और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर राज रत्ना सब कोई के साथ देवत हवन तह चढ़ाई जा पर हमनी के साथ जुड़ गल हवन भाई अबू साथ देवत हवन उनकर बेगम आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और आज सलमा जी उनकर हिया घूमे आल हवन तो चला सलमा जी तोहर खातिन भाई अबू एगो गीत के मांग कर ले हवन आशा करब जा कि हाई गीत सुन के तोहर चेहरा के जो मुस्कुराहट है वो दुबले हो जाए और बस ऐसन बढ़िया समय बिताइए अपन परिवार के संगे और हई गीत है विक्रम कोलाचन के आवाज में धोती पोथी पगड़ी जाने ल जब हमनी के पूर्वज आल रहल त संगे हये लेके आल रहलन भारत से और आज हैजा पर अपन भोजपुरी भाषा के अपन संस्कृति के अपन भाषा संगे संगे अपन कैसे बोलबा अपन ताजिशों के जो जारी रखलन हैजा पर जीवित रखलन और आज सब कोई हमनी के भाषा के लेके आगे बढ़त हवन चलत हवन चला ही ये गीत करब जा आप सब कोई खातिन और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा हैजा पर ढेर कोई हमनी के बोले आई सब चुटकुला सुन के तो हमर तबियत बहुत टकाटक होता ऐसने चाहिला जीवन में टकाटक रहे के औरी हमर चचा जोन है ना का बोलब चचा चाची के कौन दिन बोले चाची के इतना प्यार से शर्मा के तनी प्यार से रोमांटिक आवाज में बोले ऐ बुढ़िया हमर खातिन आज तनी ऐसन बढ़िया चाय बना द जेकरा पी के हमर तन बदन में तनी आग लग जाए हमर तन तनी नाचे लगी झूमे लगी हमर मन तनी खुशहाली में बहुते मगन रही तो चाची बोले हाँ जाने ला ना घर में गाय के दूध मिले ला नागिन के नाई तरा झूमे के नाचे के तिल मिलाई के मन करता

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का

0: रोचक भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का चल रात के बज गल।

तरह थवान पूर्णिमा फोकीरा के आवाज में रखल हई गीत चलाओ अब जा सत्यानंद साली खातिन गीता गजाद गीता राधे की सुन और साथ हवन अंजू और सब परिवार संगे बड़की मुनुआ भी साथ है जुड़ गल हवन तो चला अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल हई अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन और हंसते मुस्कुराते सब कोई हमनी के साथ है दिवत हवन और जैसे हमार पप्पू भैया के तक का बोला पप्पू भैया कौन दिन जितना मार खा के आल हवन बाजार से तो चाचा बोले अरे पप्पू का होल तोरा इतना कैसे सब कोई आदमी तोरा पीट देलक बोले हाँ चाचा देख ना कैसे चमाना चला अलबा हम का बोलब बोले काहे पीट ले लग तोरा इतना मार खा के काहे तू अलग बोले हम तो गल रही बाजार में और ये एगो मगाजे के लाहौ में रख लिखले रहल हौजा पर कि हैजा पर शादी के सब सामान मिलेला तो हम तो हेल गईली हौजा बोले वो तो सब ठीक है पर मार काहे खा के आई लग बोले तो हये तो बतावत है चाचा बोले हौजा जाके जाने ला हम तो एक एगो बात पूछ ले ली काहे के शादी के सामान बोले रहल हौजा पर सब मिला था तो हम तो एक एगो सामान किने गईली पूछ ली तो हमने के पीट पीट के रख देलक हमने के कुछ कुछ के रख देलक बोले कौन सामान तू मंगले रहलन बोले हम तो इतना निर्दोष आदमी है का बोलब हम तो कर से जिस खाली बोलनी दुल्हन बा तब पीट पीट के रख देलक हमने के बोले तब पीटी नहीं तोरा शादी के सामान मिला था दूल्हन थाड़ी मिला था हो जाब।

हमारी सुदेवी जी भी हमने के संगे साथ है देवा धवन वाकवा बगल से, और वाकवा देने से वो अपन बहिन ललिता कुशल, खातिम गीत मंगले हवन, साथ ही साथ दीदी सुनीता, शोभा, देवीना और मलेगा के किशनी, कृषय, प्रनीता और सब राम रतन परिवार खातिन अगला गीत के उमंग करत हवन। और है गीत ह बड़की मसाला पीसेला, तो चला है ये गीत करब जा और बस हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और ये हमार चचा चाची के जोन किस्सा है वो तो जैसे आगे बढ़ले जाला, रोज नवा नवा किस्सा वो हमनी के सुनावेला। कौन दिन चाची बिचारी इतना परेशान, तो हम बोली का होल चाची काहे इतना परेशान बा, बोले हाँ हमार जोन संगतिया है ना ओकर से हम का बोला बिचारी बहुत परेशान बा, तो वही से ओकर हम दुख में हम शामिल होवत हई। मम बोली दुख काहे कौन काली तेके दुख चलाल बा, बोले जाने ल ओकर बूढ़ा संगे बहुत बहुत बहुत खिसिया गल बा ओकर बूढ़ा संगे। तो हम बोली काहे कौन ची होल, बोले कौन दिन शादी में जाय के रहल त ओ बोले अपन बुढ़िया के पारे हो जाइए शादी में जाब, द बुढ़िया बोले हाँ 5 मिनट में पारे होवत हई। तो हम बोली तो इतना में काहे खिसिया गल, बोले तो हाँ बिचारी आधा घंटा से बोला था वन 5 मिनट में पारे होवत हई, 5 मिनट में पारे होवत हई, तो का जनी ओकर बुढ़वा काहे इतना खिसियाता ओकर पे काहे उतना खिस करता। अरे चाची 5 मिनट मतलब 5 मिनट में पारे होई के ना, तो आधा घंटा ले 5 मिनट 5 मिनट बोलब तो कोई भी तक चिड़ी नहीं खिसियाई नहीं।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में अभी ढेर कोई हरदी से आवत हवन और ढेर कोई पूजा पाठ करके आवत हवन। चला आज के कार्यक्रम के गत्ते गत्ते आगे बढ़ावत है।

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:15 हो गल भा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखे थे और हिजा पर हमने के चाची शांता सुकागी से जमील फोरेस्ट साइड से जुड़ गल हवन और अगला गीत जो ना पिया परदेश फोकिरा पूर्णिमा के आवाज में रखल है गीत मांगत हवन अपन पतो किरण चार गो बेटा हवन सुदेश अशोक कामिन सुजीत और नाती हवन प्रवेश नातीन संजना खातिर तो चल हंसते मुस्कुराते आप सब कोई के साथ देवा धाय और चाचा हमनी के बोले जाने ला इतिहास जोन हाउ गवाह हम बोली कौन चीज के गवाह बोले हाँ गवाह की पति जोन है वो अपन पत्नी के हमेशा खुश रखे सकी बोले का बोला था वो चाचा हाँ तो पति के तक धर्म है कर्तव्य है अपनी अपन पत्नी के खुश रखे के बोले हाँ खुश रखे सकी पर कबो चुप नहीं करावे सकी

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा और चला 10:23 हो गल बा। और जितना रात कोई रात के काम

करत हवन सब कोई के बोकाश बोलब जा। और आज के कार्यक्रम में चला आगे बढ़त हाँ एगो बढ़िया गीत संगे और संभावती दुमन के आवाज में रखल है अगला गीत चलावब जा दागोचे के कुमारी जी खातिन और आठ गो बहिन साथ देवत हवन और संगे हवन रामफल परिवार उस्ताबिया परिवार और उनकर तीन गो बेटी लता प्रतिमा और सुधा और साथ देवत हवन आयुष और हाईजा पर जयंती जी पेची जूली से जुड़ गल हवन और सेंट जूलिया बगल से सेंट जूलिया विलास से हमनी के साथ देवत हवन हमर प्यारी चाची चाची नीता खेतनी जे हमनी के हमेशा प्यार से साथ देते रहेलन और उनकर खास संगतिया स्वादिका खातिर अगला गीत चलाओ अब जा हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और चाची जाने ल कौन दिन इतना कन्फ्यूजा गल तनी कन्फ्यूज हो गल चचा से बोले जाने ल महिला लोग के गला में जब मंगल सूत लटकते रही त जान जाइब एगो महिला के शादी हो गल बा तब पुरुष के ऐसन कौन निशानी रहेला जेकर से जनब कि उकर शादी हो गल बा तब चचा बोले जाने ल महिला के गले में लटकेला एगो मंगलसूत त जान जाइब और पुरुष के त चेहरा जैसे लटकल रही त जान जाइब कि उ शादी शुदा हवन। हाँ पारे तोहर नियर जब देखा तब 24 घंटा तोहर मुँह त ऐसे ने लटके रहेला।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर हमने के साथ जुड़ गल हवन भाई आत्मा राम मिले ऐसे साथ देवत हवन तब भैया जी हमने के बुले भाई दीदी सुदेवी दीदी ललिता और छोटी खातिन चला दिया जा हमर खातिन एगो बढ़िया गीत नंदकेश्वर शंकर के आवाज में रखल तो चला है ये गीत के साथ लाजवाब कार्यक्रम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पर और जाने चाची हमनी के चचा के बोले चला ना तनी बाजार जाए के बा तो चचा इतना मूड इतना रोमांटिक आवाज में चाची के हाथ पकड़ के बोले जाने ल बुढ़िया आज हमनी के मन करता तोहर हाथ पकड़ के घंटा दूर किलोमीटर कितना किलोमीटर चलते जाए के तो चाची बोले हाँ ऐसा बोला ना ले सांस के भाव बढ़ गल बा नहीं लेके जाइबा हमनी के

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखा था और हाईजा पर हमनी के साथ देवा था नाजीरा जी दागोचिया बगल से लागिना ही छूटे राम के हाई गीत के मांग कर ले हवन त चला जरूर चलाओ अपना हाई गीत और जाने ला हाई गीत गायत्री जी भी बहुत खुशी रहेलन सुने के और हाई गीत चलाओ अपजा गायत्री जी खातिर जे हमेशा नोअल फॉन्स से भी हमने के साथ देती रहेलन बेटा जय मामी कल्याणी मोहन और उनकर खास दोस्त गीता बाई खातिन तो चला हंसते मुस्कुराते दागोचिया के सब परिवार खातिन चलाओ अब जा और जितना कोई सुनत हवन और जितना खुशी हवन लागी नहीं छूटे राम के हई गीत के संगे तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में है जहाँ पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन भाई माहेन और एगो गीत के खुशी हवन ललिता गजादर के आवाज में तो चला हाई गीत चलाओ आप जा उनकर खातिन और खास कर दीदी मान खातिन जे हमनी के साथ देवत हवन बढ़िया से और हाई गीत है आज के गमट को

चला गबट के कार्यक्रम तक जा रही है बाटे और हैजा पर उमा जी हमनी के संगे फोन जुसाक से जुड़ गलावन और हमनी के बोले उमा जी अभी तो श्रावण मास चलता था तनी गंगा मैया पर एगो गीतवा चला दा चला अभय दानंद बीजन के आवाज में रखल है गीत चलावब जा तोहर खातिन और जितना कुछ सुनत हुआ उन

तो चला आज के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समाप्त कर अब जा आज के है अंतिम गीत के साथ पूर्णिमा फुकीरा जी की आवाज में रखा है अंतिम ललना के गीत चलाओ अब जा है ललना के गीत खास कर दादी शोभा प्यासन साथ ही साथ पापा हवन कमलेश प्यासन और ममा करिश्मा प्यासन जेकर हिया एगो नन्ना मुन्ना सा लड़का होल हवन तो चला बहुत बहुत बधाई देव अब जा दादी माला बगवा दादी मुनन पसन दादी पूर्णिमा फकीरा संगे हवन पिंकी पूनम प्रावीणी पूजा प्रावेश कृष्मा और सब लड़का फैका तो चला है बहुत ही प्यार से आपके बहुत बहुत बधाई और है ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए आप सब कोई हमने के बहुत प्यार से साथ दिलन धन्यवाद बोलब जा सब कोई के फेरों से भेंट आप सा आवत सामदी के रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तबले बस अपन ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आवत समय सब कोई खातिर बहुत ऊर्जा लेकर आई ये कामना करब जा और एक संगे हमने के अनुमति दीजिए चला हमर बाद सुनहरे पल कार्यक्रम तू सुने सकबा और आज के जो कार्यक्रम है बहुत ही लाजवाब रहल तो चला हमर बाद नीतू शाह सब कोई के साथ दई पुराना गीत सुनहरे पल कार्यक्रम में तो इसकर संगे उनकर साथ दिया जा और हमनी के दिया अनुमति नमस्कार शुभरात्रि सब कोई के

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। आज है 15 अगस्त और आज हमारे सभी भारतीय भाई बहन मना रहे हैं अपनी स्वतंत्रता दिवस। रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो की तरफ से आप सभी को मंगल कामनाएं। तो आइए, जब देशभक्ति की बात करते हैं तो बॉलीवुड और देशभक्ति का रिश्ता बहुत ही गहरा और खूबसूरत रहा है ना? हिंदी सिनेमा ने सिर्फ हमें प्रेम, दोस्ती, परिवार और जिंदगी के रंग ही नहीं दिखाए, बल्कि देशभक्ति के प्रति प्रेम, सम्मान, बलिदान और कर्तव्य की भावना को भी अपने गीतों और कहानियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। जब सिनेमा के पर्दे पर तिरंगा लहराता है, जब किसी सिपाही की आंखों में अपनी वतन के लिए जज्बा दिखाई देता है, या जब कोई गीत हमें अपनी मिट्टी की खुशबू का एहसास कराता है, तब दिल के अंदर एक अलग ही गर्व की लहर उठती है। तो आइए श्रोताओं, आज ये सुनहरा पल कार्यक्रम हमारे सभी भारतीय दोस्तों के नाम।

बॉलीवुड के देशभक्ति गीत हमारे सिनेमा की एक अनमोल परंपरा है। इन गीतों में सिर्फ शब्दों का जोश नहीं होता, बल्कि मिट्टी से जुड़ा हुआ एक एहसास भी होता है। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे गीत ने पूरे देश को भावुक किया। लता जी की आवाज में गाया

व ये अमर गीत भारत के वीर जवानों के बलिदान को याद करने का एक प्रतीक बन गया। इस गीत को सुनते ही आंखों में नमी और दिल में देश के प्रति सम्मान जाग उठता है।

मनोज कुमार जैसे कलाकारों ने बॉलीवुड में देशभक्ति को एक अलग पहचान दी। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति जैसे सिनेमा में उन्होंने देश, मिट्टी, किसान, जवान और भारतीय संस्कृति को कहानी का केंद्र बनाया। मेरे देश की धरती जैसे गीत ने भारत के किसान और उसकी मिट्टी को सलाम किया। ये सिर्फ एक फिल्म गीत नहीं है बल्कि भारत की धरती के प्रति प्रेम का गीत है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों जैसे गीतों में बलिदान की भावना है। ऐ मेरे प्यारे वतन में वतन से दूर रहने की कसक है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया में भारत की समृद्ध परंपरा और गौरव का एहसास है। मेरा रंग दे बसंती चोला में आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा है। ऐसे गीत श्रोताओं सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।

जैसे समय के साथ बॉलीवुड की देशभक्ति का अंदाज भी बदला, पुराने दौर की फिल्मों में देशभक्ति अगर सिपाही, आजादी की लड़ाई, सीमा और बलिदान के आसपास घूमती थी, आज के सिनेमा में देशभक्ति के अर्थ और भी विशाल हो गए हैं। अब देश से प्रेम का मतलब सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, समाज को बेहतर बनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना, महिलाओं का सम्मान करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और देश की विविधता को स्वीकार करना भी है।

90s की बात करें तो बॉर्डर का संदेश आते हैं का एक ऐसा गीत है जो सिपाही के दिल और उसके परिवार के बीच की दूरी को महसूस कराता है। इस गीत में देशभक्ति के साथ साथ माँ, पिता, पत्नी और घर की याद भी है। लक्ष्य के कांधों से मिलते हैं कांधे, हौसला और साथ चलने की भावना देता है। रंग दे बसंती ने युवा पीढ़ी को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर सोचने के लिए प्रेरित किया। चक दे इंडिया ने देशभक्ति को खेल, टीमवर्क और एकता के साथ जोड़ा। और जब हम तेरी मिट्टी जैसे गीत सुनते हैं तो देशभक्ति सिर्फ एक स्लोगन नहीं लगती, वो एक गहरा जज्बा बन जाती है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके लोगों के त्याग, सेवा और समर्पण में होती है। इसी तरह ए वतन जैसे गीत भारत की मिट्टी से एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं।

श्रोताओं, बॉलीवुड ने हमें ये सिखाया है कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, भारत एक एहसास है। गंगा की धारा में, हिमाचल की ऊंचाइयों में, खेतों की हरियाली में, समंदर की लहरों में, मंदिरों की घंटियों में, मस्जिद की आजान में, गुरुद्वारे की शब्द धुन में, और हर उस इंसान के दिल में जो अपने देश को बेहतर देखना चाहता है।

देशभक्ति का सबसे खूबसूरत रूप शायद वो ही है जहां हम अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरों के प्रति भी सम्मान और इंसानियत बनाए रखते हैं। भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है। अलग

अलग-अलग भाषाएं, परंपराएं, वेशभूषाएं, धर्म, संगीत और संस्कृतियां मिलकर भारत को भारत बनाती हैं। बॉलीवुड ने इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कई बार अपने गीतों और कहानियों में दिखाया है। इसीलिए जब भी कोई देशभक्ति गीत रेडियो पर बजता है तो वो सिर्फ एक सॉन्ग रिक्वेस्ट पूरी नहीं करता, वो यादों का एक दरवाजा खोलता है। किसी को स्कूल का इंडिपेंडेंस डे याद आता है, किसी को रिपब्लिक डे की परेड, किसी को बचपन में हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा तिरंगा और किसी को अपने परिवार का कोई वीर जवान याद आ जाता है। और शायद इसी वजह से बॉलीवुड के देशभक्ति गीत कभी पुराने नहीं होते। सुर बदल सकते हैं, जेनरेशन बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन वतन से मोहब्बत का एहसास कभी पुराना नहीं होता।

जब हम बॉलीवुड की उन मधुर धुनों को सुनेंगे जो देश की मिट्टी जवानों की बलिदान किसान की मेहनत युवाओं के सपनों और भारत की एकता की कहानी कहती हैं तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए ये वही मिट्टी है जिसमें हमारी यादें हैं ये वही हवा है जिसमें हमारे अपनों की सांसें हैं और यही वो देश है जिसे हम अपने अपने तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि जब दिल में मोहब्बत है तो गीत भी वतन के हो जाते हैं धड़कन भी वतन की हो जाती है और जिंदगी का हर अच्छा कर्म अपने देश को एक छोटा सा सलाम बन जाता है जय हिंद जय मॉरिशस प्रणाम

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

hey, hey, hey, hey.

NBC Radio, हर पल आपके साथ।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूईएफए यूरोपा लीग के थर्ड क्वालिफाइंग राउंड के रिटर्न लेग के मैच कल खेले गए। स्कॉटलैंड की रेंजर्स टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई। फर्स्ट लेग में यागलेलुनिया ने रेंजर्स को 2-1 से हराया था। कल अपने होम मैदान में रेंजर्स केवल 1-1 का ड्रॉ कर पाया, मतलब अलविदा यूरोपा लीग। अन्य मैचों में बेसिकतास ने राडेक क्रालोवे को हराया 1-0 से, बेसिकतास क्वालिफाई। फेरेनवारोस ने अपना मैच ड्रॉ किया 1-1, फेरेनवारोस क्वालिफाई। ओमोनिया निकोजिया 1, लिंकन रेड इम्स 0, ओमोनिया निकोजिया क्वालिफाई। आरबी साल्सबर्ग ने एवे जाकर मैच ड्रॉ किया पाफोस के मैदान में 3-3, साल्सबर्ग क्वालिफाई। यूनिवर्सिटादिया क्रायोवा 2, कर्प्स 1, क्रायोवा क्वालिफाई। विकिंगो 3-2, टून की टीम क्वालिफाई है। सीएसके सोफिया 1, मकाबी तेल अवीव 3, सोफिया की टीम क्वालिफाई। अंडरलेक्ट ने 3-2 से पीएओके को हराकर अपना टिकट बुक किया, जबकि बेनफिका क्वालिफाई हुआ हार्ट ऑफ मिडलोथियन टीम के साथ मैच ड्रॉ करके 1-1। इग्नाता ने 5-1 से शामरॉक रोवर्स को हराया, इग्नाता की टीम क्वालिफाई। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग में पार्टिजान इंटर क्लब डिस्काल्डिस काराबाग याब्लोनेक राको जेस्टोचोआ एमएल विटेक्स मिडजीलैंड नॉर्जीलैंड ट्रोम्सो ड्रिटा सेंगालेन सियों यरूशलेम मदरवेल डिनामो सिटी हैशटैग स्प्लिट को जीत पाए, क्वालिफाई हो गए, 9 मैच ड्रॉ गए। आज से इंग्लैंड की लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। एक ही मैच है, वुल्व्स का मुकाबला ब्लैकबर्न रोवर्स से। कल बाकी मैच खेले जाएंगे। कल ही क्लब फ्रेंडलीज में चेल्सी खेलेगा रियल सोसिएदाद के खिलाफ, बायर्न म्यूनिख और भी लिप्जिग, टोटनहम हॉटस्पर होफेनहाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा एसी मिलान के खिलाफ, बोरुशिया डॉर्टमुंड एएस रोमा, इंटर मिलान रियल बेटिस, ये कल के फ्रेंडली मैच हैं। लिवरपूल संडे को अपना मैच खेलेगा, वो है कोमो के खिलाफ, और संडे को ही इंग्लिश कम्युनिटी शील्ड आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच, यानी प्रीमियर लीग सीजन शुरू होने से पहले ट्रेडिशनल कम्युनिटी शील्ड चैंपियन आर्सेनल और एफए कप विजेता मैनचेस्टर सिटी के बीच। मैनचेस्टर सिटी का मिडफील्डर तिजानी रेंजर्स सऊदी प्रो लीग टीम अल खदसिया में जा रहा है। 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का सौदा होगा। पारिस सेंट जर्मेन बार्सिलोना के स्ट्राइकर फेरान टोरेस को साइन करने जा रहा है। डील इन प्रिंसिपल डॉन दाम लगभग 45 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। मैनचेस्टर सिटी सस्ते में रोड्री को नहीं जाने देगा। बार्सिलोना ने 55 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, सिटी चाहता है 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। लेस्टर सिटी ऑन सेल, 200 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग रखा गया है लेस्टर सिटी को खरीदने के लिए। थाईलैंड के ओनर 16 साल किंग पावर स्टेडियम में थे, अब हवा बदलना चाहते हैं। यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रिटेन की स्प्रिंटर आर्नी हंट ने अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता 200 मीटर फाइनल जीतकर। उसका टारगेट है 4 गोल्ड मेडल, 100 और 200 के बाद अब विमेन्स और मिक्स्ड रिले बचे हैं। क्रिकेट, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में इस रविवार को मैच है पॉइंट डेलास्का की बार्सिलोना एफसी और वे लायंस के बीच। इधर आदिसी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंटर डिस्ट्रिक्ट पेटांग टूर्नामेंट इस

0: संडे को घोकायु में लगेगी सभी जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चैंपियन टीमें और रनर अप इस इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भाग लेंगी 9 बजे से घोकायु में। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों का रिंग की ओर से शुभ दिन।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

that blessing. You wish for this blessing to be taken away from such a person. This is called al-hasad. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught us that how dangerous this virus is. Iyyakum wal hasad. Beware of al-hasad. Why? فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ. Al-hasad, it will remove your righteous deeds, na'udhu billah. Everything is going to be deleted because of this spiritual virus. Just like كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ, a fire removes, demolishes, ends up the wood. When it burns it, it will turn it into ashes. The wood is useless once it becomes ashes. Just like that, all your righteous deeds shall be removed, and you will be deprived of thawab of those righteous deeds. So wasted. Everything wasted. A'udhu billah. Farmaya ki hasad is bimari se bacho. Isliye ki hasad nekiyon ko is tarah kha jata hai jis tarah ke aag lakdi ko kha jati hai. A'udhu billah. Aajkal ye bimari हमारे घरों में इस हद तक आम हो चुकी है, हमारी कम्युनिटीज एंड फैमिलीज में, कि भाई भाई से हसद करता है, बहन भाई से हसद कर रही है, सगा चचा अपने भतीजे भतीजी से हसद में मुब्तला, नऊज़ बिल्लाह, भांजा अपने मामू से, मामा अपने भांजे से. इट्स गेटिंग कॉमन डे बाय डे, नऊज बिल्लाह. बट द थिंग इज वी डोंट इवन रियलाइज दैट व्हाट आर वी डूइंग विद आवर सेल्व्स. औलिया सूफिया رحمهم الله تعالى تسي الحسد يهلك الحاسد ويضره قبل أن يضر المحسود. We have two persons, the envious, the jealous person, جلنے والا, and we have the other one, المحسود, the envied, the one who you are jealous of. Two persons. The thing is, this virus is going to harm the envious person, al-hasid, before it harms the envied one. Ye bimari itni khatarnak ke ye jis को आप ये बीमारी लगाना चाहते हैं तो उसको तो बाद में तकलीफ देगी, आपको पहले ही तबाह कर डालेगी. और ये एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा वायरस जिससे बचने की ज़रूरत हर इंसान को. ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का इशू नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज का इशू नहीं है, बल्कि इस रुए ज़मीन पर रहने वाला हर इंसान, उसे ज़रूरत है कि अपने आप को